我说你打竹马打来说别离苏哈西尼苏哈杜拉帕西尼

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की चौथी तिथि तदनुसार 26 जुलाई सन 2026 सुबह के 10:53 हुए हैं। हमारी पहली प्रसारण सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, एफएम बैंड 108.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में हम अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है।
1: आकाशवाणी है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
2: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शब्द कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
2: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

0: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो,
4: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव।
2: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक, कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम,
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा।
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे

कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देशभर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, ओडिशा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहां देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चितूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहां के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियाड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है।
इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले 1 दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अड़िग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच

खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। ये पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भारत क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की

पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हैं। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी
महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहां बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृंखलाः दुष्करं वातावरणं शत्रु समाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मां भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपि तु नूतन संततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य चतुर्दशे दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रिय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः सन्देशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृति योग्यं न भवति। सखायः, अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहस वर्धनेन सह स्वीयाः प्रविधि क्षमताः अपि सततं दृढाः करोति। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां आईएनएस महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृ जलपोतः सम्मिलितः जातः। एषः आधुनिकः योद्धृ जलपोतः भारते एव परिकल्पितः निर्मितश्च वर्तते। एतस्य निर्माणे प्रतिशतं 75 मितादपि अधिकानां स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः जातः। आत्मनिर्भर भारतस्य वर्धमानायाः शक्तेः प्रतीकभूतः अस्ति एषः। एतस्मिन्नेव मासे DRDO इत्यनेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इत्याख्यस्य प्रक्षेपकस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतम्। एतस्याः सफलतायाः कारणभूतः अस्माकं वैज्ञानिकानां अभियन्त्रीणां च सामूहिक परिश्रमः अस्ति। द्वित्रदिनेभ्यः पूर्वं DRDO इत्यनेन कुशा मिसाइल इत्याख्यस्य प्रक्षेपकास्त्रस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतमेव। सखायः, कामं अद्य रक्षोत्पादनं भवतु, रक्षा निर्यातो वा, उत मित्रदेशैः सह राजनीतिक सहयोगः। अद्यत्वे भारतं सततं नवशिखरं प्रति वर्धमानमस्ति। एतस्य मासस्य आरम्भे अहम् इण्डोनेशिया देशे आसम्, यत्र ब्रह्मोस इति एतेभ्यः प्रक्षेपास्त्रेभ्यश्च विशिष्टा सहमतिः सञ्जाता। विश्वस्य विश्वासः भारतस्य रक्षोपकरणेषु प्रविधिषु च वर्धमानः अस्ति। आयान्तु, ऐषमः कारगिल विजय दिवसावसरे वयम् अमरान् हुतिङ्गतान् वीरान् नमामः, अथ सुरक्षितस्य सक्षमस्य च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे स्वकीयं संकल्पं दृढतरं कुर्याम। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात इति कार्यक्रमस्य विगते अंके अहं भवद्भिः सह कैच द रेन इत्याख्यस्य अभियानस्य चर्चाम् अकरवम्। अहम् आग्रहं कृतवान् आसम् यत् वृष्ट्याः प्रत्येकं बिन्दुं संरक्षयितुम् एतदभियानं जनान्दोलन रूपं करणीयम्। कैच द रेन इत्यस्य सन्देशः अत्यन्तं ऋजुः अस्ति। यत्र वृष्टिर्भवेत्, यदा वृष्टिर्भवेत्, जलं तत्रैव संरक्षन्ताम्। एतदर्थं जुलाई मासस्य चतुर्थ दिनांकात् समग्र देशे एकं विशेषाभियानं प्रचाल्यमानमस्ति। एतस्य अन्तर्गतं वृष्टिजलस्य संचयः, भूमौ जलपूरणं, प्राचीनानां जलस्रोतसां पुनर्जीवनं, वृक्षारोपणं इत्येतेभ्यः गतिः दीयमानास्ति। मम अत्यन्तं प्रसन्नता अस्ति यत् ग्रामाः भवन्तु, नगराणि वा, पञ्चायत केन्द्राणि स्युः, सामाजिक संस्थाः वा, प्रतिस्थलं जनाः सोत्साहम् एतस्मिन् अभियाने सहयोगं कृतवन्तः। कुत्रचित् प्राचीनेषु तडागेषु मालिन्यं निष्कास्यमानमस्ति, कुत्रचित् च कूपेभ्यः बावडी इति जलाशयेभ्यः पुनर्जीवनं प्रदीयमानमस्ति। पिहिताः बोर्वेल इति भूगत जल नलिकाः अधुना भूमौ जलपूरणार्थं माध्यमाः जायमानाः सन्ति। सखायः, मध्यप्रदेशस्य सीधी जनपदे प्रायः 1500 सरोवराः निर्मिताः सन्ति। नरसिंहपुरे अमृत सरोवराः परिष्कृताः सन्ति। महाराष्ट्रस्य नासिक इत्यत्र प्रभूत मात्रायां जल संरक्षण पराक्षमता विकसिता अस्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य नान्द्याल इत्यत्र सर्वाणि ग्रामपञ्चायत केन्द्राणि एतेन अभियानेन सम्पृक्तानि सन्ति। अथ पुरातनाः तडागाः पुनरपि उपयोगयोग्याः क्रियमाणाः सन्ति। अस्माकं नगराणि अपि पृष्ठे न सन्ति। छत्तीसगढ़ राज्यस्य कोरबा नगरे, ओडिशायाः भुवनेश्वरे, आंध्र प्रदेशस्य विजयनगरम् इत्यत्र एतस्मिन् अभियानेन उत्साहजनक परिणामाः दृश्यमानाः सन्ति। आयान्तु वयमपि अस्मान् परितः कस्यापि एकस्य तडागस्य, कूपस्य उत बावडी इति जलाशयस्य दायित्वं स्वीकुर्याम। जलस्य प्रत्येकमपि बिन्दुं संरक्षयाम। अद्य संरक्षितः प्रत्येकं जलबिन्दुः आगम्यमानानां सन्ततीनां भविष्यार्थं सर्वतः विशिष्टः अमूल्य निधिः अस्ति। मम प्रियाः देशवासिनः, केवलं कतिपय दिन पूर्वमेव ग्लास्गो नगरे राष्ट्रमण्डल क्रीडा स्पर्धाः प्रारब्धाः सन्ति। प्रत्येकं देशवासी निरन्तरं भारतीय क्रीडा दलाय स्वशुभकामनाः प्रेषयति। तस्य कामना अस्ति यत् सर्वे क्रीडकाः उत्कृष्टतमं प्रदर्शनं कुर्वन्तु, जनानां च हृदयान्यपि जयन्तु। सखायः, अस्माकं युवभिः नातिचिरमेव क्रीडाक्षेत्रे कतिपयाः विलक्षणाः उपलब्धयः प्राप्ताः। पीवी सिंधु इत्येषा बैडमिंटन क्रीडायां जापान ओपन इति प्रतिस्पर्धां जेतुं प्रथम भारतीय महिला अभवत्। अस्याः असाधारणोपलब्धये समग्रः देशः गौरव मनुभवति। भारतीय महिला क्रिकेट दलमपि लंडन नगरे स्थिते लॉर्ड्स क्रीडांगणे स्वीया प्रथमा टेस्ट प्रतिस्पर्धां विजितवती। एषः वस्तुतः ऐतिहासिकः विजयः अस्ति। अस्माकं दलेन एषा प्रतिस्पर्धा 70+200 धावनांकानां विशालांतरेण विजिता। किन्तु विषयः केवलं एतावानेव नास्ति। लॉर्ड्स इत्यस्य सुदीर्घे इतिहासे एषा महिला दलस्य प्रथमा टेस्ट स्पर्धा आसीत्। 83+129 वर्षे अस्मिन् एव क्रीडांगणे भारतेन स्वः प्रथमः क्रिकेट विश्व चषकः विजितः आसीत्। अधुना अस्माकं नारी शक्तिः अत्र देशस्य कीर्तिं वर्धितवती अस्ति। सखायः, केचन लघु प्रयासाः एतादृशाः अपि भवन्ति ये अतीव महत्वं भजन्ते। मया केरलस्य एर्णाकुलम् इत्यस्य दक्षिण चित्तूरे क्रीडायाः एतादृशस्य एव एकस्य प्रयासस्य विषये ज्ञातम्। तत्रत्ये एकस्मिन् विद्यालये संस्कृतसङ्घः अस्ति। अत्रत्यः शिक्षकः अभिलाष महोदयः अतीव अपूर्वेण मार्गेण संस्कृतं लोकप्रियं करोति। अस्य प्रकल्पस्य अक्षरकन्दुकम् इति नाम दत्तमस्ति। अस्मिन् संस्कृतस्य अक्षराणि पादकन्दुके प्रयुज्यमानैः शब्दैः सह संयोज्य सरलमार्गेण बोध्य

0: साश्रद्धं सादरं प्रणमामि। सखायः, कतिपय सप्ताहानन्तरं वयं स्वातन्त्र्यस्य महापर्व अपि समाचरिष्यामः। अगस्ट मासस्य 15 दिवसः प्रत्येकं भारतीयस्य कृते गौरवस्य दिवसः अस्ति। अयं तेषाम् असंख्यानां वीराणां स्मरणस्य दिवसः अस्ति, यैः भारत मातुः स्वातन्त्र्यार्थं स्वस्य सर्वस्वं समर्पितम्। तेषां त्यागेन तपसा च अद्य अस्माकं हस्ते त्रिरङ्गध्वजः अस्ति। अस्मिन् त्रिरङ्गध्वजे अस्माकं संविधानस्य आदर्शाः निहिताः सन्ति। सखायः, विगतेषु कतिपयेषु वर्षेषु हर घर तिरङ्गा अभियानेन समग्रः देशः अद्भुततया भावनया सम्बद्धः अभवत्। प्रत्येकस्मिन् गृहे प्रत्येकस्यां वीथ्यां च त्रिरङ्गध्वजस्य उत्सवः दृश्यते। अस्मिन् वर्षेपि अस्माभिः हर घर तिरङ्गा अभियानं सम्पूर्णेन उत्साहेन अग्रे नेतव्यम्। स्वगृहे पूर्ण सम्मानेन त्रिरङ्गध्वजः आरोहणीयः। सखायः, प्रतिवर्षम् ऑगस्ट मासस्य 15 दिनात् पूर्वं भवन्तः बहून् विचारान् बहूंश्च परामर्शान् मह्यं प्रेषयन्ति। अस्मिन् वर्षेपि भवन्तः स्वविचारान् MyGOV इति जनसहभागिता मञ्चे अवश्यं सामायिकीकुर्वन्तु। अहं भवतां परामर्शानां प्रतीक्षां करोमि। सखायः, अद्य मन की बात इति कार्यक्रमे एतावदेव। आगामि मासे वयं पुनः मिलिष्यामः। देशवासिनां नूतनाभिः अनेकाभिश्च उपलब्धिभिः प्रेरणादायकैः प्रयत्नैश्च सह तावत्पर्यन्तं कृपया मह्यम् अनुमतिं प्रददतु। भवद्भ्यः पुनः पुनः धन्यवादाः। नमस्कारः।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: बड़ी बहू,
3: ये तुम्हारे ना।
4: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी,
3: ये तुम्हारे ना।
2: और ये
4: मेरी गुड़िया की ना। दादी, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो। क्या
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM बैंड 101.8 MHz पर। दोपहर के 12:03 में है। प्रस्तुत है बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम नन्ही जैसलमेर।

नन्ही जैसलमेर कार्यक्रम सुन रहे मेरे सभी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों को मैं आपकी रेडियो दीदी ललिता की ओर से ढेर सारा प्यार और साथ ही साथ हैप्पी संडे। तो बच्चों, आज की तारीख याद है आपको? जी हाँ, आज है 26 जुलाई और आज के दिन पूरा भारत किस रूप में मनाता है बताओ, कोई बता सकता है? बिल्कुल, आज कारगिल विजय दिवस है। आज का पूरा दिन हम अपने देश के उन वीर और साहसी सैनिकों को समर्पित करते हैं बच्चों, जिन्होंने हमारी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े पहाड़ों पर जाकर दुश्मनों से लोहा लिया और भारत माँ का झंडा लहराया। आज हम बहुत ही आसान तरीके से, मैं आपको मजेदार तरीके से बताऊंगी कि कारगिल विजय दिवस आखिर है क्या और ये हमारे लिए इतना खास क्यों हो जाता है। तो नन्हे दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ ठंड के मौसम में और जब थोड़ी सी बर्फ गिरती है या तेज हवा चलती है तो हम तुरंत रजाई में छिप जाते हैं और गर्मा गर्म पकौड़े या दूध मांगने लगते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जहाँ तापमान इतना कम हो जाता है कि सब कुछ बर्फ बन जाता है, पानी भी जम जाता है और हवाएं इतनी तेज चलती है कि

से लगता है मानो कोई सुई चुभा रहा हो। वो जगह है कारगिल। कारगिल आपको पता है बहुत ऊंचे ऊंचे और पथरीले पहाड़ों की एक ऐसी सुंदर जगह है जो हमें हमारे देश में हमारे देश के भारत में ही स्थित है। बात है 1999 की, यानी आज से कुछ साल पहले की, जब आपके मम्मी पापा भी शायद थोड़े छोटे रहे होंगे। तो हुआ ये था कि कुछ दुश्मनों ने धोखे से कारगिल के उन बर्फीले और ऊंचे पहाड़ों पर अपना कब्जा जमा लिया। वो बहुत ऊंचाई पर बैठकर नीचे आजाद तक रास्तों को देख सकते थे। जब हमारे भारतीय सैनिक को इस बात का पता चला तो उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी धरती का एक एक इंच का टुकड़ा भी हम किसी को नहीं लेने देंगे। और इसी के साथ शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। तो दोस्तों, ऑपरेशन विजय कैसे सफल हुआ इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से गाने के बाद। तो आप सुनिए देशभक्ति का ये प्यारा सा गीत बिल्कुल आपके लिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कारगिल विजय पर ये खास कार्यक्रम। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे ऑपरेशन विजय की। क्या आप जानते हैं कि कारगिल की लड़ाई में लड़ना कितना कठिन था? दुश्मन पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे थे, जहां से वो नीचे सब कुछ देख सकते थे, और हमारे सैनिकों को सीधे सीधे ऊपर की तरफ चढ़ना था। नीचे से ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप किसी ढलान पर चढ़ते वक्त महसूस कर ही चुके होंगे। सोचिए, जब पीठ पर भारी सामान हो और बर्फ जमी हो और सामने गोलियां चल रही हो, लेकिन हमारे वीर जवानों ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी। क्या आपको कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम याद है? उन्होंने कारगिल युद्ध में ऐसा अदम्य साहस दिखाया कि पूरा देश आज भी उन्हें सलाम करता है। उनका एक मशहूर वाक्य था, जब वो किसी मिशन में जीत हासिल करते थे तो रेडियो पर बोलते थे, ये दिल मांगे मोर। सोचिए, इतनी मुश्किल घड़ी में भी उनका हौसला कितना बुलंद था। उनके साथ कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और हजारों ऐसे सैनिक थे जिन्होंने दिन रात एक एक करके बर्फीली चोटियों पर चढ़कर तिरंगा लहराया। और आखिरकार 26 जुलाई 1999 को हमारे वीर सैनिकों ने पूरे कारगिल को दुश्मनों से पूरी तरह मुक्त करा दिया और भारत की जीत का झंडा लहरा दिया। इसीलिए 26 जुलाई को हम सब मनाते हैं कारगिल विजय दिवस। तो बच्चों, आपको जिन बच्चों में मन में ये सोचा है कि 26 जुलाई ऑपरेशन विजय दिवस है, तो उनके लिए तो मैं ज़ोरदार तालियां बजाना चाहूँगी, क्योंकि आप लोग अब बहुत होशियार हो चुके हो अब जो मैंने आपको बातें बताई। तो प्यारे बच्चों, जब हम सैनिकों की वीर गाथा सुनते हैं ना, तो हमारे मन में आता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। लेकिन क्या सैनिक बनने के लिए सिर्फ बॉर्डर पर जाना जरूरी है? नहीं दोस्तों, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी कुछ ऐसे अच्छे सैनिक और सच्चे देशभक्त बन सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? तो जब आप अपनी क्लास में किसी कमजोर बच्चे की मदद करते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान और वीर बनते हैं। जब आप सड़क पर कचरा नहीं फेंकते हैं, डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं, तो भी आप देश को साफ रखकर जो है देश की सेवा कर सकते हैं। जब आप बिजली और पानी बर्बाद नहीं करते हैं, तो भी आप देश के जो संसाधन है उससे देश की रक्षा करते हैं। और जब आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं ना, और साथ ही साथ सच बोलते हैं, तो आप भारत के एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। तो हमारे सैनिक सीमा पर ही देश की रक्षा करते हैं, और हमें अपने घर पर, स्कूल में और शहर को सुंदर और सुरक्षित बनाना चाहिए। असल मायने में ये भी सच्ची देशभक्ति होती है। तो आपको कारगिल विजय दिवस पर सबको मिलकर उन सभी वीर जवानों को, उनके परिवार को दिल से नमन करना चाहिए, और उनकी वजह से आज हम सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कि अमर सेनानी वीर बांकुड़े भारत माँ की शान है, जिनकी बदौलत आज सुरक्षित है हमारा हिंदुस्तान है। तो बच्चों, समय हो चला है एक कहानी का, जो आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए फटाफट मैं आपको सुनाती हूँ प्यारी सी कहानी, जिसका शीर्षक है सबक। किसी गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता बहुत धनवान थे। इकलौती संतान होने के कारण उसे कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार मिलता था। इसी कारण वो बिगड़ गया था। सोनू अपनी कड़वी जुबान से और बदतमीजी के लिए खासा बदनाम था। छोटा हो या बड़ा, वो सबको एक ही लाठी से हाँकता था। लोगों की भावना की कद्र किए बिना मुंह में आए जो कुछ उसे अच्छा लगता था वो बोल देता था।

लोगों की शिकायतों ने सोनू के पिता की नाक में दम कर रखा था। अपने बेटे की इस करतूतों के लिए उन्हें शर्मसार होना पड़ता था। एक दिन उन्होंने सोनू को समझाया कि यह गांव अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, अगर हम मिलजुल कर रहेंगे तो संकट की घड़ी में हम इनके साथ तुम खड़ा पाओगे, लोगों को सताओगे तो उनकी हंसी उड़ाओगे तो मुसीबत में तुम्हारी कोई भी सहायता नहीं करेगा। सोनू तुनकर बोला, हम तो धनवान हैं, पैसे के बल पर हम सारे काम करवा सकते हैं, हम इनकी परवाह क्यों करें। एक दिन सोनू घर से निकला कि किशन ने आवाज लगाई, भाई घास का ये गट्ठर उठाकर मेरे सिर पर रखवा दो। सोनू क्रोध में बोला, मैं तुम्हारा घास का गट्ठर क्यों उठाऊंगा। मुंह उठाकर चले आए मदद मांगने। इतना कहकर वो चलता बना। एक दिन सोनू अपने मित्र के साथ धूप में बैठा हुआ था, गप्पे मार रहा था कि तभी एक बूढ़ी महिला वहां पर आई और बोली, बेटा मुझे जरा मंदिर तक तो छोड़ आओ, मुझे आंखों से कम दिखाई देता है, मंदिर पहुंचा दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। सोनू ने डांट कर कहा, घर से निकलते समय क्या अपने साथ किसी को लेकर क्यों नहीं निकलती हो, वैसे भी तुम्हें भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि कुछ ही दिन बाद तो तुम खुद ही भगवान के पास चली जाओगी। सोनू की बदतमीजी तो पहले तो सोनू बदतमीजी किया करता था, लेकिन आज तो उसने सारी सीमाएं ही लांघ दी। और उस साल बगीचों में जो है आम के पेड़ों पर मानो बाहर आ गई, आम का हर वृक्ष जो है फलों से लदा दिखाई पड़ता था। एक दोपहर को सोनू ने अपने मित्र मंडली के साथ आम के बगीचे पर धावा बोला। बगीचा सुनसान इलाके में था, उधर कम ही लोग आते जाते थे, तो सोनू ने आम तोड़ने के लिए झटपट एक पेड़ पर वो चढ़ गया। उसने अभी कुछ आम तोड़े ही होंगे कि अचानक उसकी नजर फन फैलाए एक सांप पर पड़ी। सांप को देखकर सोनू के तो हाथ पांव फूल गए, दूसरी ओर उसके साथी बहुत घबरा गए और गांव की ओर भाग खड़े हुए। सोनू बगीचे में अकेला रह गया और पेड़ पर बैठा वो थर थर कांप ही रहा था और बिना कुछ सोचे समझे उसने पेड़ से छलांग लगा दी। जमीन पर पड़े पत्थर से उसका सिर जा टकराया और उसके सिर से खूब खून बहने लगा, साथ ही उसके पैर में गंभीर चोट भी लग गई। तभी उसने किशन की ओर देखा और जो उसने आवाज देकर किशन को बुलाया। सोनू ने रोते हुए कहा, किशन भैया मुझे बहुत चोट लगी है, आप सहारा देकर मुझे घर पहुंचा दीजिए, मैंने समाज सेवा का ठेका थोड़ा लिया है, क्या तुम मुझसे पूछ कर यहाँ आम तोड़ने आए थे, तुम जैसे दुष्ट बच्चे की मदद मैं नहीं करता, किशन ने खिन्न स्वर में उसका उत्तर दिया। ये शब्द सोनू के हृदय में तीर की तरह लगे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मुसीबत से मैं किसी की सहायता करने के बजाय अगर कोई तीखे स्वर बोले तो उसे कितना दुख लगता है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता वो बेहोश हो गया। कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को एक अस्पताल में पाया। पूछने पर पता लगा कि किशन ने उसे गोद में उठाकर लाया। ये सुनकर उसकी आंखें भर आई। वहीं खड़े किशन ने उसे समझाया, सोनू शरीर पर लगा गहरा से गहरा घाव जो होता है ना वो वक्त के साथ भर जाता है, लेकिन कटु वचनों से जो घाव मन पर लगता है वो कभी भी नहीं भरता। तो अपनी गलती का एहसास होने पर सोनू बहुत लज्जित हुआ और उसे कटु वचन कहना सदा के लिए छोड़ दिया। सोनू का व्यवहार में जो ये परिवर्तन आया, इस चमत्कारी परिवर्तन को देखकर उसके मम्मी पापा भी बहुत खुश हो गए। तो बच्चों, हमारा जो ये कबीर दास जी ने भी प्रसिद्ध दोहा कहा है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोली जाने, हे तराजू तोल के तब मुख बाहर आने, यानी कि हम जो बोलते हैं ना वो रत्नों से भी अमूल्य होता है। तो जब भी हम कुछ बोले तो हमें सोच समझ कर अच्छे से धैर्य रख कर बोलना चाहिए। तो आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी तो पसंद आई है, चलो सुन लेते हैं एक और प्यारा सा ये गीत।

की कुछ कुछ होंठों पे झलके तुम्हारी हंसी, कुछ कुछ होंठों पे झलके अभी अभी आँखों से।

तो नन्हे दोस्तों, आपको भी ये सॉन्ग सुनकर हंसी जरूर आई होगी। और अभी गर्मी का मौसम है, और गर्मी का मौसम आते ही मन में ख्याल आता है आइसक्रीम, ठंडी ठंडी लस्सी या फिर ठंडे ठंडे पानी में छलांग लगाना। बिल्कुल सही समझे। तो बच्चों, अगर आप पूल पार्टी करते हैं, पानी में उतरना, तैरना, दोस्तों पानी में उछलना, रंग बिरंगी फ्लोटिंग ट्यूब के साथ खेलना, सुनना, कितना मजेदार लगता है ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी में मस्ती करते करते थोड़ी सी लापरवाही हो जाए तो क्या हो सकता है? तो मस्ती का मजा तभी कभी दुगना हो जाता है जब हम सुरक्षित रहे। तो सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप सुरक्षा को ध्यान में रखेंगे तो पूल पार्टी को आप यादगार बना सकते हैं। सबसे पहले, बिना किसी बड़े या लाइफगार्ड, जो आपका लाइफगार्ड है, उसकी देख रेख में पानी में बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए। दूसरा, पूल के किनारे कभी दौड़ना नहीं चाहिए, हमेशा धीरे धीरे चलना चाहिए। और तीसरा ये कि हमेशा अपनी गहराई यानी कि पूल में ही तैरना चाहिए। जब भी आप पूल पार्टी में जाए तो पूल पार्टी करें तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखिए। चौथा ये है कि कुछ बच्चे जो है खाना खाने के बाद तुरंत तैरने लग जाते हैं, तो खाना खाने के बाद तुरंत पानी में बिल्कुल भी नहीं कूदना चाहिए। और पांचवा, सनस्क्रीन और स्विमिंग जो गॉगल्स है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी सिस्टम अपनाकर आप एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तो बच्चों, पानी हमारा दोस्त है, लेकिन तभी जब तक हम इन नियमों का पालन करते हैं। और मेरा तो सभी माता पिता से भी अनुरोध रहेगा कि बच्चों को पानी के पास अकेला बिल्कुल भी ना छोड़िए, और सुरक्षा उपकरण जैसे कि लाइफ जैकेट या फ्लोटर्स का इस्तेमाल करें और सही तरीके से उन्हें कराएं। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है आपको आज का कार्यक्रम पसंद होगा, और अगले कार्यक्रम में फिर ढेर सारी कहानियों के साथ, ढेर सारे किस्सों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। FM बैंड 101.8 MHz पर दोपहर के 12:30 में हैं। अब आप सुनेंगे संगीत।

0: आपने ही कुमार सानू और अलका याग्निक को उनका नाम है आरती। अगला गीत सुनने से पहले आइए सुनते हैं जरूरी संदेश।
1: बड़ी बहू
2: ये तुम्हारी ना
3: इतनी भी क्या जल्दी थी।
2: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना
4: और ये
5: मेरी गुड़िया के नाम।
6: कोई दादी
2: हाँ
6: आपके नाम
7: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो
6: क्या
7: आरबीआई कहता है।
8: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल को। फिल्म का नाम था डार्क द फायर। इस गीत के साथ ही हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम अभी ही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 101.8 MHz पर। दोपहर के 1 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है।

0: कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
1: श्री मोदी ने वन साइड वन नेशन वन सैल्यूट के संदेश के साथ इस वर्ष हुए शौर्य विजय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि देश के लिए किए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। उन्होंने हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी की चर्चा की। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने लंबी दूरी के पिनाका रॉकेट और कुश मिसाइल के सफल परीक्षण पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को सभी देशवासियों के लिए एक गौरवशाली पल बताया। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्धार को नई गति मिल रही है। श्री मोदी ने देशवासियों से आसपास के तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लेने की अपील की, ताकि एक एक बूंद जल को बचाया जा सके।
0: 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घात निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं।
1: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से पीओपी से बनी मूर्तियों के बजाय मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्तियों की पूजा करने की भी अपील की। साथ ही 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक बताते हुए लोगों से हथकरघा शिल्प को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों की चर्चा करते हुए कहा कि हाल के समय में भारत के युवाओं ने खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। यह दिन सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। अपने संबोधन के समापन में श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर वीर सैनिकों और शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमजन की प्रेरक कहानियों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने और जन भागीदारी की भावना को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 103.8 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1:05 में अब आप सुनेंगे महिलाओं का मनपसंद कार्यक्रम।

0: मूमल कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी सखी रेड प्रीति भाटिया की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं अपना मन पसंदा कार्यक्रम मूमल। और आज जब हम देख रहे हैं कि मौसम तरह बदल रहा है, सूरज देवता बादलों की ओट लेकर छिप रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, धरती का नया श्रृंगार हो रहा है और हमारे जसाणी में एक नई ही आभा, एक नई ही खुशबू है। चारों तरफ ऐसा लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी हरियाली छा रही है। जो बूंदे मेघ से निकली थी या मेघ ने जो बूंदे अमृत रूपी बरसाई थी, उसने मानो हमारी धरा को एक नवीन रूप दे दिया हो। धरती मुस्कुरा रही है। और ऐसे में जब मैं आपसे कुछ बतिया रही हूँ तो दिन में कुछ ख्याल आ रहे हैं कि मुस्कुराहटों की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब कुछ अच्छा होता है ना, जब कुछ सुकून भरा होता है, उससे पहले कितना दर्द झेलना पड़ता है। और आज एक और विशेष दिवस है, इसलिए मैं जरा सी भावुक हो रही हूँ सखियों। आज है कारगिल विजय दिवस। हम सभी ने कारगिल विजय दिवस के बारे में अक्सर जाना है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, पर क्या आप जानते हैं कि इस विजय की कीमत लगभग 527 वीरों ने चुकाई थी अपने प्राण देकर। जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का और उसके आसपास का क्षेत्र प्रकृति ने भौगोलिक रूप से कितना विचित्र बनाया है, कितना अलग अलग बनाया है, अनूठा बनाया है। और वहीं लद्दाख का उत्तरी जिला कारगिल, जहाँ बर्फ की ठंडी ठंडी चोटियाँ, दूर तलक कुछ और नज़र नहीं आता, उन्हीं ठंडी चोटियों पर अपना गर्म लहू बिखेरा था भारत के सैनिकों ने। याद करें सन 1999 का वो पल, वो क्षण जब भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत हुई थी और लगभग 60 दिनों तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चला था। हमारी ऊंची ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था और उसे हटाने के लिए हमारे जाबाज सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। सैनिक किसी के बेटे होते हैं, किसी के पति होते हैं, किसी के भाई होते हैं, किसी के पिता होते हैं, किसी के सखा होते हैं, पर हम उन्हें सिर्फ सैनिक मानते हैं। और मुझे लगता है कि जब सैनिक जब सेना में जाता है, तब वो अपने आप को सबसे पहले भारत माँ का वो जाबाज बेटा मानता है जिसके लिए प्राण त्यागना कोई बड़ी बात नहीं होती, जिसके लिए सबसे बड़ी बात होती है अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। तो ये कहानी है उन सूरमाओं की, जिन्होंने बर्फ की ठंडी चोटियों पर न केवल गर्म खून गिराया बल्कि एक नई कहानी लिखी। उस कहानी को हम आज भी पढ़ रहे हैं, याद करते हैं। तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशान होगा। इस कारगिल विजय दिवस का जो एक मर्म है, वो सिर्फ इतना नहीं है कि हम याद करें उस ऐतिहासिक पल को और क्षण को, बल्कि इस दिन का अर्थ ही है कि हम नमन तो करते हैं पर हमने उन सैनिकों से क्या सीखा, ये बात भी बहुत ही अहम है। हम हर एक भारत माँ के बेटे, हर एक सैनिक सैनिक, चाहे वो नेवी में हो, मिलिट्री में हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, आर्मी में हो, इंजीनियर फोर्स में हो, चाहे वो BSF में ही क्यों ना हो, हम समझें कि किस कदर अपने घर छोड़ कर कहीं और जाना, बचना और भारत माँ की सेवा करना कितना मुश्किल होता है। जब हम और आप अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, तब कोई और हमारे लिए जाग रहा होता है। तो आज हम मना रहे हैं 27वां कारगिल विजय दिवस। ऑपरेशन विजय, आप सभी जानते ही होंगे कि ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा शुरू करा गया अभियान था, जिसके तहत एक ही उद्देश्य था कि हमारे पड़ोसी मुल्क को हरा देना और भारत माँ के सीने पर गर्व से तिरंगा लहराना। तो बस जमीन पर बसाया है घर हमने, जमीन पर घर बसाया है मगर जन्नत में रहते हैं। प्यारी बहनों, हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, तो आइए इस पल को जी लेते हैं, इस खुश नसीबी को जी लेते हैं और एक देश प्रेम से भरा, देश प्रेम की भावना से ओत प्रोत एक मीठा सा गीत सुनते हैं, गुनगुनाते हैं और याद करते हैं उन शहीदों को जिनकी बदौलत आज हमारा वास्तुकून अपने घरों में है।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों सपनों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना,
1: अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
2: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना,
1: अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल

अब ये ठान लिया है, या तो अब करना है या तो अब मरना है। चाहे अंगारे बरसे के

तो बहुत मीठा सा और प्यारा सा गीत हमने सुना, गुनगुनाया। और गीत था हमारी भारत माँ के नाम, उनके जवानों के नाम, उन बच्चों के नाम, उन बेटों के नाम जो अपनी माँ की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो चाहे हम सरहदों पर ना जा सकते हो प्यारी सखियों, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम एक अच्छा देश का नागरिक होने का जो फर्ज है वो अदा करें। और एक नारी, एक स्त्री शक्ति स्वरूपा होती है, आप क्या नहीं कर सकती हैं। जब कभी भी आपको लगे ना कि आपके बच्चे पढ़ाई से भटक रहे हैं, जब कभी आपको लगे कि वो अपने देश की बुराई करते हैं, कुछ मुद्दों को लेकर के हमेशा बहस करते हैं, तो उन्हें समझाइए कि देश क्या होता है। देश मात्र जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता, बल्कि देश होता है देशभक्ति की भावना से। जब हम उस जमीन के टुकड़े में रहने वाले हर एक व्यक्ति से, हर एक चीज से, गौरवशाली इतिहास से, संस्कृति से प्यार करते हैं, तभी हम एक सच्चे देशभक्त होते हैं। और सैनिक मुस्तैद हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं हमें सुरक्षित रखने का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? क्या वाकई में हमारी शिक्षा अर्जित करने के पीछे कभी भी उद्देश्य अपने राष्ट्र की रक्षा करना होता है, राष्ट्र की बेहतरी करना होता है? क्या हम अपने राष्ट्र में रहने वाले उन भाई बंधुओं के बारे में सोचते हैं जिनका जीवन स्तर हमसे थोड़ा सा नीचे है? क्या हम मदद और सहयोग में विश्वास रखते हैं, या सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं? क्या हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं? क्या हम जो सिविक सेंस एक शब्द है ना, उसने सुना होगा, बहुत प्रचलन में है, क्या हम में सिविक सेंस है? हम तो इतना भी नहीं कर पाते हैं कि चॉकलेट बिस्किट या चिप्स खाने के बाद उसके रैपर को डस्टबिन में फेंक दो, डस्टबिन ना दिखे तो अपने हाथ में रखें, अपने बैग में डाल दें। और हम देशभक्ति की बात करते हैं, तो इन छोटी छोटी कोशिशों से जो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, जो हम खुद करेंगे, मेरा तो मानना है बच्चे वही करते हैं जो हम करते हैं, हम सभी करेंगे चाहे हमारी कोई भी उम्र हो, शायद धीरे धीरे भारत का स्वरूप बदलेगा। अच्छा, भारत का स्वरूप तो धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन भाई हमारे यहाँ का मौसम बदल रहा है, सावन दस्तक दे रहा है, सावन आने को है। और सावन के आने से पहले वो जो जलती हुई हमारी धरती थी ना, मतलब हम जल रहे थे, हम तड़प रहे थे, हम मौसम को देख करके बड़े कुंठित हो रहे थे, गुस्सा आ रहा था, अग्रेशन हो रहा था, हमें राहत नहीं थी। तो सोचिए, बारिश का आना मतलब जिंदगी का बदल जाना। कभी कभी लगता है कि प्रकृति भी कितने रूप लेती है, प्रकृति भी कितना अपने आप को अलग अलग समय में अलग अलग रूप से ढालती है। शायद प्रकृति को पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए। और अगर मैं बारिश की बात करूं तो मुझे याद आता है बहनों कि बारिश क्या होती है, धरा के अथक सब्र का फल होती है बारिश। कितना सब्र किया होता है, कितना सहा होता है, कितने झुलसे होते हैं, कितने तपे होते हैं, तब जाके कहीं वो राहत की, वो सुकून की कुछ बूंदे मिलती है जो हमारे लिए अमृत रूपी होती है। वो जल रहे पेड़, वो अपनी पत्तियों को गिरा चुके पेड़, वो मुरझाए हुए वृक्ष, वो उदास से जीव जंतु, सबके जीवन में रौनक आ जाती है बारिश से। पर आप जानते हैं, मौसम हमें कुछ और सिखाता है कि जब आपको बहुत सहना पड़े ना, बहुत दर्द हो जाए, दर्द बहुत बढ़ जाए, आपको लगे कि अब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हम बेकाबू हो रहे हैं, तब सब्र रखें, कुछ अच्छा होने वाला होता है, कुछ अच्छा ज़रूर होता है। तो प्रकृति से भी सीखें, हर चीज़ का अपना समय होता है, नियत समय पर चीज़ें होती है। हमारे हिसाब से, हमारी घड़ी के हिसाब से लेट और जल्दी हो सकता है, पर कुदरत की घड़ी बहुत सही होती है, कुछ भी लेट नहीं होता, सब समय पर होता है। तो इस मौसम में जब हमें लग रहा है सब झूम रही हैं, गा रही हैं, तो क्यों ना हम भी सुनते हैं एक ऐसा मीठा सा गीत जो सावन पर, इस बारिश पर, इन बूंदों पर आधारित है। ये सुनते हैं, गुनगुनाते हैं एक मीठा सा गीत।

0: और आइए सुनते हैं कुछ ज़रूरी जानकारी जो सुन करके आप कोशिश करें कि जब भी किसी से मिलें आप उन्हें ज़रूर इस तरह की पॉलिसीज, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताएं जिससे किसी और का भी भला हो सके।
1: ये तुम्हारे नाम
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम और ये
2: मेरी गुड़िया के नाम। कोई दादी आपके नाम
3: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किट बैग चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किट बैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: और ये थी जरूरी जानकारी। इसके बाद हम बात करते हैं बारिश के मौसम में घर की साफ सफाई के बारे में। ये बारिश का मौसम अच्छा तो बहुत लगता है, पर घर गंदा बहुत हो जाता है। आप देखिए कि जो हमारी किचन में रखी दालें हैं, चीज़ें हैं, वो सड़ने लग जाती हैं। सड़ी ना भी तो उनमें एक अलग तरह की स्मेल आ जाती है, कीड़ा आ जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता कि एकदम से क्या हो गया, क्योंकि हमने तो थोड़ी केयर करी ही होती है। तो 2-4 दिन अगर चीज़ को ना देखें तो ख़राब हो जाती है। इसके अलावा हमारा पेट भी जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब हम इस तरह की कोई चीज़ खाते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है। घर के ओने कोनों में चींटियाँ और इस तरह के जीव हैं वो अपना अड्डा बना देते हैं। आप देखिए कपड़े जो हम सुखाते हैं जब वो पूरे सूख नहीं पाते हैं, दरी कर्टेन्स ऐसा कुछ भी, तो उनमें एक अलग तरह की स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में घर की साफ़ सफाई का बेहद ख्याल रखना ज़रूरी है। कोशिश करें कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, ये ना पनपें, इसके लिए आप स्प्रे करते रहें। ड्राई रखें घर को, ज़्यादा वेट सरफेस ना रहे। इसके अलावा जो भी गार्बेज है उसे सही जगह पर फेंकें, यानी संभाल के ना रखें। खाने की चीज़ को जल्दी ही फ्रेश बनाएं और ख़त्म करें। अगर बच जाता है तो प्रॉपर तरीके से पैक करके फ्रीज में रखें। जैसे ही थोड़ी सी धूप निकले कोशिश करें डोरमेट जो होते हैं, पायदान जो होते हैं, उन्हें शरीर पहुँचने के जो कपड़े हैं, टॉवल हैं, किचन में काम करने के लिए जो किचन क्लोथ है, उन सबको आप स्पेशली अच्छी धूप में सुखाएं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो रोज़ प्रयोग में आती हैं। आप भारी कालीन बिछाने के जगह पतली दरियाँ बिछाएं। आप बेडशीट भी वही बिछाएं जो जल्दी ड्राई हो जाए। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। कोशिश करें कि अपने फ्रीज में ज़्यादा सामान को इकट्ठा करके ना रखें, चीज़ें जल्दी फट जाती है। अपने दाल चावल के डिब्बों को, मसालों के डिब्बों को संभालते रहें। जो ग्रेन्स हैं उनके डिब्बों को थोड़ी थोड़ी धूप बताते रहें, उनमें लौंग को, तेज पत्ते को डालें, या फिर अगर आप गोलियां जो बाज़ार में आती हैं जिसे जीव नहीं लगे हैं वो धान में डालने के उसे लाए, तो उसे भी कॉटन के मलमल के कपड़े में बांध के रखें। थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे तो ये समय निकल जाएगा और हमें कुछ खास नुकसान भी नहीं होगा। बातें और भी हैं आपसे करने के लिए, तो चलिए सुनते हैं, गुनगुनाते हैं एक और प्यारा सा। पर इस गीत को सुनने से पहले मैं कुछ बताना भी चाहती हूँ आपको कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे हम ना केवल अपने घर को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि यही छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे तब विशेष रूप से काम आती हैं जब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे हम चीज़ों को कंजर्व करके रख सकते हैं। जो कंजर्वेशन है, यानी हम चीज़ों को जो संभाल के रखें, ये हमारी हैबिट में होना चाहिए, हमारी आदत में होना चाहिए। तो बस अभी इतना ही। हम सुनेंगे एक मीठा संगीत, एक प्यारा संगीत, क्योंकि गीत संगीत की जो दुनिया है, उसमें जितनी दफ़ा हम जाते हैं उस समंदर में, जितनी बार डुबकी लगाते हैं उतनी बार कुछ न कुछ अच्छा पाते हैं, बेहतर

तो ये था एक छोटा सा प्यारा सा गीत, और अब हम बात करेंगे पशुओं की, आवारा पशुओं की। हम इन्हें आवारा पशु इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जिस तरह से कुछ इंसानों को घर नसीब होता है, उन्हें परवाह करने वाले लोग नसीब होते हैं, वैसे कई दफ़ा ये सभी किस्मत में नहीं होता पशुओं की, और वो यहाँ से वहाँ परेशान होकर घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनके दर्द को, उनकी परेशानी को हम समझ ही नहीं पाते हैं। आप सोचिए कि कितना मुश्किल होता होगा ना इस तरह के मौसम में पशु पक्षियों के रहना, सर्वाइव करना, क्योंकि हम इंसान हैं, हम थोड़ी से ज़्यादा बेहतर स्थिति में हैं, तो इसमें शायद ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम पशुओं की बेहतरी के लिए कुछ कोशिश करें। अगर आपको आपके घर के पास, आपके मोहल्ले में इर्द गिर्द बेजुबान ऐसे कोई दिखते हैं जिनके पास कोई आसरा नहीं है, शायद आप चाह कर के भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ना कर पाए, पर कम से कम अपने घर की रोटी में से दो रोटी तो उन्हें खिला सकते हैं, कम से कम उनके पीने के लिए पानी वो तो आप उन्हें दे सकते हैं। यदि कोई बीमार पशु दिखता है तो पशु चिकित्सक को ही आप इन्फॉर्म कर लीजिए, आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म कर लीजिए। यदि बारिश में कोई पानी में भीग रहा है या सर्दी में रखा पशु दिखे, तो हमारे घर में इतनी व्यवस्था तो होती है कि जो धान आता है उसके धान की जो बोरी होती है, या कहा जाए कि जो इस तरह की मोटी पुरानी कोई चद्दर ही पड़ी है, हम कम से कम अपने पशुओं के लिए कुछ व्यवस्था तो कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से मौसम बदलने के साथ हमें परेशानी होती है, वैसे पशुओं को भी होती है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में सभी लोग मिलकर उनके खाने की व्यवस्था करें, चारा उन्हें जो चाहिए होता है या जो दलिया चाहिए होता है, इतना छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि ना तो कहीं कमाने जाते हैं ना ही अपने लिए खुद खाना बनाते हैं, लेकिन ये हमें बहुत कुछ देते हैं। तो अगर हम वाकई इंसानियत को समझना चाहते हैं, तो इंसानियत सिर्फ वो नहीं है कि हम इंसानों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, तक इंसानियत तो वो भी है ना कि हम इन दीनहीन पशुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और आप तो जानती हैं कि हमें तो हमेशा से सिखाया जाता है कि घर में बनी पहली रोटी गाय की होती है, गौ ग्रास होता है, हम रोटी बनाते हैं तो दूसरे कुत्ते के लिए रोटी निकालते हैं, कबूतर को दाना डालना, गाय के लिए गुड़, पशुओं के लिए ज्वारी बाजरे की व्यवस्था हमेशा से हमारे घरों में होती है, और इसीलिए हमारे घर धान से भरे रहते हैं, हमारे घरों में बरकत होती है, क्योंकि कुदरत का बहुत छोटा सा हिस्सा है, जो आप देंगे वही आप पाएंगे, वही चीज़ आप पाएंगे, लेकिन क्वांटिटी तो अलग होती है। यदि स्नेह देंगे तो स्नेह मिलेगा, अगर आप किसी का अन्याय के खिलाफ साथ देंगे तो कोई आपका भी देगा, यदि आप किसी भूखे को भोजन देंगे, प्यासे को पानी देंगे, तो कुदरत वही लौटा के आपको देगी। इसलिए आप खिलाना पिलाना, पशुओं की सहायता करना ना छोड़ें। आवारा पशुओं की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता, वो पशु जो गौशाला में होते हैं, वो पशु जो इंसानों के घरों में होते हैं, वो पशु जो किसी वन्य जीव अभयारण्य में है, नेशनल पार्क में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है या जू में है, उनकी देखभाल करने के लिए कई लोग होते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि गाय दूध देना छोड़ देती है तो उन्हें घर से निकाल उसके घर से निकाल देते हैं, उसके लिए घर के दरवाजे बंद होते हैं। कोई पशु बीमार हो जाता है तो उनके पालक उन्हें छोड़ देते हैं आवारा रूप से, तो इन आचार पशु कहाँ जाएंगे? इनके लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो बस इस कार्यक्रम के जरिए मेरे आपसे ये सखी प्रीति भाग्यास्ते ही गुजारिश करूँगी कि हमने अपने स्वार्थी होने की बहुत तबीयत दे दी है, हमने हमेशा खुद के बारे में सोच करके बताया है कि स्वार्थ क्या होता है, इस मार्ग के और के बारे में सोचते हैं, स्वार्थ से परमार्थ की तरफ चलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बेहतर करते हैं, जो हम करेंगे वही हमसे हमारी आने वाली पीढ़ी सीखेगी, तो चलिए उन्हें सिखाते हैं कुछ अच्छी चीज़, कुछ बेहतर चीज़। और बस मैं चलती हूँ आपको सुनाने, गुनगुनाने एक और मीठा सा प्यारा सा गीत।

खामोशी क्या चीज है और वो समझी नहीं खामोशी।

और ये मीठा सा गीत जब इस तरह के गीत और गज़ल को हम सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, तो दिल के एहसास कुछ अलग ही हो जाते हैं। तो ज़िंदगी क्या है, सच्चियों हर किसी ने अपनी तरफ से बता दिया है, अपनी तरह से समझाया है, अपनी अपनी परिभाषाएँ दी है, पर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। और जैसे जैसे हम थोड़े से बड़े होते हैं, उम्र हम पर चढ़ती है, शायद हम थोड़े संजीदा हो जाते हैं, शायद हम थोड़े समझदार हो जाते हैं। हमें लगता है कि जो हो रहा है वो ठीक है, जो हुआ था वो भी ठीक है। कभी लगता है कि अनायास ही हमने कितनी परेशानियां मोल ली थी, जैसे किसी छोटी सी बात में पसंद की साड़ी ना मिलने पर, या किसी ने हमें कुछ कह दिया उस बात को लेकर के हमने अपना कितना समय ज़ाया किया था। कभी लगता है कि वो मसले जिन्हें हम आज से 10-15 साल पहले बहुत बड़ा मानते थे, आज हम सोचते हैं वो तो कुछ थी ही नहीं, क्योंकि उससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो अगर आपको कभी लगता है कि आप इस दौड़ में दौड़ते हुए थक रही हैं, तो रुक जाइए, मत दौड़िए, मत भागिए। अपने कदमों से, अपनी तरह से, अपनी ही रूप में, अपने ही अंदाज में उस सड़क पर चलते रहिए जिसका नाम जिंदगी है। कभी आपको लगता है कि थक रही हैं आप, तो थोड़ा आराम कर लें, सुस्ताल है, क्योंकि वो औरतें ना जो दावे करती है, अरे हम बैठ गई तो घर का क्या होगा, जब वाकई में वो बिस्तर पर आ जाती हैं, बीमार हो जाती है, तब भी घर वैसे ही चलता है। हो सकता है कि रसोई में मसाले यहाँ वहाँ हो जाए, हो सकता है डिब्बे जैसे आपने जमा के रखे थे वैसे ना हो, वो तो ये भी सकता है कि कपड़ों का ढेर लगा हुआ हो, कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ अस्त व्यस्त हो गई हो, हो सकता है कि चद्दर की सलवटें किसी ने ठीक ना की हो। पर यकीन मानिए, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर जो आप बीमार हो जाती है ना, बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ लव योर सेल्फ, आप खुद से प्यार करें, एंड फर्स्ट वी टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहले आप खुद की परवाह करें, खुद की नहीं करेंगे तो किसी और की कब तक करती रहेंगी। एक और बात, जब हम लोगों को बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जब हम लोगों को मुस्कुरा के कहते हैं अरे कितना अच्छा करा, क्या आपने खुद को कभी कॉम्प्लीमेंट दिया है? क्या आपने खुद की पीठ थपथपाई है? मुश्किल नहीं है, आप अपनी सीधे हाथ को थोड़ा सा उठाएं और उल्टे कंधे की तरफ पीछे ले जाएं, खुद को भी तो शाबाशी दें, खुद को भी तो कहें कि कितना मुश्किल था पर मैंने कर दिया, कितनी थक गई थी पर रुकी नहीं, कितनी दफा रोई थी पर फिर भी उन आंसुओं को पहुँच के, उन आँखों में सूजन लेकर के, दिल में दर्द लेकर के भी मैं मुस्कुराई, मैंने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। कितने घाव लगे हैं सीने पर, कितने जख्मों को उठा दिया, उस सबके बाद भी जब लोगों ने हमारी अच्छाई का, सॉरी रिश्तेदारों ने, परिचित लोगों ने हमारी अच्छाई का बुरा सिला दिया, पर हमने अच्छाई करना तो नहीं छोड़ा। कितनी बार हमने बड़ी बड़ी बातों को अपनी पेट में छिपा लिया। कहते हैं ना, महिलाओं का पेट जरा मोटा हो जाता है शादी के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद। वो मोटा शायद इसलिए होता है कि हमें उसमें बहुत सारी बातें रखनी पड़ती है। कितनी बातों को अपनी पेट में रखने के बाद भी जब कोई आपकी छोटी सी बात ना पचा पाया हो तो कितना बुरा लगा, पर फिर भी हमने अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ा। और कितने धोखे खाने के बाद हमें समझ में आया कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, धोखे खाने से आती है, पर फिर भी हमने धोखा नहीं दिया। तो बस अगर आप भी इस कैटेगरी में आती हैं, कोई भी बात इनमें से या दो चार बातें या शायद सारी बातें आपके किरदार पर भी बिल्कुल सही फब रही है ना, तो बस ये दिन आपका है। आज इतवार है और आप 26 जुलाई के दिन खुद को ही

शाबाशी दें, कारगिल विजय दिवस की तरह आप खुद के लिए भी एक विजय दिवस मनाएं। एक दिन तो खुद के लिए होना चाहिए, कुछ पल तो खुद के लिए होने चाहिए, जब आप वाकई में देखें कि वो छोटी सी आप थी और कितनी बड़ी आप हो गई है उस बीच में, हर दिन हर उम्र में कितना कुछ आपने सीखा है। सो लर्निंग इज द लाइफ टाइम प्रोसेस, ऐसे ही सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ना, मतलब कोई फाइन लाइन नहीं बनी हुई है, कोई डेड लाइन नहीं बनी हुई है कि बस इस समय तक ही हमें संघर्ष करना है, इस समय तक ही हमें सीखना है, बस यहीं तक हमारा सफ़र पूरा हो जाएगा। ये तो ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ें हैं। तो क्योंकि आप मुस्कुरा थोड़ा सा कम रही हैं, तो आपको खुश करने के लिए मैं ले चलती हूँ आपको आप ही के ज़माने में, और सुनते ही गुनगुनाते हैं एक और प्यारा सा मीठा कवि।

और अब प्यारे से गीत को सुनने और गुनगुनाने के बाद क्या आप जानते हैं कि आज कुछ और भी है। आज है इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम। अब आप बताइए ये होता क्या है। जैसे हम जानते हैं कि

मैगजीन को मनाने की घोषणा की थी। इसे पहली बार आधिकारिक रूप से 26 जुलाई 2016 को मनाया गया। और आप जानते हैं कि भारत में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ है? शायद आपने नाम सुना हो कि सुंदरबन डेल्टा जो हमारा हिस्सा है, सुंदरबन पश्चिमी बंगाल का जो ये क्षेत्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एकल मैंग्रोव वन है। भीतरकनिका ओडिशा में है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। पिचावरम तमिलनाडु, यहाँ का मैंग्रोव वन बहुत सुंदर है और पर्यटन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। भारत के आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है, पूर्वी तट का एक बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ भारत के सबसे घने मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और गुजरात का कच्छ क्षेत्र पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा मैंग्रोव इलाका है। जो सुंदरबन का मैंग्रोव क्षेत्र है, यहाँ सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, जहाँ बाघ रहते हैं और तैरना जानते हैं। यहाँ के पेड़ों की जड़ें जमीन से ऊपर हवा से निकलती हैं ताकि वो सांस ले सकें, कि दलदली मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है। और यहाँ विशाल काय खारे पानी के मगरमच्छ और दुर्लभ कछुए पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव एरिया जो है वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमें इस जैव विविधता को ना केवल स्वीकार करना चाहिए बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी इस विषय में बताएं, उन्हें भी जागरूक करें। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमने ढेर सारी बातें की, हमने मीठी मीठी गीत सुने, गुनगुनाए। अगले कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी, ढेर बातें होगी। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। और मैं यानी आपकी रेडियो सखी प्रीति भाटिया आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम मुमन, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2 बजे हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे पहले अंग्रेजी में फिर हिंदी में समाचार।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। इस समय दिन के 2 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप पहले अंग्रेजी और उसके बाद हिंदी में समाचार सुनेंगे।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश माको विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi remembers brave hearts of the nation on Kargil Vijay Divas today, says their sacrifices for the nation fill everyone with pride. In his Mann Ki Baat program, Mr. Modi lauds collective perseverance of Indian scientists and engineers, leading to country scaling new heights in defense production and space sector. Mr. Modi says he is proud of the nation's youth power, who've been performing exceptionally well in sports events and international Olympiads. President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan lead the nation in paying tributes to country's brave soldiers for their supreme sacrifices during Kargil War. Government urges Indian nationals to assess the prevailing security situation before accepting assignments on commercial vessels operating in the Black Sea region. And IMD issues red alert for extremely heavy rainfall over central Maharashtra and Odisha today. Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Divas, stating that India is continuously scaling new heights, be it in defence production, defence exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Divas is being celebrated today.
3: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
1: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वही सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
1: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की।
0: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है।
1: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
0: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
1: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
0: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेश्राम का भी उल्लेख किया।
1: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी, वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
0: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
1: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
0: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
1: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
0: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रहलाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 99 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए है। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर चार भारतीय सवार थे, इनमें से दो भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डोरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
2: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डोरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालीम को हराकर उन्होंने खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई है। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशदीप फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था। फिल्म है जब जब फूल खिले, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है।

से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बतूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मीना, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सही परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

सुन चुराए तू राग बनी खुद मंजिल पीछे रह गई मुश्किल।

0: दिन में नहाए तुम काह बनी खुद मंजिल पीछे रह गई मुश्किल साथ जो आई तुम
1: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: आंखें ऊपर वाले की नियामत है, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जन कार लाया हूँ अगर सुन ले।
1: एक राज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
0: दिल जो न कह सका।

छोटी छोटी बातें इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम मन चाहेगी।

इजाजत हो तो मेरे सरकार के पहलू में आ जाऊं, इजाजत हो तो मेरे दिलदार के दिल में समा जाऊं।

शर्म को छोड़ दो मेरे जाना, गले से तुम भी मिल जाओ। ये पर्दा तोड़ दो मेरे जाना, मेरी सांसों में घुल जाओ।

0: है हवा भी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा तुमको पाने का इरादा है, ये मौसम भीगा भीगा है।
1: आप सुन रहे थे धरती फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, रचना थी हसरत जयपुरी की और इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश भेजी थी आप सभी श्रोताओं ने। शालर पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेहरुद्दीन कैशरद्दीन और नजमुद्दीन, भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला ज्योति श्याम कुंवर और इनके अन्य साथी। इसी गाने की फरमाइश आई थी बरुड़ जौलका से महेंद्र सरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद सरकटे की ओर से।

आपकी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, रचना थी आनंद बख्शी की और फरमाइश थी आप सभी श्रोताओं की। मान्यवाड़ा रोड से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता मनोहर, लक्ष्मण देबुलकर और इनके परिजन, और इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार की ओर से, और रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिवंगर गद्रे, राजेश शुभांगी और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई थी जबलपुर बरकी नगर से। चलिए अब सुने अगला गीत ये।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये था सूरज फिल्म का गाना। रचना थी हसर जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश थी आप सभी की कमरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके साथी। और इसी गाने की फरमाइश थी नेकी राम बासीवाल, जॉनी बासीवाल, धनराज बासीवाल की, श्री गंगानगर से, दमणी मानोरा से पेंटर तुलसी राम डेरे, मायावती डेरे, पेंटर संदेश डेरे, आदेश, किरण प्रज्वल और अनुत डेरे की फरमाइश थी। सुनिए अगला गाना, ये अपनी ही फरमाइश पर।

मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, हो गई प्यार की हर तमन्ना।

आत्मा हो गई प्यार की।

कतियापारा जूना विलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश लोकेश देवांगन, आशीष रवीश अनी कान्हा और आदित्य इसी गाने की फरमाइश भेजी थी आप सभी ने। कस्बा वराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत और प्रियंका, जयप्रकाश, राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरमीत, गुरुशब्द, राहुल यहीं से मतलब जिला अंबाला से। आप सुन रहे थे रखवाला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

इवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत आप सभी की पसंद का। ये गीत फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, आनंद बख्शी की बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत और फिल्म थी गीत। गीत को सुनना चाहा था आप सभी श्रोताओं ने। कर्नाटक चिन्ना तिरुपति से प्रकाश, श्यामला, अश्विनी, रमेश, आनंद, अन्वित और इनके परिजन, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार, दीपक और

महबूबा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन, पसंदकर्ता हमारे ये श्रोता थे छत्तीसगढ़ बोर तालाब से शत्रुघ्न लाल यादव, गौतम यादव, संगीता यादव और सचित यादव, अलीबाड़ा तामिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से देवी राम इनावती, दामिनी इनावती।

आदत सी किसी में नहीं खुशबू तेरे बदन सी किसी में नहीं।

तुमसे अच्छा कौन है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। रचना थी हजरत जयपुरी की, संगीतकार थे शंकर जयकिशन और फरमाइश भेजी थी इस गाने के लिए आप सभी श्रोताओं ने। गांव कोटगा बहादुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से तूफान पटेल, टीना दांगी और लक्षित दांगी ने। इसी गाने की फरमाइश आई थी आप सभी की ओर से राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, सुनील प्रसाद और इनके परिवार की ओर से। चांदनी चौक गवई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविंद्र रौनक सेन और इनके साथियों की ओर से आई थी फरमाइश। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

विविध भारती। नाट्यतरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक वो आएगी। इसके लेखक हैं तस्वीर आबिदी, निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। तो आइए सुनते हैं नाटक वो आएगी।

0: बच्चे कुछ कहना चाह रही है।
1: इतनी जोर से कॉफी हाउस में नहीं हंसा जाता।
0: वही नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं
2: इस कॉफी हाउस के गोश की बहस पर ये तीन अजनबी, तीन दिमाग, तीन अलग अलग विचार रखने वाले तीन इंसान एक साथ इस तरह घुल मिल कर बातें कर रहे हैं, क्या ये एक इत्तेफाक है या ये तीनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं? जी हाँ, यही है वो बुनियादी प्रश्न, एक ऐसी गुत्थी जिसको ये तीन दिमाग सुलझाना चाहते। इस कहानी और इस कहानी के सभी पात्र फर्जी तो हैं, लेकिन इसका मकसद, इसकी आत्मा मोहब्बत है। और आज का इंसान इस छोटे से शब्द के दामन में छुपे हुए संसार के सबसे बड़े उस सुख से दूर होता जा रहा है जो परमात्मा का धरती पर मानव के लिए एक ऐसा वरदान था जिसका स्वाद जानने के लिए ईश्वर के अवतारों को अपनी जन्म कुंडली का सूत्र धरती से जोड़ना पड़ा।

0: आकर नहीं आएगी?
1: वो आएगी।
2: ये कौन है?
1: वो आएगी।
0: आखिर ऐसे क्यों घूमता है?
1: वो आएगी।
3: कासिम साहब,
4: मेरे दोस्त, तुम किस सोच में पड़ गए? क्या मनोविज्ञान के किसी चैप्टर में खो गए?
5: कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आएगी। महानगरीय शोर शराबे के सीने को छीपती हुई ये आवाज तुमने सुनी?
4: हाँ, मैंने भी सुनी।
5: आखिर वो किसको बुलाता है?
4: देखो दोस्त, मैं तुम्हारी तरह फलसफी तो हूं नहीं।
6: हाँ भाई, एक सियासी आदमी फलसफी हो भी कैसे सकता है?
4: मेरा नजरिया है कि वो यकीन की उस रोशनी की तरफ इशारा कर रहा है जिसकी हर किरण प्रेम का पैगाम है। वो सत्य है जिसकी गगनचुंबी इमारतें ऋषियों, मुनियों और महात्माओं के उपदेशों के आधार पर खड़ी है।
7: हो सकता है मेरे दोस्त तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे विचार सही हूं, लेकिन सच पूछो तो ये एक विज्ञान का दौर है। अब हम जमीन की बातें कम और आकाश की ज्यादा कर रहे हैं। जरा सोचो, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने ऐसे ऐसे रहस्यों को उद्घाटित किया है
4: जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
8: हाँ, ये तो है, ये तो है।
5: आइए मैं आपको उस जगह ले चलूं जहां इस कहानी

0: करो सुधीर।
1: सुहेल डियर, काफी अरसे के बाद हम एक दूसरे से मिले हैं, और वो भी एक अजीब बात के सिलसिले में। खैर छोड़ो, फिर किसी वक्त बताऊंगा। तुम अपनी सुनाओ, शादी वादी भी की? अरे हाँ, ठीक याद आया, तरन्नुम और तुम्हारे डैडी।
0: तुमने बहुत से सवाल कर डाले।
2: कोई जाओ।

0: गॉड, बेचारा देखो कितनी बुरी तरह जख्मी हुआ है। एक इंसान के खून की
1: कहानी इसी सड़क पर खत्म हो जाती है जहां से
0: कहानी। ओह, मगर तुम इधर कहां जा रहे हो? क्या घर?
1: हाँ।
0: क्यों?
1: कुछ नहीं।
0: ओह, तो तुम काफी सीरियस हो रहे हो, इसकी वजह
1: है मेरे दोस्त।
0: तो क्या तुम मुझको नहीं बताओगे?
1: जरूर बताऊंगा। सो गया मेरे बचपन का दोस्त, बिल्कुल नहीं बदला। और मैं कितना बदल गया हूं। कितना थक गया हूं मैं। जीने की तमन्ना नहीं, अभी तो मुझे फौजिया की निशानी, मेरी अपनी बच्ची फौजी की परवरिश करना है।

कितनी शरीर है। कौन? ओह कुछ नहीं, मेरा फहम। आज मुझे फौजिया की याद फिर सता रही है। फौजिया मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी और फरुख की मोहब्बत कितनी सच्ची थी। कौन? कुछ भी तो नहीं। आज कितना डर लग रहा है मुझे, अंधेरा भी तो छाया है। मेरी पूरी जिंदगी ही तारीख हो चुकी है। मैं पापी जो हूं, आज मेरा शरीर खुद मुझसे नफरत करेगा। मैंने सुलह तो की है अपनी फौजिया पर,

0: गवाह की आग में सुलगता रहूं। फौजिया, मेरी फौजिया मुझे माफ कर दे। और फर्रुख, हो सके तो तू भी इस गुनहगार को बख्श दे। फौजिया, फौजिया माफ कर दे। मेरी फौजिया वो पागल है, तू आएगी जरूर आएगी जरूर आएगी।
1: सुहेल, सुहेल होश में आओ, ये क्या?
0: मुझे माफ कर दे फौजिया, तुझे अपनी निशानी की कसम।
1: होश में आओ सुहेल, क्या बात है? बोलो बोलो, कौन फौजिया, कैसी निशानी?
0: माफ करना सुधीर, मुझे डर लग रहा है।
1: क्या बात है, क्यों डर रहे हो? फौजिया कौन है?
0: कुछ नहीं सुधीर, बस डर।
1: नहीं, नहीं नहीं, छुपा नहीं सकते, बताओ क्या बात है? तुम शाम से ही उदास हो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारे।
0: शुक्रिया सुधीर, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, हमदर्द हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, सब कुछ बताकर अपना गम हल्का करूंगा।
1: शायद उस पागल के एक्सीडेंट ने तुम्हारे दिमाग पर गहरा असर छोड़ा है, तुम उसी वक्त से उदास।
0: हां सुधीर, वो पागल, उसकी आवाज एक अरसे से मेरा पीछा कर रही है।
1: मैं समझा नहीं, वो पागल आवाज?
0: कुछ नहीं,
1: पहले ना बुझाओ सुहेल, तुम्हारी उदासी, फौजिया, निशानी, आवाज,
0: तुम्हारा हर सवाल एक ही कहानी की कड़ियां है मेरे दोस्त, मेरी जिंदगी की कहानी।
1: ओह, ये तुम हो जिसकी जिंदगी कहानियों से दूर थी।
0: हाँ, कभी थी और अब एक दर्दनाक कहानी, मगर दूसरों से कहता रहा कि मेरी जिंदगी अब भी कहानियों से दूर है,
1: और खुद को धोखा देता रहा मगर क्यों?
0: ताकि तुम्हारा समाज, तुम खुद मुझसे नफरत मगर इसलिए सब कुछ छुपाता रहा, लेकिन आज।
2: सुहेल साहब, आप बहुत आगे बढ़

0: आए हैं। कई बार चाहा कि आपको रोकूं और साफ साफ कह दूं, धोखे में ना रखो। हाँ सुहेल साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप एक छोटी सी मुलाकात को इतनी अहमियत देंगे, वरना मैं आगे बढ़ने से आपको रोक देती। खुदा के लिए, खुदा के लिए आप जहाँ हैं वहीं से लौट जाइए प्लीज।
1: मगर क्यों?
0: इसलिए कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं और फर्रुख।

0: मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हारी जान।
1: सुहेल साहब, आप?
0: हाँ मैं, और अगर तुम मेरे रास्ते से नहीं हटोगे तो मैं
1: तो आप मुझे अपने रास्ते से हटाकर फौजिया को अपना लेंगे। क्यों?
0: हाँ,
1: फिर भी आप फौजिया को अपना ना सकेंगे
0: तो तुम नहीं मानोगे। तो लो,
2: सुनवाई
0: तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं
2: छोड़ूंगा तुम्हें। मैं तेरी जान ले लूंगा, तेरी जान ले
0: लूंगा। अंधी मोहब्बत, एक तरफा मोहब्बत, कुछ भी हो। फौजी,
3: आप मुझे फौजी कहकर न पुकारा कीजिए।
0: मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि फर्रुख भी तुम्हें इसी नाम से पुकारता था।
3: मैं फर्रुख को भूल चुकी हूँ और अब आपकी बेटी हूँ।
0: फौजी, मैं जानता हूँ कि मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी कर दी, तुम्हारी और फर्रुख दोनों की जिंदगियों में खून लगा दिया। फौजिया, आंखें खोलो फौजिया।
3: अरे ये तो बेहोश हो गई।
0: फौजिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जब से तुमने इस नन्ही सी जान को जन्म दिया, तुम्हारी हालत दिन ब दिन और बढ़ गई। मैंने दो जिंदगियों को तबाह किया। मैं कभी चल नहीं पाया। नीलम, मेरी फौजिया को क्या हो गया है?
3: बस करो सुहेल, जो तुमने किया, हे भगवान इसे बचा ले। मेरी अजीज सहेली, मेरी बहन, होश में आ। देख मैं हूँ नीलम। लो ये दवा पी लो।
4: कौन?
3: नीलम। हाँ फौजिया, मैं नीलम।

0: और ये देखो तुम्हारी नन्ही फौजी, इसे गले लगा लो।
1: आ, मेरे बच्चे, वो सुहेल कहाँ है?
2: मैं तुम्हारे पास हूँ फौजी।
1: मेरा आखिरी सलाम
2: फौजी,
1: हो सके तो मुझे माफ कर दो।
2: नहीं फौजी,
1: मैं तुम सबसे दूर, बहुत दूर जा रही
2: हूँ।
1: नीलम, नीलम मेरी बच्ची, मेरी फौजी, अपनी अमानत, मैं तुम्हें सौंप रही हूँ।
2: Oh, my God.

0: ये कहानी आज भी तीन सीनों में दफन है। फौजी आज इस दुनिया में नहीं, फर्रुख पागल है और नीलम एक देवी जो आज भी वचन निभा रही है और मेरी फौजी की परवरिश कर रही है।
1: फर्रुख का क्या हुआ सुहेल?
0: फर्रुख, सुधीर, जब फौजिया का जनाजा घर से जा रहा था तो मैंने देखा।
1: क्या?
0: मैंने देखा सुधीर, जनाजे के सबसे पीछे वो फर्रुख था।
1: फर्रुख? वो हाँ, पागल?
0: हाँ सुधीर, वो चुपचाप जनाजे के पीछे चला रहा था। वो कब्रस्तान तक गया, लगता था वो पागल नहीं है, वो रो भी नहीं रहा था, बस उसकी हालत बता रही थी कि वो पागल है। लेकिन जब फौजिया की लाश कब्र में उतारी गई और मिट्टी डाली जाने लगी तो वो कुछ कहता हुआ भाग रहा था।
2: भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी, भाई जी,
3: अभी
0: अभी मेरी बच्ची
3: अभी आप रो क्यों रहे हैं?

0: जाइए ना, हम आपको बहुत चाहते हैं।
1: मेरी प्यारी बच्ची।
0: अब तो नहीं रोइएगा अभी।
1: नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। सुधीर, यही है मेरी बेटी फौजी। तुम्हारी आंटी कहाँ है बेटी?
2: मैं यहाँ हूँ सुहेल भाई।
1: अरे नीलम, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो आप?
3: आप नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी?
2: जी, मैं नीलम, डॉक्टर रमेश की बेटी। मिस्टर सुधीर, आप यहां कैसे?
3: जी जी, वो खूब।
1: तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो?
2: नहीं सुहेल भाई, हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले, सिर्फ तस्वीरों की मुलाकात।
3: वो इत्तफाक से। नीलम जी, मैं सुहेल का दोस्त हूं।
1: और अब ये तस्वीरें हकीकत के रूप में एक दूसरे के सामने मौजूद हैं। अब क्या इरादे हैं?
2: सुहेल भाई, मैं अपने इरादों पर अटल हूं।
3: इरादों?
2: जी फौजी, जो मेरी अजीज सहेली की निशानी है, अब मेरी जिंदगी, इसकी परवरिश, मेरे सपने और इरादे।
3: आपसे इस अचानक मुलाकात से पहले मैं फौजी को सुहेल से

0: मान चुका हूं, मगर सुहेल ने कहा था कि फौजी पर मुझसे ज्यादा नीलम का हक है, यानी आपका।
1: हां सुधीर साहब, फौजी मेरी जिंदगी का हिस्सा है। जब उसे मैंने अपनी बहन फौजिया की मौत के बाद अपनी गोद में लिया तो मैं उसकी मां तो नहीं,
2: मां की ममता से इसकी झोली भरती।
0: फौजी के लिए अगर आज मैं आपके सामने अपना हाथ,
1: फौजी मेरी जिंदगी है
0: नीलम जी।
1: ये नाम आपका नहीं मिस्टर सुधीर?
0: नीलम जी, फौजी मेरी भी है।
1: जी नहीं, सिर्फ मेरी।
3: अरे अरे, अंकल और आंटी तो लड़ने लगे अब्बू।
2: हाँ बेटी, मेरी समझ में।
3: आप रोइए नहीं अब्बी, मैं समझाती हूँ। आंटी आप और अंकल आप दोनों इधर खड़े हो जाइए।
0: खड़े हो जाइए?
3: बोली नहीं, बस खड़े हो जाइए।
1: नहीं फौजी, ये तुम
3: एक साथ खड़े हो जाइए, नहीं तो मैं रोने लगूंगी।
0: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
3: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी अब मैं कैसी लग रही हूँ?
2: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
3: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे।

0: लगूंगी।
1: अच्छा अच्छा, लो हम खड़े हो गए।
0: हाँ बस, अब मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। ऐसे अभी अब मैं कैसी लग रही हूँ?
2: बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छी।
0: तो अभी हम लोग ऐसे ही रहेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे तस्वीर आबिदी का लिखा ये नाटक वो आएगी। इसका निर्देशन किया जयदेव शर्मा कमल ने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने तरती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
3: तेरा जवाब नहीं।
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनोरी।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
1: देखिए जब आप बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है? हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 27 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे अपनी यादों के उजाले बिखेरने आई हैं हमारे साथ। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस लंबी बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरी कड़ी।
1: थोड़ा सा पीछे चलते हैं और आपकी शादी वाला जो किस्सा है वो सुनना चाहते हैं।
2: नहीं, शादी वाले किस्से में ऐसा कोई खास वो नहीं था जो मैंने सोचा कि मुझे हमेशा की तरह नहीं अच्छा कमाने वाला पति ढूंढ के उसके साथ एक साहिबा बन के नहीं जिंदगी बितानी, मुझे अपना काम करना है, मुझे ऐसा कोई चाहिए जो जिसके साथ काम करने में मजा आए, और ऐसा मिल गया दोस्त, ऐसा मिल गया साथी अरुण। और फिर माँ को मेरी बिल्कुल नहीं पसंद था रिश्ता, फिर बाद में वो ठिकाने आ गई बहुत। अप्पा तो उन्होंने साथ दिया क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मैं बिल्कुल अड़ गई हूँ, तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन माँ नहीं आई थी। लेकिन अरुण और मैंने शादी की और हम दोनों का तो पक्का था कि नाटक करने हैं जिंदगी भर। फिर टेलीविजन की नई नई शुरुआत हो रही थी, टेलीविजन नाटक फिल्म अगर हो पाई तो, तब तो वो एक सपना था सुनहरा, लेकिन ये हमने किया। और फिर अरुण भी एक साल बाद मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गए, और अरुण को तो 3 साल अलका जी मिले क्योंकि तब तक वो 3 साल का कोर्स हुआ था, और अलका जी साहब फिर आगे वहां रुके, तो मैं तो निकल गई। और फिर क्या हुआ कि हमने नाट्य ध्वई करके एक अपनी संस्था शुरू की और हम एमेटर तौर पर नाटक दिल्ली में करने लगे। पहले तो हमने बहुत सारे मराठी जितने भी थे मराठी नाटक खेल डाले, है ना, मेरे अपने भी थे उसमें, पुल देशपांडे के थे, फिर वासना कांड महेश इलकुंजवार का था, फिर ऐसे बहुत जितने भी हाथ लगे वो ड्रामे किए। और क्या होने लगा कि 2-4 शोज के बाद ये पता चलता था कि पहले तो हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल, और फिर बाद में धीरे धीरे धीरे, क्योंकि दिल्ली में मराठी थे कितने, जितने थे वो 3-4 शो में खत्म होते थे आके, फिर वो खाली हॉल। फिर हमने सोचा कि ये बात सही नहीं है, इतनी मेहनत करो और ये फिर इकोनॉमिक्स नहीं बैठ रहा इसका, तो क्या किया जाए क्या किया जाए। फिर एक बहुत अच्छी तरकीब सूझी कि क्यों नहीं अच्छे अच्छे गायक मराठी नाटक चुन के उनको हिंदी में पेश किए जाए, है ना। तब हमने किया सखाराम बाइंडर, किया ये किया वो किया, और सखाराम बाइंडर

0: डर के चक्कर में मुझे जेल जाने की नौबत आई थी। वो किस्सा आपको जरूर सुनाती हूँ।
1: जी जी।
0: और उन दिनों क्या था कि वो नाटक ऐसा ये बिल्कुल नहीं था व्यावसायिक तौर पे, हाँ प्रोफेशनल नाटक था ही नहीं, तो लोग फिर करते थे। और ऐसी कुछ एक संस्था थी जहां से परमिशन लेनी पड़ती नाटक खेलना अगर आपको हो, और उनको पटाना होता था कि भाई हमारा बहुत नेक ये उद्देश्य है फलां ढिमका वगैरह वगैरह, फिर वो परमिशन आपको देते थे, फिर आप टिकट लगा के नाटक कर सकते थे। तो हमने ये सखाराम बाइंडर का सोचा करने का, और कास्ट भी बहुत बढ़िया मिल गई हमको, वो लक्ष्मी के रोल के लिए सुधा चोपड़ा और चंपा के रोल के लिए सुषमा सेठ जैसे कलाकार मिले, अरुण तो सखाराम बाइंडर के रोल में वगैरह, और मैं डायरेक्टर। तो और विजय तेंदुलकर तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने बड़े खुशी खुशी हमको परमिशन दे दी। तो ये शो, लेकिन ये हमने इनको लिखा कि हमको ये शो करना है, उनसे जवाब ही ना आए, वो कोई दखल ही ना दे। एक बार हुआ, दो बार हम पहुंचे वहां, फोन किए, ये किया वो किया, कुछ नहीं, वहां तक कि उनके चपरासी भी रुक के हमसे बात करने को राजी नहीं थे। तो अब क्या करें क्या करें, हम बहुत घबराए, और थिएटर के डेट्स ले चुके थे और सबके डेट्स ले चुके थे, और वो सब पास आ रहा था, हाँ हवे की तरह। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बात बनी। तो फिर किसी ने ये सलाह दी कि देखो और लोग भी ये करते हैं, तुम लोग निमंत्रण छापो, हाँ, कि आपको ये बुलाया है मुफ्त में, और फिर वो निमंत्रण बेचो, ओके, 10 रुपए में 25 रुपए में जो भी तब होगा। तो हमने कहा हाँ ये अच्छी तरकीब है। तो हमने वैसे निमंत्रण छापे, उनको बेचे, और सखाराम बाइंडर की तब बहुत हवा थी क्योंकि बंबई में तो तूफान मच चुका था सखाराम बाइंडर को लेके, तो दिल्ली में भी फिर लोग, और फिर हमारा ग्रुप भी नाइटेड वे अब तक बहुत लोकप्रिय हो चुका था। तो फिर देखते ही देखते सब हमारी निमंत्रण ही कहो बिक गई। और फिर जिस दिन खेल था, हमें कुछ नहीं बताया, वो उनके लोग चुपचाप आके देख रहे थे, और बाहर भी हमने कुछ बेचने के लिए, हम बिल्कुल मतलब उसमें हमें लगा ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये तरीका दूसरा था ही नहीं, उन्होंने दरवाजे बंद किए थे, अब हम क्या करें। फिर उन्होंने वो लिए एक दो खरीदे हमारे निमंत्रण, और फिर हमारे घर 2-3 दिन बाद उनके लोग आए कि आपको कानूनन ये करेंगे क्योंकि आपने ये बहुत गुनाह किया है, आपने टिकट, ये गुना तो था ही। तो हमने कहा फिर क्या करें, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, नहीं नहीं वो तो सुनने वाले थोड़ी थे। तो और जैसा मैंने कहा उनके चपरासी भी रुक के देखने को तैयार नहीं थे हमारी तरफ, बहुत हम गिड़गिड़ाए, ये किया वो किया, उनको प्रूफ दिया कि हम फला दिन को हम आपके दफ्तर में आए थे, धमकाने दिन ये देखो हमने ये इस तारीख को भेजा है लेटर, सब हमारे पास था, वो सुनने को तैयार नहीं। फिर किसी ने कहा क्या करोगे तुम, तो सचमुच जेल जाने की नौबत आ गई, मतलब दिस इज हाउ वी ऑपरेट, व्हिच इज सो सैड।
1: जी जी। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर जरूर।
2: दीवाना
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी,
1: दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दो

0: यो में अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में
1: आसमानी या आसमानी।

दो दीवाने शहर में रात में या दोपहर में आप जाना ढूंढते हैं आशियाना ढूंढते हैं दो

0: तो वो पूरे नाटकों का दौर चलता रहा।
1: हाँ जी।
0: और दिल्ली में आपने बहुत सारे नाटक।
1: हाँ, एक पंजाबी में भी किया।
0: जी
1: जी, पंजाबी में किया, वेंकटेश माडगुलकर का नाटक था तू वेड़ा कुम्हार। हाँ, उसका चक्का चलता है, सुरेंद्र गुलाटी ने उसका ट्रांसलेशन किया, बखूबी ट्रांसलेशन किया। और मजे की बात ये कि वो मराठी नाटक पंजाबी भूमि में इतना मजे से बैठ गया और उग गया, क्या बताऊं मैं, बहुत ही मतलब लगा कि ये पंजाब में ही ये नाटक का निर्माण हुआ है।
0: टूर भी किया था उसको लेके?
1: नहीं, टूर नहीं किया,
0: सिर्फ दिल्ली में किया।
1: दिल्ली में किया, हाँ। और लेकिन मजे की बात होती, पंजाबी तो मुझे आती नहीं, मुन्नियर समझ में तो आती ही है, दिल्ली रहो तो हर चौथे पांचवें दिन एक बहुत ही हमारे कलाकार, और कलाकार भी बहुत गजब के थे, कुलभूषण खरबंदा, श्याम अरोरा, सुधा चोपड़ा, कीमती आनंद, ऐसे बहुत होनहार कलाकार थे। और पांच छह दिन बाद उनमें कलाकारों में एक झगड़ा होता था, और झगड़ा वो ऐसा मतलब छप्पर उड़ा देने वाला, तू की कह रहा है शाम, वो तो चुप रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। और क्यों ये झगड़ा होता था कि एक था जलंधर का, एक था पटियाला का, एक था चंडीगढ़ का,
0: हाँ
1: वगैरह वगैरह, हर अलग अलग जगहों से थे और हर एक की बोली थोड़ी सी अलग थी। तो ये कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे कहते, दूसरे कहा नहीं ना जी ना तू की कह रहा है हाँ वगैरह वगैरह का, मैं चुप कोने में बैठी सुनती थी। जब वो अपना शांत हो जाता था 10-15 मिनट झगड़ के, फिर शांत हो जाते थे, एक की जीत होती थी, नाटक रिहर्सल फिर आगे चालू। वो इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल थिंग।
0: लेकिन लैंग्वेज का एक पुल भी पार किया मराठी नाटक पंजाबी।
1: जी जी,
0: यहाँ से दूरदर्शन का सीन कैसे आया?
1: दूरदर्शन, अब मुझे याद याददाश्त में मेरी वक्त के बारे में बहुत गड़बड़ है, मतलब क्या पहले क्या बाद में ये सही ढंग से याद नहीं आता। लेकिन
0: जहां तक मुझे याद है आप आकाशवाणी भवन गई थी।
1: हाँ नहीं, वो बहुत पहले गई थी, जब मेरा कोई ताल्लुक नहीं था टेलीविजन से या कुछ भी, तब मैं सिर्फ नाटक वगैरह करती थी दिल्ली में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाद। हाँ, एकदम वहां से मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पहुंची एज अ टीचर।
0: जी,
1: प्रोफेसर ऑफ स्पीच एंड ड्रामा,
0: डिक्शन। जी
1: हाँ, डिक्शन एंड ड्रामा। हाँ, तो वो एक साल ही मैंने वहां पढ़ाया, और मेरे ये सुन के आपको, आपके होश उड़ जाएंगे शायद, मेरे स्टूडेंट्स की नामावली सुन के,
0: बड़े दिग्गज लोग,
1: एब्सोल्युटली, जलाल आगा, साधु मेहर जो नेशनल अवार्ड विनर था श्याम बेनेगल की फिल्म में, रेहाना सुल्तान दस्तक की हीरोइन, फिर राकेश पांडे
0: जी,
1: जो भोजपुरी का अमिताभ बच्चन,
0: उनको लेके फिल्म लॉन्च हुई थी संगत।
1: किसकी?
0: राकेश पांडे को लेके कुछ कुछ फिल्में
1: हाँ
0: लॉन्च हुई थी, पर उनका ज्यादा नाम नहीं हुआ।
1: नहीं, उस भोजपुर में बहुत नाम, वो उसमें थे ना बाशु चटर्जी की फिल्म थी ना सारा आकाश,
0: उसमें
1: उसका हीरो था
0: जी।
1: हाँ, राकेश
0: बाद में बनी, लॉन्च की थी संगत, उसमें अच्छा, भी वो हीरो थे पर वो बनी नहीं।
1: वो नहीं, नहीं वो उसका ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो भोजपुर की तरफ मुड़ गए और भोजपुर में बहुत नाम कमाया राकेश ने। यहाँ तक कि मुझे एक बार, फिर बहुत सालों बाद हम दोनों जूरी में थे, मैं चेयरपर्सन थी उस साल जूरी में और राकेश एक मेंबर थे जूरी, तो तब हमारी बड़ी प्यार से कि इतने सालों बाद मिले, और किसी ने मुझे कहा कि राकेश अब भोजपुरी का अमिताभ बच्चन है वगैरह वगैरह, तो बड़ा अच्छा लगा सुन के। अभी मोटे वोटे हुए थे, तब दुबला पतला था जब मेरे क्लास में था, तो ऐसे इन लोगों को सिखाया पढ़ाया।
0: शैलेंद्र सिंह वगैरह भी थे?
1: नहीं, अच्छा। मेरे क्लास में ना, तो ये हुआ। और हाँ, जब मैं थी अगेन इश्तहार टेलीविजन तब शुरू हो गया, और हाँ उसके पहले आपने कहा कि कब आकाशवाणी भवन गई थी, तो जब मैं गई थी जब वो सब बन रहा था, और तब सिर्फ स्कूलों का टेलीविजन होता था, स्कूल के लेसन होते थे घोचू तरह के, हाँ बहुत ही ड्राई और बहुत ही मतलब, लेकिन वो रोजाना एक रिहर्सल के तौर पे वो पेश होते थे। तो वो मैं ऐसे ही देखने गई आकाशवाणी भवन, अब याद नहीं क्यों गई कैसे गई, और मुझे किसमें कौन मेरे गाइड होंगे, अगेन आई एम टेकिंग द सेम नेम फॉर द सेकेंड टाइम, पुलर देशपांडे।
0: वाह वाह वाह,
1: क्योंकि ही वॉज इन द फाइनल कमिटी, द मेजर कमिटी, मास्टर कमिटी जो थी टेलीविजन का पूरा वो करने वाली, हाँ सब रवैया, तो वो थे और उन्होंने कहा अरे सही तू कभी अली सर, ये बड़े खुशी हुए मुझे देख के, क्यूना से हमारी पहचान थी आकाशवाणी से
0: जी।
1: तो फिर उन्होंने मुझे पूरा घुमाया, वो छोटा सा स्टूडियो था तब आकाशवाणी भवन में, नन्ना सा स्टूडियो, और उसमें वो तीन कैमरा और हर कैमरा का अलग क्या उसका ये है, हर एक का की ड्यूटी क्या है वगैरह वगैरह, यंत्रणा पैनल पे कैसे पेश किया जाता है, लाइटें कैसी, वह सब उन्होंने मुझे सिखाया। और तब मुझे जरा भी मतलब एक इतना भी नहीं ये हुआ लगा कि एक दिन अपन यहाँ आने वाले हैं,
0: क्या बात है, ये ख्वाब भी नहीं था,
1: ख्वाब भी नहीं था,
0: ये जगह जिंदगी ले जाने वाली,
1: मेरी कार्य भूमि बनने वाली है 8 साल के लिए। और तब ये इश्तहार पढ़ा जब मैं ये फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो फिर उधर अगेन अप्लाई किया कि देखते हैं क्या होता है, एंड तो वहां चुनी गई मैं। और पहले 6 प्रोड्यूसर जो थे, भारत के पहले 6 टेलीविजन प्रोड्यूसर्स, उसमें से मैं एक हूँ, ये मुझे बहुत नाज के साथ
0: क्या शानदार बात है, वाह वाह,
1: बहुत नाज के साथ मैं कहती हूँ। और मेरे साथ थे ए प्रताप करके थे, फिर एक वासुदेव थे, कुमार वासुदेव, पी कुमार वासुदेव, जिसने अच्छे कुछ सीरियल्स पेश किए, और एक स्वदेश कुमार करके थे, और शमा जहदी थी, और हबीब तनवीर थे।
0: क्या बात, हाँ। वाह,
1: लेकिन हबीब और शमा जल्द ही कुछ महीनों बाद छोड़ गए, तो हम 4 रह गए, लेकिन ये हम 6 लोग थे पहली पलटन में, तो विच इज वंडरफुल, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, एंड सो इट वॉज फैबुलस, 8 magic years इन टेलीविजन। और वहां ऐसा कुछ तो था ही नहीं कि कैसा करना है क्या करना है, जो मर्जी करो, क्योंकि देर वॉज नो एग्जाम्पल यू नो कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। हमें सिखाने जरूर आए थे, एक बहुत मशहूर ये BBC से आए थे वॉरन ये करके, तो उन्होंने सिखाया अच्छी तरह, लेकिन ये हम बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहे
0: जी,
1: हाँ, और बहुत कुछ कर पाए टेलीविजन में, और मजा भी बहुत आया
0: वहां अपने।

0: बहुत अलग अलग तरह के काम किए, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, अबू अवार्ड जीता।
1: यस, एशियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन तेहरान में,
0: वो चाय की टपरी वाला।
1: हाँ जी, वो छोटी सी फिल्म थी 10-11 मिनट की, वो मेरी पहली फिल्म कह सकते हैं टेलीविजन में। और वो क्या थी कि एक सीधी सी एक छोटी चाय की टपरी हाईवे पे, दिल्ली आगरा हाईवे, हाँ, उसके एक किनारे, और वो एक सिर्फ एक औरत चलाती थी वो टपरी। चाय वही बनाए, कप वही धोए, वही पेश करें, पैसे वही गिने, झगड़ा वही करे ग्राहक के साथ वगैरह। और वो छोटी सी औरत, ये तगड़े वहां ट्रक वाले रुकते थे, वो उनसे अच्छा निपटती थी, और बिल्कुल वो मजे से उसका चल रहा था। और इट वॉज वंडरफुल, ये अनपढ़ औरत कैसे चला रही है अपना काम और धंधा। तो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल कि ये हमारे देश में एक अनपढ़ औरत भी कुछ कर दिखा सकती है। सो आई थॉट दैट वॉज अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो इट वॉज, इट डिडंट हैव एनी डायलॉग, नथिंग। तो एक 10 छोटी सी फिल्म थी, लेकिन उसको ये अवार्ड मिल गया और मैं दंग रह गई, अरे ये ऐसा भी होता है। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिर टेली फिल्म्स बनाई, मतलब ड्रामे ही कहो, टेली फिल्म तो क्या हुआ, ड्रामा ही हुआ ना एक तरह।
0: जी जी, पोस्टर बनाने वालों पर काम
1: पोस्टर,
0: किया।
1: हाँ, तो दैट वाज आल्सो, दैट वाज अ डॉक्यूमेंट्री। तब ये फिल्मों के पोस्टर्स ये बनाते थे, हाँ, एक पूरा
0: हैंड
1: पेंटेड, हाँ, उनका एक जत्था होता था, तबका होता था उनका, और वो बेचारे कहीं गैराज वैराज नुमा जगह उनको मिलती थी, वहां वो अपना ढेरा लगाते थे, ढेर लगा सगा पोस्टर्स पड़े हैं, और वो अपने कच्चे पहने, बनियान पहने, रंग सब लगा हुआ, ऐसे वो बनाने में मशगूल होते थे। और वहां हम पहुंच गए तो क्या बात करें वो लोग, और मतलब पूरी दिल्ली की स्काईलाइन इनके पोस्टर्स से भरी हुई है ना। तो उनसे फिर बातें की, तो मुझे इतना अच्छा याद है कि एक वो सीढ़ी पे चढ़ के एक पोस्टर में किसी की आंख, मेरे ख्याल से शर्मिला टैगोर की आंख बना रहा था, और वो ऐसे नीचे देख के बात कर रहा था, हम ऐसे ऊपर देख के उसको सवाल पूछते थे। तो उसने कहा कि भाई हमारी ये असली लोक कला है,
0: वाह,
1: इसको लोक कला कहो, क्योंकि और लोगों को पैसे नहीं देने पड़ते हमारी कला देखने को।
0: क्या बात,
1: तुम लोग जाते हो बड़े बड़े उसमें एग्जीबिशन हॉल में, यहाँ वहां पैसे देके टिकट खरीद के देखते हो, और हमारी कला तुम्हारे पास आती है, हाँ, और मुफ्त में वगैरह वगैरह। और एक को पूछा मैंने कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये तुम ऐसे भड़कीले पोस्टर बनाते हो, कोई बंदूक ताने हुए है, कोई नाच रही है, इसका घाघरा हवा में उड़ रहा है वगैरह वगैरह, तो ये बच्चे भी देखते हैं, उन पे असर होगा, बुरा असर, ऐसे नहीं तुम्हें लगता? तो उसने कहा अजी हम ये पोस्टर बनाते हैं, अब ये शत्रुघ्न ये देखो, और वहां सब ये थे, हाँ, पोस्टर, ये बंदूक ताने हुए है, लेकिन इससे गोली नहीं छूटेगी।
0: वाह,
1: और ये मुमताज नाच रही है गोल गिरकी मार के, उसका घाघरा और नहीं ऊपर जाएगा, बस यही रुकेगा, लेकिन अंदर तुम फिल्म देखोगे तो क्या धुआंधार ये गोलियां चलेंगी, बारिश गोलियों की, और तूफान ये, और नाच एक से भद्दे एक तुम देखोगे, खुश हो जाओगे। और वो चलता है, वो नहीं, बच्चों की नीति बिगड़ जाती, हमारे पोस्टर देख के नीति उनकी बिगड़ती है वगैरह वगैरह, इतने चाव से वो बोला। मैंने कहा कान छुए मानती हूँ, और चलने दो, आपका काम बढ़िया हो रहा है, चलने दो। तो इट वॉज, अब ये पूरी दे आर नो मोर, पूरी गायब हो गई,
0: पूरी
1: कॉम गायब हो गई,
0: है ना। एम एफ हुसैन मिले थे,
1: हाँ हाँ, अरे सॉरी, अरे एम एफ हुसैन इस डॉक्यूमेंट्री में थे ना, थैंक यू, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है। क्या है, किसी ने बताया कि अरे एम एफ हुसैन स्टार्टेड हिज करियर एज अ पोस्टर पेंटर,
0: महाराष्ट्र में एक बड़ी परंपरा थी।
1: हो हो जी। तोबा तोबा, मैंने कहा अरे तब तो उनको पकड़ना ही है। और इत्तेफाकन मेरी एक दोस्त के, वो बहुत अच्छे करीबी थे, तो उनसे मिले, और वो बहुत ही, ही वाज अ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी जेनरस, वेरी काइंड हार्टेड मैन। तो बहुत खुशी से वो, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल पोस्टर पेंटर करके शुरुआत की, और बहुत बढ़िया बोले हो। उन्होंने कहा कि मुझे याद है मेरा पहला पोस्टर था जब दुर्गा खोटे का पाया की दासी, पायाची दासी करके मराठी फिल्म थी, वो पोस्टर मैंने बनाया। और क्या कहूँ, जब दुर्गा खोटे की होठों की लाइनें मैं खींच रहा था, तो जो मैं बेहोश था।

0: मतलब नशा जैसे चढ़ा। और कहता है हमको कितनी बिदागी मिलती थी, अठन्नी दिन की,
1: अरे अरे
0: अठन्नी, ये तो मेरे 50 रुपए से भी बदतर है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने उस दौर में एक बड़ा ही कठिन काम किया, और वो था एक डॉक्यूमेंट्री जो आपने पंकज मलिक पर बनाई।
0: हाँ,
1: ये ख्याल कैसे आया था और ये कठिन काम क्यों था? मैंने कठिन कठिनाई का जिक्र किया क्योंकि इसको
0: कठिन,
1: तोलो तो ये नाराज वाला जो
0: हाँ नहीं,
1: होगा।
0: वो कठिनाई आई और फिर उनको निपटते भी गए हम
1: जी,
0: बड़े चाव से। तो
1: ये
0: ये
1: आइडिया कहां से आया?
0: आइडिया ऐसे आया कि उस साल उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड डिक्लेयर हुआ था, पंकज दा को।
1: जी
0: हाँ, तो फिर मैंने कहा इन पर फिल्म बनाई जाए। तो फटाफट मैंने, मैं इस मामले में बहुत तेज थी, मैंने एकदम से वो बना के दिया हमारे स्टेशन डायरेक्टर को। वो तो बहुत खुशी से मांगे, हाँ हाँ वेरी गुड आइडिया, जाओ जाओ तुम कलकत्ता जाके ये फिल्म करो। फिर छोटा सा यूनिट बनाया, कैमरामैन ये वो, और कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता जाके दादा ना माने पंकज मलिक, नहीं नहीं नहीं नो फिल्म, वो ऐसे बड़ी आवाज थी उनकी बुलंद,
1: हाँ
0: कहते नो नो आई डोंट वांट एनी फिल्म। ऐसे नहीं नहीं दादा, ऐसे कैसे, वगैरह वगैरह खूब। फिर मैंने अपना इतना चार्म का जैसे ये लगाया दांव पे, मैंने कहा नहीं प्लीज, ये यू हैव टू डू इट, ये देश के लिए जरूरी है, ये फिल्मों के लिए जरूरी है, हमारे लिए जो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या बकवास किया, लेकिन आखिर में बेचारे मान गए और राजी हो गए। और मुझे इतना याद है, वो मुझे माय डियर सिस्टर
1: हाँ
0: करके
1: वो इसी तरह
0: पुकारते
1: बोला
0: थे।
1: करते थे और
0: हाँ
1: खरजदार आवाज में रुक
0: बिल्कुल,
1: रुक के बोलते
0: माय डियर सिस्टर करके, फिर हम भाग के जाते थे पंकजा के पास। तो एनीवे, और उन्होंने एक, मुझे इतना अच्छा याद है कि टेरेस पे हमने शूटिंग किया और उनका वो गाना दो नैना
1: मतवारे
0: मतवाले
1: तिहारे
0: गाना,
1: हम पर जुल्म
0: और
1: करे।
0: मैंने कहा अब यहाँ मेरा डायरेक्टर जाग गया। मैंने कहा दादा हम भाभी को खड़ा करेंगे, वो अनाज बिन रही है कुछ, चावल लेके थाली लेके, और आप गाना गाओ। तो ये, और हम पूछेंगे उस हिसाब से गाना गाओ कि कौन सा गाना वगैरह, फिर आप गाना शुरू करो। और दीदी पास सुन रही होंगी, तो उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा आइडिया, तो हमने शुरू किया। और फिर दादा उसमें रंग में आए और वो फिर भाभी जी को देख के दो नैना वगैरह वगैरह आंखें मटक के ये वो, और फिर भाभी जी भी देखे। हाँ, उन्होंने कहा
1: वाह
0: ऐसे
1: वाह,
0: क्या बताऊं मैं, सब हमारा पूरा यूनिट उछल गया। तो ये ऐसे ऐसे किया। और फिर मैंने कहा अच्छा दादा अब ये तो सब हुआ हंसी मजाक के, वो उन्होंने किससे सुनाया ये करे। फिर अब राय चंद बुराल जी का इंटरव्यू लेना बनता है,
1: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर।
0: समकालीन म्यूजिक डायरेक्टर। और रायचंद बुराल के बारे में कहते थे कि फिल्म म्यूजिक उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है,
1: ऑर्केस्ट्राइजेशन।
0: बहुत बड़ा उनका योगदान है। तो दादा ने कहा नहीं, हाँ मैंने कहा नहीं, वो आदमी ये वो जो भी, उनसे उनका था झगड़ा सालों से,
1: जी,
0: हमारी बातचीत नहीं है। मैंने कहा आप बेशक बात ना करो ना, बात हम करेंगे, आप क्यों बात करोगे उससे, लेकिन बोलेंगे तो जरूर उनको बोलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं फिर बहुत उनको सकती, ये एक इतिहास का हिस्सा है और ऐसे नहीं मना कर सकते हम, फिलहाल आपकी फिल्म पूरी नहीं लगेगी अगर उनको नहीं लिया। फिर आखिरकार मान गई। फिर बुराल साहब के पास गए, बुराल जी ऐसा गया, नहीं
1: अरे
0: पंकज से
1: बाप
0: उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहा अरे वो, फिर उनको वही इतिहास और ये,
1: रे
0: अब तो मुझे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी हो गई थी।
1: जैसे
0: मैंने
1: मनाया
0: कहा नहीं
1: जाता
0: नहीं बुराल साहब ऐसे कैसे कह सकते हैं फलाने का ये वो, फिर वो भी मान गए बहुत अच्छी तरह। और फिर इतना अच्छा अच्छा बोले पंकज दा के बारे में
1: है।
0: कि
1: वाह,
0: पूछो मत, बहुत तारीफ की।
1: एक और
0: और
1: शख्स को अपनाया आपने।
0: हेमंत कुमार, बिल्कुल, और हेमंत दा का भी यही, उनसे भी बात नहीं थी, ये पता नहीं दादा किस किस के साथ झगड़े थे, लेकिन हेमंत कुमार से भी बातचीत बंद थी। लेकिन हेमंत कुमार भी फिर राजी हो गए, उन्होंने भी गाना गाया और उन्होंने भी बड़ी तारीफ की, इस तरह हमारी फिल्म बन गई। लेकिन अफसोस की इस फिल्म की एक फ्रेम भी नहीं अभी बची है,
1: ओहो
0: एक आर्काइवल फिल्म देखो ना पंकज
1: जी,
0: मलिक जैसे। और जब उनको ये अवार्ड मिला ना, तब जो अवार्ड लेने गए तो उनका ही गाना हमने साउंड ट्रैक पे बजाया, आई बहार आई
1: वाह,
0: आई बहार।
1: डॉक्टर फिल्म का गाना,
0: जी
1: क्या बात है। 40s की फिल्म है शायद, 41 की फिल्म
0: जी
1: है,
0: जी
1: आई
0: जी
1: बहार। लेकिन मुझे लगता है यहाँ दो नए नाम मतवारे तिहारे ये गाना सुनते हैं।
0: अरे है आपके पास,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल।
0: बात है।
2: तिहारे हम पर जुलम करें, हम पर दो ना।

नस नस में उठाए पी तन तन के चलाए पी नस नस में

भौती बनू पुष्पा मन की बिना के बज उठते हैं जोर जोर से तार मन की बिना के बज उठते

0: में सब कुछ भूल गए। पास आई तो ऐसे भूल गए, पल छिन में सब कुछ भूल गए। खुशियों के सोते उबल पड़े, हर रंग में रंग भरे। दो नैना मतवाले दीवाने, नंबर जुलम करे, नंबर जुलम करे।
1: अब साज की तरफ आते हैं। आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और मुझे लगता है आप अपने आप ही बताएं इस फिल्म के बारे में। कोई भी एक स्टेटमेंट देना गलत हो जाएगा।
2: मुझे अगर कोई फिल्म बनाते वक्त मजा नहीं आया हो तो दैट इज साज।
1: ऐसा क्यों?
2: पता नहीं, कुछ बात ही नहीं बनी। जहाँ इसके पहले हर फिल्म में एक कुछ जोश होता था, चाहे पपिया हो, चाहे दिशा हो, कथा हो, कुछ भी। लेकिन इस बार ऐसे नहीं लगा। एक वो जो यूनिट का एक अपनापन होता है वो नहीं था किसी के भी बीच। एक को खोया खोया सा कुछ लगा। लोग बहुत गुस्सा हुए मुझ पर, बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि दे वर कन्विंस दैट आई हैड स्क्रीन्ड द स्टोरीज ऑफ लता एंड आशा,
1: व्हिच इज नॉट ट्रू,
2: व्हिच इज नॉट एट ऑल ट्रू। आशा और लता दोनों बहनें दूसरे को बेहद चाहती है, बेहद प्यार करती है, लेकिन जब प्रतिस्पर्धी राइवल्स करके एक दूसरे के सामने खड़ी होती है तो उनका रवैया क्या होता होगा, है ना। तो ये हमेशा मेरे ध्यान में ये था। तो उसको लेके फिर वो ये बात बनी। और शबाना हैड कम टू मी कि कुछ वुमन बेस्ड फिल्म करो, प्लस चैनल को चाहिए कि तुम फिल्म डायरेक्ट करो वगैरह वगैरह। तो दिस केम अप एंड वी सिलेक्टेड दिस टू डू अ फिल्म ऑन आशा भोसले, बट अ फिक्टिशियस फिल्म, टेकिंग द इंस्पिरेशन ऑफ आशा स्टोरी
1: जी।
2: हाँ, तो ना उसमें कोई उनका जरा भी, लाइक इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म द मदर डाइज ऑफ द सिस्टर्स। हालांकि माई मंगेशकर वॉज टोटली देयर टू सी द यू नो सक्सेस ऑफ बोथ हर डॉटर्स राइट टिल द एंड, एंड शी डाइड एट अ वेरी राइप एज। देन इन माई फिल्म the love story of both the sisters have the same connection with the music director, which is again not true for Asha and Lata as far as I know, and so on and so forth. There are so many differences. In fact, in the film, the older sister herself, Aruna Irani, dies, you know, in the film. So again, and Lata ji was with us for a long, long time. So there was nothing, really nothing. It was not at all biographical film. नहीं थी।
1: हाँ,
2: ये जरूर था कि दोनों प्लेबैक सिंगर्स, दोनों बहनें वगैरह वगैरह, और दो किस्से जो एक्चुअल थे वो मैंने जरूर इस्तेमाल किए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग नथिंग नथिंग इज फ्रॉम देयर लाइव्स। बट आई टेक दिस एंड टोल दिस एंड टिल आई वाज ब्लू इन द फेस। पर लोग मानने को तैयार ही नहीं है। दे आर कन्विंस कि नहीं, ये तुमने ओके बाबा बनाई तो बनाई।
1: पर अब राखी साहब को कैसे राजी किया?
2: वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, जट से मान गए, बहुत मान गए। ही गेव गुड म्यूजिक, बट आई हैड फोर म्यूजिक डायरेक्टर्स।
1: जी, पहली बार ऐसा हुआ?
2: या क्योंकि ये फिल्म ही प्लेबैक सिंगर्स की थी, तो मैंने कहा लाजमी है कि अलग अलग भाई है वो ना म्यूजिक डायरेक्टर्स। एक ही का कितना भी चाहे वो वैरायटी लाने की कोशिश करे, इट विल मेक अ डिफरेंस इफ यू हैव फोर डिफरेंट पीपल। सो वी हैड राजकमल, वी हैड यशवंत देव, जाकिर हिमसेल्फ एंड भूपेन हजारिका।
1: जी,
2: फोर पीपल। एंड अगेन द सैड स्टोरी ऑफ साज वॉज दैट बाय द टाइम इट एक्चुअली प्लस चैनल had started this very exciting idea that they got together eight so-called good film directors, parallel cinema directors, not the commercial usual people. हाँ, उनसे एक-एक फिल्म बनवाई, ऐसे उनका इरादा था और उस हिसाब से किया। But I was throughout busy and I was only free at the end of this chain. And unfortunately, I was at the end. तब तक बासु चटर्जी हुए, अरुणा राजे हुई, सुधीर मिश्रा हुए, और भी ऐसे सात आठ लोग हुए, एंड एवरी फिल्म फ्लॉप्ड। एक भी फिल्म दो तीन दिन से ऊपर नहीं, दे ऑल फ्लॉप्ड आई थिंक। एंड विद द रिजल्ट दैट थिएटर्स टुक आउट प्रोक्लेमेशन सेइंग दैट प्लस चैनल विल नॉट गेट एनी थिएटर टू शो एनी फिल्म बिकॉज दे हैव नॉट पेड देयर ड्यूज। सो साज डिडंट हैव अ थिएटर,
1: अरे
2: टेलीविजन पे दिखाई।
1: जी जी जी
2: तो ऐसा ऐसा हुआ सो बैड लक ऑल द वे सो इट्स नॉट बीन जो एक हैप्पी ये होता है ना एक्सपीरियंस तो अनफॉर्चुनेटली साज वाज नॉट अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर मी
1: जी थोड़ा सा पीछे चलते हैं यहाँ कुछ चीजें जो है उनका जिक्र मैं जरूरी तौर पर करना चाहता हूँ एक तो ये लाल अडवाणी की प्रेरणा जो तथ्य आया लेकिन इस फिल्म के लिए मूल रूप से जिन लोगों का आपने चुनाव किया था मतलब यहाँ संजीव कुमार या फिर वो अमोल पालेकर वाला क्या किस्सा है वो सब मैं जानना चाहता
2: हूँ अभी वो क्या है मैंने कहा ना कि बहुत लंबा किस्सा है
1: जी तो थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ते हैं
2: अच्छा तो जब ये फिल्म लिखी मैंने पटक था तो प्रोड्यूसर तो चाहिए ही फिर मैंने कहा प्रोड्यूसर से पहले एक्टर्स तय करते हैं और एक्टर सोचूं तो अमोल मेरा अच्छा दोस्त था मेरे घर दिल्ली में मतलब रह भी चुका था आके मैंने अमोल का टेलीविजन में इंटरव्यू करवाया था तब वो बिल्कुल ही उभरता सितारा था मतलब उभर गया था हाँ, तो मैंने कहा अमोल तो है ही अपना दोस्त है और वो बढ़िया ये रोल करेगा फिर मैंने फोन किया अमोल को कि अमोल ऐसा ऐसा है तब अमोल ने कहा अभी देखो सही मैं तो बहुत बिजी हूँ तुम समझ सकती हो मैंने कहा हाँ वो तो जाहिर है लेकिन वो कहा कि शाम को आज ही मुझे अवार्ड मिलने वाला है फिल्म मिरर करके एक पत्रिका थी तो उनका मुझे अवार्ड मिलने वाला है पार्टी है मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे भी इस पार्टी में बुलाया है तो वहां ले आओ स्क्रिप्ट मैंने कहा ठीक है मन में कहा कि पार्टी में स्क्रिप्ट देना लेकिन खैर कह रहे हैं तो क्यों नहीं तो आई वेंट विद द स्क्रिप्ट और पूरी शाम फिर मुझे ये एक बहुत मजे का ये रहा कि मैं अमोल को स्क्रिप्ट देने जाऊं और वो कुछ उसी वक्त अरे हाँ हाँ आया आया करके किसी और को दूर देख के वो इशारा करके एकदम से निकल जाता था ऐसे 5-6 दफे हुआ और मेरे साथ तब ऐसे मूर्ति भी थे वो हम साथ साथ घूम रहे थे पार्टी तो फिर मूर्ति साहब ने मुझे कहा कि सही मुझे लगता है वो तुम्हें टाल रहा है और तब मैं एकदम ऐसे बुत जैसे खड़ी रही और मैंने कहा हाँ ये तो है ही और मैं इतनी बेवकूफ कि मुझे ये पता ही नहीं चला कि ये मुझे टाल रहा है या मुझे ये कर रहा है और क्योंकि ये कैसे मुमकिन है मेरा इतना अच्छा दोस्त है मेरे यहाँ रह के गया है ये वगैरह वगैरह ये हो ही नहीं सकता लेकिन हुआ तो फिर मैंने अमोल का ये छोड़ दिया और तब तक अलकनंदा समर्थ करके एक बहुत बढ़िया मेरी एक दोस्त बन गई अलकनंदा वाज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस जो सत्यदेव दुबे के साथ बहुत काम कर चुकी थी अलकाजी साहब की वो नंबर वन हीरोइन थी और अलकनंदा ने बहुत ही अच्छे अच्छे रोल्स किए थे वो लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में सीखी थी पढ़ी थी तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी और उसकी मौसेरी या कोई बहन थी तनुजा ये तुम इत्तेफाक जरूर कह सकते हो क्योंकि जब मैंने लिखा ना पटकथा जब लिखी तब मेरे कैरेक्टर्स आते हैं सामने है?

0: हवा में नहीं लिखा जाता लेकिन कोई ठोस नजर के सामने होता है। वैसे संजीव कुमार और तनुजा ये मेरे सामने थे दोनों, और वो बोलते जाते और वो संवाद मिलते तो तनुजा, तो मैंने कहा ये तो कमाल है तनुजा, तुम कह कह रहे हो, कहते हाँ मेरी बहन है लवली पर्सन, जरूर मिलो उसको वगैरह वगैरह। तो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तनुजा के साथ मैं मिली और तनु मुझे संजीव कुमार के पास ले गई। संजीव कुमार का बिल्कुल ही मन नहीं था सुनने को, लेकिन तनुजा ने किसी तरह उनको चुप करवा के सुनवा ही दिया, और फिर वो उनको बहुत पसंद आई कहानी।
1: लेकिन वो शेव बना रहे थे।
0: अच्छा, तो जब हम पहुंचे तो बिल्कुल ही ऐसे जाहिर हो रहा था कि उनको जरा भी खुशी नहीं हुई है, और तनुजा ने बहुत जबरदस्ती से उनको ये पकड़ा है। तो खैर उन्होंने कहा कि देखो अपॉइंटमेंट है और मैं सिर्फ आपको 20 मिनट दे सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें। और फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं दाढ़ी करते करते सुनूं तो आपको एतराज तो नहीं। अब फिर वही बात, अब मैं कैसे कहूं कि हाँ हाँ मुझे इतराज है, नहीं नहीं कोई नहीं, आप दाढ़ी बनाते जाइए मैं पढ़ते। तो खैर मैं पढ़ने लगी और वो अपना साबुन लगा रहे हैं सुन रहे, और धीरे धीरे क्या मैं अच्छा पढ़ती हूँ यूनुस, इसमें कोई मॉडेस्टी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचपन से ही आपको बताया था नाना के साथ माँ के साथ मैं पढ़ती रही, फिर आकाशवाणी पुणे की एक सीख थी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सीख थी, तो मैं अच्छा पढ़ती थी बहरहाल। तो वो मैं पढ़ने लगी और धीरे धीरे उनका दाढ़ी का ब्रश का हाथ रुकता गया, धीरे धीरे धीरे नीचे आ गया हाथ, और अब बॉडी लैंग्वेज तो अपन लोग इस माध्यम में है तो समझ ही लेते। मैंने मन में कहा कि अच्छा I've caught the fish now। तो फिर सुनते सुनते सुनते फिर वो आगे झुक के सुनने लगे, एवरी साइन की जो जिससे जाहिर हो रहा था कि वो बिल्कुल उसमें आए। तो और 20 मिनट हुए और मैं रुक गई, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ पढ़िए। मैंने कहा नहीं 20 मिनट तो हो गए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो अब खत्म करते। मैंने कहा नहीं अब मुझे कहीं जाना है, मुझे भी एक अपॉइंटमेंट है, और तनुजा मुझे आंखें फाड़ के देखे कि ये पागल तो नहीं होगी, इतना अच्छा मौका मिला और ये क्या कह रही है कि मेरा अपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन मन में मैं कुछ नाराज सी हो गई थी उनके बर्ताव से, और ये भी मुझे समझ में आया था कि उनको अच्छा लग रहा है जो भी कुछ सुना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट छोड़ के जाओगी क्या। मैंने कहा जरूर। तो स्क्रिप्ट फिर छोड़ के गए, दो दिन बाद तनु का फोन आया कि ही हैज लव्ड द स्क्रिप्ट और वो जरूर चाहते हैं करना, और फिर मिलते हैं। फिर हम मिल गए और उसके बाद फिर इतने दरवाजे खटखटाए, बी आर चोपड़ा और राजश्री प्रोडक्शंस और जीपी सिप्पी वगैरह वगैरह तक के जो जो, लेकिन कहीं बात कुछ नहीं बनी। फिर बाशु भट्टाचार्य से मुलाकात हुई और बाशु ने कहा कि मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, और तब फिर प्रोड्यूसर मिल गया। तो फिर मैं इनके पास जब गई संजीव कुमार को मिलने, उन्होंने कहा था कि हाँ जब तुम्हें प्रोड्यूसर मिले तो मैं अपना टाइम निकाल के जैसा भी हो कुछ भी मेरा चल रहा हो काम मैं तुम्हें डेट्स दे दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। लेकिन एकदम से उन्होंने कहा कि नहीं अब मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और इसकी वजह ये थी कि बाशु भट्टाचार्य के साथ पहला उनका जो था अनुभव, उन्होंने फिल्म जो बनाई थी वहां उनको बहुत बुरा ये उनका ये रहा एक्सपीरियंस। तो उन्होंने जब सुना कि बाशु इसका प्रोड्यूसर है तो वो हट गए, और जैसे वो हट गए तो किसी ने मुझे बताया कि नसीर को क्यों नहीं तुम पूछती हो। तो नसीर तो स्कूल ऑफ ड्रामा के थे, तो नसीर से जब मिले, नसीर ने बहुत खुशी खुशी स्क्रिप्ट पढ़ा, ही लव द स्क्रिप्ट एंड देन शबाना'स नेम, बिकॉज तनु एंड नसीर वुड नॉट मेक अ गुड कपल यू नो। तो फिर शबाना को अप्रोच किया और शबाना वॉज थ्रिल्ड टू बेस्ट, और फिर शबाना और नसीर तय।
1: क्या बात है, शबाना और नसीर तय हो गए। नसीर और शबाना का जब जिक्र हुआ तो मेरे जहन में एक बात ये आती है कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनके साथ आपने दोनों फिल्में की हैं, चाहे नसीर हो, शबाना हो, दीप्ती हो और फारूक शेख। मेरे ख्याल से ये चार लोग तो मुख्य रूप से हैं। आपके डायरेक्शन की अम्ब्रेला के नीचे ये कलाकार दो दो बार आते हैं, जाहिर है कि उनसे खास आत्मीय रिश्ता आपका नजर आता है। तो इन चारों से जुड़ी कुछ कुछ बातें हम छोटी छोटी करते हुए आगे चलते हैं। मुझे यहाँ खासतौर पर जो मैं नसीर का जिक्र कर रहा हूँ,
0: एक और भी कलाकार रह गया इसमें, ओमपुरी।
1: ओमपुरी जी जी बिल्कुल, तो ये पांच हो गए। नसीर का जिक्र क्यों, क्योंकि एक बहुत बड़ी मजेदार घटना है जब उन्होंने अपनी बायोग्राफी मराठी में अनुवादित करने के लिए आपको अप्रोच किया तो वो ड्रामा के डायलॉग में बात हुई थी।
0: ड्रामा के नहीं, वो नॉवेल,
1: नॉवेल के डायलॉग में बात हुई थी,
0: और चार्ल्स डिकेंस जैसा नॉवेलिस्ट। हाँ, और नसीर तो

0: नसीर की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, वो एक महान कलाकार तो है ही, लेकिन वो इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विच इज सो रेयर इन आवर इंडस्ट्री. अनफॉर्चुनेटली कोई ज्यादा ये अच्छे मतलब क्लासिक्स पढ़ा हो या कुछ जानकारी जिन्हें हो लिटरेचर के बारे में, ऐसे कम ही नजर आते हैं लोग. लेकिन नसीर ऐसा था जिसकी बहुत ही जानकारी फैंटास्टिक थी. और इसका श्रेय मैं नसीर को नहीं है जो मुझे पूछा ट्रांसलेशन के लिए, बल्कि रत्ना को है. नसीर की बीवी रत्ना ने नसीर को बताया कि सई को क्यों नहीं पूछते हो, सई विल डू अ वेरी गुड जॉब. एक तो शी विल अंडरस्टैंड तुमने क्या लिखा है, और तुम्हारे बिल्कुल जो बारीकियां और जो उसमें से जो सटल चीजें हैं वो समझ पाएगी. तो सई को पूछ लो. नसीर को अच्छा लगा सुझाव, और फिर उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं कब आऊं, तुम कब फारिग हो, और मुझे कुछ बात करनी है. क्या बात करनी है नहीं बताया, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे. मैंने कहा नसीब को मुझसे क्या बात करनी है, मैंने कहा कभी भी आओ फलाना, वो तय हो गया. तो फिर वो आ गए, नसीर आ गए, और उन्होंने कहा ऐसी मेरी आत्म कहानी है और मैं चाहता हूं कि इसका मराठी तुम करो. तो मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दो और मैं तुम्हें बताती हूँ. हाँ, तो फिर कहते हैं मिसाल के तौर पर मैं एक चैप्टर लेके आया हूँ, और बदमाश इतना नसीर की वो
1: यही
0: चैप्टर
1: बात.
0: स्पर्श के बारे में उन्होंने जो लिखा था वो चैप्टर नेचुरली वो ले आया जिसमें मेरी तारीफ वगैरह थी. तो उसका ये एकदम जो चाहते थे वो उसका हो गया इफेक्ट. और मैंने सोचा कि हाँ ये तो करना ही है, दिस इज रियली अ मेजर कॉम्प्लीमेंट. मोटी किताब थी हाँ,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल.
0: थोड़ा सा मैं डर गई थी क्योंकि
1: उसका
0: मैंने
1: नाम
0: और
1: है
0: काम
1: एंड
0: भी,
1: देन वन डे.
0: एंड देन मंडे. लेकिन फिर मैंने उनको एक मैसेज भेजा
1: जी
0: हाँ,
1: जी
0: और मैसेज था कि वो डेविड कॉपरफील्ड में कैरेक्टर है, गाड़ी जो चलाता है हाँ, उसका नाम है बार्किस.
1: बारकिस.
0: बार्किस और एक मुटल्लो औरत मेड उस घर में काम करने वाली, खूब मोटी, और वो सदियों से दोनों वो हैं, और वो दोनों का कुछ इश्क तो नहीं कह सकते लेकिन एक दूसरे
1: कनेक्शन
0: को
1: है.
0: चाहते हैं दूरी से थोड़ा सा. और पेगटी बिचारी चाहती है कि ये कभी ना कभी तो पूछे मुझे शादी के लिए. तो लेकिन बार्किस बड़ा घुन्ना आदमी, वो कुछ बात बात नहीं करता,
1: चिकनी
0: चिकनी
1: चुपड़ी.
0: चुपड़ी है. लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है कि वो सिर्फ इतना ही कहता है कि बार्किस इज विलिंग,
1: वाओ.
0: मतलब बार्किस राजी है. राजी किस लिए, शादी के लिए. और तब पेगटी जो खुश हो जाती है, इतनी खुशी से वो फूली नहीं समाती. एनीवे, तो मैंने सिर्फ नसीर को ये एक सेंटेंस भेजा, बार्किस इज विलिंग.
1: वाओ.
0: और मुझे मालूम था कि ये तो डेफिनेटली उसको मालूम है 100% कि ये बार्किस क्या बला है क्या है हाँ. तो फिर फट से नसीर का जवाब आया, पेगटी इज डिलाइटेड.
1: क्या बात. इसको कहते हैं नहले पे दहला.
0: नहले पे जाना, बिल्कुल बिल्कुल. तो
1: जी
0: फिर काम शुरू हुआ एंड ही वाज थ्रिल्ड विद द ट्रांसलेशन एंड इट वन एन अवार्ड साहित्य
1: यस
0: अकादमी का
1: बिल्कुल.
0: हाँ.
1: और नसीर ने काफी तैयारी की थी स्पर्श के लिए.
0: अरे बाबा, काफी नहीं, कुछ जरूरत से ज्यादा कहो.
1: जी
0: उसका किस्सा मुझे सुनाने दो
1: जी
0: कि शूटिंग जाने से पहले नसीर को ये तो पता चला कि ये मेरी जो कहानी है ये इसका इंस्पिरेशन अजय मित्तल है हाँ, उनसे मुझे ये इंस्पिरेशन हुआ उनका पूरा काम देख के. तो उन्होंने कहा नसीर ने कि सही मैं चाहता हूँ कि मेरे रोल के लिए बहुत मदद होगी कि एक तुम लोग आओगे उसके पहले मैं एक 8-10 दिन जाके थोड़ा मित्तल साहब के इर्द गिर्द रहूंगा, उनको देखता जाऊंगा और परेशान नहीं करूंगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनका मैं देखना चाहता हूँ रवैया और ये वो वगैरह वगैरह. तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ उनसे, ऑब्वियसली आई कांट से कि हाँ जाओ, आई हैव टू आस्क हिम. तो मैंने फिर मित्तल साहब से पूछा और मित्तल साहब वॉज वेरी फ्लैटर्ड नेचुरली के एक इतना अच्छा इंपॉर्टेंट स्टार अपने को स्टडी करना चाहता है. उन्होंने कहा हाँ अरे जरूर, ये भी पूछने की बात है वगैरह वगैरह. तो फिर नसीर साहब पहुंचे और उनका हमारे पहले ही पहुंची, फिर हम लोग सब यूनिट ये वो कैमरामैन फलाने का सब हम लोग शूटिंग के पहले 5-6 दिन पहुंच गए. और जैसे ही हम ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन में पहुंचे तो गेट के पास ही मित्तल साहब भागे भागे भागे आए, सही जी प्लीज सुनिए सुनिए. मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ, मैं बहुत परेशान हूँ. मैंने कहा परेशान है क्या हुआ. उन्होंने कहा कि प्लीज अपने हीरो को जरा हटा दो, अब ऐसी नौबत आई है वो इतना मेरे पीछे पीछे पीछे, मैं क्लास जाऊं तो नसीर पीछे है, मैं प्रार्थना ले लूं बच्चों की नसीर साथ में खड़े हैं, मैं बच्चों का खेल देखूं तो नसीर मेरे साथ हैं, खाने पे जाऊं तो नसीर मेरे टेबल पे बैठे हैं। इससे अब ऐसा वक्त आ गया कि मैं बाथरूम भी नहीं जा सकता। मैं बहुत डर गया हूँ, प्लीज आप अपने हीरो को जरा सा थाम लीजिए। फिर मैंने नसीर को कहा कि नसीर अब बस भी हुआ, बहुत कर रहा है, ऐसे नहीं नहीं हो गया हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हट जा, डोंट डिस्टर्ब हिम नाउ। तो और फिर जो नसीर ने किया है मैं क्या उसकी तारीफ करूँ, वो तो पर्दे पे है, सबने देखा है, उनको अवार्ड भी मिला नसीर को, बेस्ट एक्टर अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला, और क्या कहना है, लेकिन बेहतरीन। और हाँ एक मजे की बात ये, जब नेशनल अवार्ड जाहिर हुआ तब नसीर बंगलोर में थे किसी और शूटिंग के लिए, और उस फिल्म में और कौन मौजूद थे, संजीव कुमार। जैसे ये सबने कहा अरे नसीर तुमको अवार्ड मिला, वाह वाह वाह वाह, तो संजीव कुमार ने वेरी स्वीटली सर अरे ये तो पार्टी बनती है और पार्टी मैं दे दूंगा, बड़ी जिंदा दिल थे। तो संजीव कुमार ने पार्टी बड़ी डिक्लेयर की, नसीर को अवार्ड मिला, देन ही सर की नसीर क्या आखिर क्या ये रोल किया क्या तुमने, ऐसी क्या तो नसीर ने फिर बताया कि ऐसा ऐसा अंदर, फिर वो चुप हो गए। अरे शायद ये रोल मैं करने वाला था, इसे मुझे भी शायद अवार्ड मिल ही जाता।
1: जिंदगी की नाटकीयता का कोई मुकाबला नहीं है,
0: बताइए जरा ठीक है ना, ये सब नाटकीय था। ओ नहीं, इसलिए स्पर्श जो है ना मेरे जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन के रह गई है कि मैं कह नहीं सकती हूँ। इट्स वंडरफुल।
1: तीन अवार्ड्स मिले थे
0: जी, एक पटकथा के लिए मेरी अपनी पटकथा, एक बेस्ट हिंदी फिल्म और एक बेस्ट नेशनल अवार्ड एक्टर का।
1: बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड बासु ले गए।
0: प्रोड्यूसर थे बाबा।
1: एक अमृता प्रीतम का कनेक्शन है,
0: हाँ
1: वो बताइए।
0: वो वहाँ बासु का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गजब का था, बल्कि मेन वजह ये है कि मैं जो इतनी फिदा हो गई इस कैरेक्टर पे बासु भट्टाचार्य पे, सच अ डिलाइट, उतना बोलते वक्त मतलब कहीं मेरे मन में अभी भी एक छोटी सी जगह अच्छी है बासु के लिए।
1: क्या बात है?
0: Yes. And he had a terrific sense of humor. पहले जब मैंने उनका भाषण सुना, वो तब एक थे फिल्म हिस्टोरियन जिसका नाम अब याद नहीं आ रहा है, लेकिन हिंदी फिल्म्स पर उन्होंने कुछ मोटी सी किताब लिखी और बासु के हाथ से लॉन्च हुई किताब, फिरोज रंगून वाला।
1: जी हाँ,
0: फिरोज रंगून वाला की किताब। तो बासु बात कर रहे थे और मैं I had gone to hear that for the launch, I was invited. तो बासु ने कहा कि लोग कहते हैं कि स्टार वैल्यू हो तो फिल्म चलेगी खूब, अच्छे स्टार है, कहता ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने फिल्म बनाई शर्मिला टैगोर और राजेश खन्ना, और दोनों उस वक्त अपने अपने फील्ड में चोटी पे थे। महिलाओं में शर्मिला के साथ में कोई नहीं था और इधर राजेश खन्ना तो टॉप था ही था, और दोनों को लेके कहता है मेरी फ्लॉप वैल्यू इतनी महान थी कि मैंने फ्लॉप करके दिखाई फिल्म। कि ये दोनों को लेकर भी, तो ये बहुत गलत है कि स्टार हो तो इसलिए बासु मुझे लगा कि ये बिल्कुल फैंटेस्टिक बंदा है, अपना खुद का मजाक उड़ा सकता है जो आदमी, मुझे बहुत पसंद है, और फिर हमारी दोस्ती बन गई। अमृता प्रीतम की उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, she was a very good friend of Basu's, और हमारे फिल्म को unfortunately कहो, क्योंकि वो सारे पैसे मैंने बासु को दिए, लेकिन मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त बकुल पटेल, उनकी मदद से, मेहरबानी से, और विजय मर्चेंट जैसे लोगों की मदद से हमें बहुत अच्छे अच्छे फंडिंग मिला। हाँ, और वो सब मैंने चेक बासु को दे दिया जो उन्होंने गृह प्रवेश में डाल दिया अपनी दूसरी फिल्म। एनीवे, लेकिन वो प्रोडक्शन के लिए हमें उन्होंने कहा कि अमृता प्रीतम करेंगी इसका हिसाब किताब ये सब, और हमारा जो मैनेजर था सुदेश त्याल, दोस्त ही था मेरा, सुदेश को कहो कि जैसा जैसा खत्म होगा, जब तुमको नया वो चाहिए होगा अमाउंट, तो अमृता जी को पहला हिसाब किताब देना, उनको बताना कि किस लिए चाहिए आगे का, और फिर उनसे ये ले लेना अगला। तो फिर वैसा ही हमने किया। फिर बासु कहता था कि देखो एक बढ़िया बेहतरीन कवियत्री को तुमने, तुम्हारी फिल्म के लिए बिचारी अकाउंटेंट बन गई। सेंस ऑफ ह्यूमर तो गजब का था ही बासु का।
1: यहाँ मुझे लगता है तो अनुभव का गाना सुन लेंगे।
0: हाँ हाँ, अरे वो तो गाना बहुत ही सुन, वो मुझे जान कहो मेरी
1: जान मुझे जान कहो,
0: क्या बात है कनू रॉय।
1: हाँ।
0: अरे वो तो इतना गाना सुंदर है
1: जी,
0: जरूर जरूर।
1: क्या बात,

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम में संपादन सहयोग नेहा शर्मा का, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: उजाले उनकी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: नूरा ने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई ऑटो कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

युवा साथी सुन रहे हैं युवाण। मैं अर्चना आपके के पसंदीदा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कारगिल विजय दिवस, तटीय क्षेत्रों की रक्षा में मैग्रो का महत्व, अवकाश के दिन भी रहे अलर्ट और अटल पेंशन योजना के बारे में। तो हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं कारगिल विजय दिवस से। जी हाँ दोस्तों, कारगिल विजय दिवस जो कि हर साल 26 जुलाई को यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। 26 जुलाई को 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत की याद में यह दिन मनाया जाता है। आज 2026 में देश इस गौरवशाली जीत की 27वीं वर्षगांठ मना रहा है। यह दिन ऑपरेशन विजय के तहत लद्दाख के कारगिल ट्रांस सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर चोटियों पर तिरंगा लहराने वाले भारतीय सेना के 527 शहीद जाबाजों के सर्वोच्च बलिदान और साहस को समर्पित है। देश भर में इस अवसर पर वीर शहीदों को याद करते हुए कई कार्यक्रम हैं आयोजित किए जा रहे हैं। आज के दिन विशेष स्थलों पर मुख्य कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभाएं हैं वो आयोजित की जा रही है। ट्रांस में मुख्य समारोह यहाँ लद्दाख के ट्रांस स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल पर 2 दिवसीय श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया, जहां पर सैन्य प्रमुखों और शहीद परिवारों ने वीर जवानों को नमन किया और नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर सेना के 3 अंगों के वरिष्ठ अधिकारियों ने अमर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। और कई जो राष्ट्रव्यापी भागीदारी के तहत देश की युवा शक्ति को जोड़ने के लिए माई भारत पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रव्यापी मैराथन, निबंध प्रतियोगिताएं और श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई है। बात करते हैं इस दिन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। तो सर्दियों के मौसम 1998-99 में पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों ने नियंत्रण रेखा यानी कि LOC को पार करके ट्रांस द्रास, बटालिक और मुस्कुह जैसी रणनीतिक चोटियों पर अवैध कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने बेहद कठिन परिस्थितियों और विषम मौसम में ऑपरेशन विजय शुरू किया। श्रोताओं, भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सफेद सागर के सहयोग से सेना ने एक एक करके सभी चोटियों को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया और 26 जुलाई 1999 को युद्ध के पूर्ण खात्मे की घोषणा की। इस युद्ध ने देश को कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र जिनका प्रसिद्ध नारा था ये दिल मान दे मोर, और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जैसे महानायक दिए जिनकी वीरता आज भी हम भारतीयों को प्रेरित करती है। और दुनिया का सबसे ऊंचाई पर लड़ा गया यह युद्ध है। जी हाँ दोस्तों, कारगिल युद्ध इतिहास के उन चुनिंदा युद्धों में से है जो 16,000 से 18,000 फीट की हार्ड कंपास देने वाली ऊंचाई पर लड़ा गया था। यहाँ का तापमान 0 से भी नीचे है वो चला जाता है और लगभग 7 दिनों का संघर्ष यह युद्ध है वो 7 दिनों तक यानी कि मई से जुलाई 1999 चला। और भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक तौर पर इस युद्ध के सफल समापन की घोषणा की और इस युद्ध में भारतीय सेना की बोफोर्स तोपों ने सबसे अहम भूमिका निभाई। ऊंचाई पर छिपे दुश्मनों पर नीचे से अचूक निशाना लगाने में इन तोपों की गोलाबारी ने पासा पलट दिया। और आज हम है वो इस जो कारगिल की जो ऊंची चोटियों और खराब मौसम में भी हमारे जो जवानों ने हौसले में आगे है वो हौसलों के आगे है वो कह सकते हैं कि उन्होंने यह स्थितियां है वो उनके आगे छोटी साबित हुई। और इस दिन है वो उन्होंने अपने अदम्य साहस से है वो एक सर्वोच्च सैन्य कह सकते हैं कि शक्ति का या अपने अदम्य साहस का है वो उन्होंने परिचय दिया। और इसमें हमारे

जो सैन्य रणनीतियां जो रही हमारे जो देश के सैनिकों ने, जो विशेषकर अगर हम बात करते हैं तो हर सैनिक ने अपनी जो भूमिका है वो भूमिका एक अदम्य साहस के तौर पर है वो बताई, और ऐसी जटिल परिस्थितियों में भी है वो देश के तिरंगे को है वो झुकने नहीं दिया।

0: प्यारा संगीत हम चर्चा करेंगे तटीय क्षेत्रों की रक्षा में मैग्रोव का महत्व। जी हाँ दोस्तों, मैग्रोव ऐसी वनस्पतियां पेड़ पौधे हैं जो समुद्र के खारे पानी, दलदली मिट्टी और कम ऑक्सीजन वाले तटीय इलाकों में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। इन्हें तटीय क्षेत्रों का रक्षक या प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि इनको सुरक्षा कवच क्यों कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, चक्रवात और सुनामी से सुरक्षा, यानी कि मैग्रोव के पेड़ों की जड़ें और तने बहुत ही घने और आपस में गुंथे हुए होते हैं। जब समुद्र में भयानक चक्रवात यानी कि साइक्लोन या तूफान या किसी भी प्रकार का स्टॉर्म सर्जेस या सुनामी उठती है, तो मैग्रोव के जंगल इन विनाशकारी लहरों की गति को और ऊर्जा को तो 60-90% तक कम करती है। इससे तटीय इलाकों में जान माल का नुकसान बहुत ही कम होता है और तटीय कटाव को रोकना, यानी कि समुद्र की लहरें लगातार तटों से टकराकर मिट्टी को बहा ले जाती है, जिसे तटीय कटाव कहते हैं। और मैग्रोव की जटिल और फैली हुई जड़ें तटीय मिट्टी को मजबूती से जकड़ कर रखती है। यह तेज लहरों और ज्वार भाटा के बावजूद मिट्टी को बहने नहीं देती है और समुद्र के बढ़ते जल स्तर से बचाव भी करती है, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और मैग्रोव वन लहरों के साथ बहकर आने वाली तलछट को अपनी जड़ों से रोक लेते हैं और समय के साथ यह मिट्टी जमा होकर तट की ऊंचाई बढ़ा देती है, जिससे कि समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में नहीं घुस पाता है। और सबसे बड़ी बात, यह खारे पानी के प्रवेश को रोकता है, यानी कि चक्रवात या तेज ज्वार के समय समुद्र का खारा पानी तटीय इलाकों के खेतों और पीने के पानी के स्रोतों में घुस जाता है, जिससे जमीन बंजर हो जाती है। और मैग्रोव वन एक प्राकृतिक दीवार की तरह काम करते हैं जो खारे पानी को खेतों और गांवों में घुसने से रोकते हैं। और बात करते हैं तो कार्बन को सोखना, यानी कि तटीय इलाकों की जो रक्षा के साथ साथ मैग्रोव वैश्विक पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं, जो सामान्य जंगलों की तुलना में 4-10 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकते हैं। इसे ब्लू कार्बन कहा जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करता है। और मैग्रोव की जड़ें मछलियों, केकड़ों और झींगों के लिए सुरक्षित नर्सरी का काम करती है और समुद्र जैव विविधता के कारण तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को आजीविका मिलती है, जिससे कि उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है और दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोव जंगल है। जब भी बंगाल की खाड़ी में चक्रवात या आते हैं तो सुंदरवन के मैग्रोव कोलकाता और आसपास के तटीय इलाकों को भारी तबाही से बचा लेते हैं। इसके अलावा गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार में भी मैंग्रोव तटीय रक्षा में जुटे हुए हैं। तो जो अगर हम तटीय क्षेत्रों की रक्षा और पर्यावरण संतुलन की बात करते हैं, तो उनमें जो मैग्रोव जो वनस्पति है, उस मैग्रोव वनस्पति है, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो मैग्रोव पौधों की जो अनोखी जो शारीरिक बनावट है, वो दलदली और खारे पानी में जिंदा रहने के लिए इन पौधों के पास एक अद्भुत प्राकृतिक तंत्र होते हैं, जो इन्हें तटीय रक्षा के इतना मजबूत बनाते हैं। और उल्टी जड़े या श्वसन जड़े, यानी कि मैग्रोव की मिट्टी में ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, इसलिए इन पौधों की कुछ जड़े जमीन के अंदर जाने के बजाय पानी और मिट्टी के ऊपर निकल आती है और खूंटी जैसे दिखने वाली इन जड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि हवा से सीधे ऑक्सीजन है वो सोखते हैं। और मैग्रोव के पौधे समुद्र के खारे पानी में जो नमक को है वो अलग करने की क्षमता भी रखते हैं। तो कुछ प्रजातियां है वो अपनी जड़ों से ही 90% नमक को छानकर बाहर कर देती हैं, जबकि कुछ प्रजातियां अतिरिक्त नमक को छानकर बाहर कर देती हैं और जो नमक को अपनी पुरानी पत्तियों में जमा भी कर देती है, जो बाद में टूट कर गिर जाती है। तो मैग्रोव के इसी महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जो कि मिस्टी योजना है उसके तहत है। इस योजना की शुरुआत विशेष रूप से भारत के समुद्र किनारों के जो मैग्रोव वनों को दोबारा उगाने और उनके विस्तार के लिए की गई है। इसके तहत मनरेगा और अन्य फंड्स की मदद से तटीय राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु के बड़े पैमाने पर मैंग्रोव के पौधे लगाए जा रहे हैं। तो इनके महत्व को देखते हुए ही अगर हम देखते हैं, सुनामी की बात करते हैं जो कि 2004 का एक ऐतिहासिक सबक है। साल 2004 में जब हिंद सागर में विनाशकारी सुनामी आई थी, तब तमिलनाडु के पिचावरम मैग्रोव जंगल के आसपास के गांवों में बहुत ही कम नुकसान हुआ था। वैज्ञानिकों के अध्ययन में यह सामने आया कि जिन तटीय इलाकों में मैग्रोव के घने जंगल थे, वहां सुनामी की विशाल लहरों की रफ्तार इतनी धीमी हो गई थी कि वे रिहायशी इलाकों को तबाह न कर पाए, और इसके विपरीत जब मैग्रोव काट दिए गए थे, वहां भारी तबाही हुई थी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

तेरी तेरी चिता में भी वैसे कुछ अपना भी जल जाएगा यार, गले जब लग जाएंगे।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बॉर्डर 2 से सोनू निगम की आवाज में ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम चर्चा कर रहे थे तटीय क्षेत्रों की रक्षा में मैग्रोव का महत्व। जी हाँ दोस्तों, हम मैग्रोव के जो पौधे हैं, जो समुद्र के है, वो कह सकते हैं कि समुद्र में पाए जाते हैं। और यह जो वनस्पति है, यह वनस्पति है, उसके बहुत से फायदे हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी। जैसे इनकी जो शारीरिक बनावट होती है, जो और इसके है वो इनके अंदर उल्टी जड़ें या श्वसन जड़ें होती हैं, जो जमीन के अंदर जाने के बजाय पानी और मिट्टी से ऊपर निकल आती है। और साथ ही साथ जो मैग्रोव के पौधे हैं, वो समुद्र के खारे पानी को है, वो नमक को अलग करने की क्षमता भी रखते हैं। और भी कई ऐसी जो विशेषताएं हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। और हम बात कर रहे थे भारत सरकार की विशेष पहल मिष्टी योजना के बारे में, जिसके अंतर्गत जो भारत के जो समुद्र तटों के किनारे हैं, वहाँ मैग्रोव वनों को दोबारा उगाने और इनकी विस्तार के लिए है वो इसकी शुरुआत की गई है। इसके तहत है वो जो फंड्स है, उसकी मदद से तटीय राज्यों में बड़े पैमाने पर मैग्रोव के पौधे लगाए जा रहे हैं। और हम बात करते हैं 2004 के जो ऐतिहासिक सबक थे, तो वहाँ पर जब 2004 में जब हिंद महासागर में जब विनाशकारी सुनामी आई थी, तब अभी हमने बात की कि तमिलनाडु है वो वहाँ के पिचावरम जो मैग्रोव जंगल के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ पर बहुत ही कम नुकसान हुआ था। तो श्रोताओं, जब वैज्ञानिकों के अध्ययन में यह सामने आया कि जिन तटीय इलाकों में मैग्रोव के जो घने जंगल थे, वहाँ सुनामी की जो विशाल लहरें थी, उनकी रफ्तार इतनी धीमी हो गई थी कि वहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं उनको वो तबाह नहीं कर पाई थी। और इसकी विपरीत जहाँ मैग्रोव के जो है वो वनस्पति को काटा गया था, वहाँ पर भारी तबाही हुई थी। तो हम इससे सीख ले सकते हैं और इसी से सबक लेकर है वो भारत सरकार ने मिष्टी जो योजना है उसकी शुरुआत की है। और अगर हम बात करते हैं पानी को साफ करने का, जो प्राकृतिक जो फिल्टर है वो मैग्रोव के वन है। जी हाँ दोस्तों, नदियाँ अपने साथ जो शहर और फैक्ट्रियों का जो प्रदूषित पानी और कचरा जो बहाकर समुद्र की तरफ लाती है, मैग्रोव वन उन्हें समुद्र में सीधे मिलने से रोकते हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो प्रदूषक तत्वों और अतिरिक्त जो पोषक तत्व हैं उनको सोख लेती है और तलछट को नीचे है वो बैठा देते हैं। इससे समुद्र का पानी है वो साफ ही रहता है और कोरल रीफ यानी मूंगी की चट्टानों की भी रक्षा होती है। तो इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद आज हम दुनिया भर में मैग्रोव वनों पर है वो खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, झींगा पालन शहरीकरण इसके है वो कारण वैश्विक संकट बढ़ रहा है। तो तटीय इलाकों में व्यावसायिक रूप से जो झींगा और मछली पालन के लिए बड़े पैमाने पर मैग्रोव जंगलों को साफ किया जा रहा है और समुद्र तट पर होटल, रिजॉर्ट्स, बंदरगाह, इन सबके निर्माण के कारण भी ये जो वन है वो सिकुड़ रहे हैं। इसके कारण है जो मैग्रोव जो पौधों की जो प्रजातियां हैं या मैग्रोव जो पौधे हैं वो कहीं ना कहीं है वो खत्म होते जा रहे हैं। और जब प्रकृति है वो हम देखते हैं कि जब हम प्रकृति के साथ या मानवीय गतिविधियां ऐसे इलाकों में बढ़ जाती हैं, हम प्रकृति के साथ जब छेड़छाड़ करते हैं, तो प्रकृति है वो उसका हमें है वो भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो हमने ऐतिहासिक सबक देते हैं, जैसे सुनामी 2004 की है, या ऐसे और भी कई बार है वो हम ऐसे कई तूफानों का है वो सामना करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमें प्रकृति के साथ उतनी ही छेड़छाड़ करनी चाहिए जितनी कि हम प्रकृति को है वापस है उसके रौद्र रूप को सहन कर सके। तो मैग्रोव के जो वन है उन तटीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए उनका बहुत ही महत्व है। तो हमारी जो गतिविधियाँ यानी मानवीय गतिविधियाँ इतनी होनी चाहिए कि मैग्रोव के जो वन है उनको न तबाह किया जाए, मैग्रोव के वनों को है वो और ज़्यादा इसका विस्तार किया जाए, जिससे कि जो समुद्री इलाकों में जो सुनामी या ऐसे जो तूफान आते हैं उससे उसके आसपास के जो रहने वाले जो गांव हैं या वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, वहां उनको है वो नुकसान का सामना न करना पड़े।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म बॉर्डर 2 से सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, अरिजीत सिंह और साथियों के साथ हमारे इस कारगिल विजय दिवस की, यानी कि शौर्य गाथा दिवस हम जैसे कह सकते हैं, उसको समर्पित ये प्यारा सा गीत। अब हम चर्चा करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अटल पेंशन योजना जो कि भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक अत्यंत लोकप्रिय और सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे दिहाड़ी मजदूर, चालक, घरेलू सहायक, छोटे दुकानदार आदि को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। और इस योजना के मुख्य लाभ की बात करते हैं तो गारंटी शुदा मासिक पेंशन, यानी कि 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने उनके द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार, यानी कि 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 की एक निश्चित पेंशन जीवन भर मिलती है। और यदि मूल खाता धारक की अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनकी जीवन साथी पति या पत्नी को बिना किसी कटौती के उतनी ही पेंशन राशि हर महीने मिलती रहती है। और खाता धारक और जीवन साथी दोनों की अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद 60 वर्ष की आयु तक जमा हुआ पूरा का पूरा जो पेंशन वेल्थ है वो उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी को सौंप दिया जाता है। इस योजना के लिए अगर हम पात्रता की बात करते हैं तो इसमें आवेदन करने वाले की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और बैंक खाता यानी कि आवेदक के पास किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक एक्टिव बचत खाता होना अनिवार्य है, क्योंकि अंशदान की राशि सीधे खाते से ही काटी जाती है। और टैक्स पेयर नियम यानी कि सरकारी नियमों के अनुसार जो नागरिक आयकर दाता है या रह चुके हैं इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। और अंशदान की बात करते हैं यानी कि प्रीमियम अमाउंट की बात करते हैं तो इस योजना में प्रीमियम की जो राशि है वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस उम्र में योजना से जुड़ रहे हैं, यानी कि 60 वर्ष के बाद कितनी पेंशन आप चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई 18 वर्ष का युवा इससे जुड़ता है और 5000 की मासिक पेंशन चाहता है तो उसे प्रति माह केवल 210 जमा करनी होगी। और वहीं अगर कोई 30 वर्ष की उम्र में इस योजना से जुड़ता है तो उसे उसी 5000 की पेंशन के लिए हर महीने 577 रुपए वो देने होंगे। तो डिपेंड करता है कि आप है वो आपकी उम्र क्या है और आप किस उम्र में है वो इस योजना से जुड़ रहे हैं। तो आपके पास प्रीमियम भुगतान के लिए मासिक, त्रैमासिक या 6 माही विकल्प है वो चुनने की आजादी होती है, जो आपके बैंक खाते से ऑटो डेबिट है वो हो जाता है। और इस योजना में किए जाने वाले निवेश पर नेशनल पेंशन सिस्टम की तरह ही आयकर अधिनियम की धारा 80CCD 1B के तहत अतिरिक्त टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है। और आवेदन की बात करते हैं तो इस योजना में आवेदन कैसे करें, तो बैंक डाकघर जाकर आप अपनी उस बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं जहां आपका बचत खाता है, वहां अटल पेंशन योजना फॉर्म भर के उसे आसानी से आप शुरू करवा सकते हैं। और ऑनलाइन आप अपने बैंक के लिए नेट बैंकिंग लॉगिन करके ऑनलाइन भी इस योजना के लिए तुरंत पंजीकरण है वो कर सकते हैं। तो यह जो योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की। और इस योजना का जो हम बात करते हैं वर्तमान में, तो इस योजना का विस्तार कर दिया गया है, यानी कि योजना का 2031 तक विस्तार किया गया है। तो हाल ही में सरकार ने इस योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है और इसके तहत सरकार योजना को चलाने और बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता है वो देती भी रहेगी। तो अप्रैल 2026 तक इस योजना से जुड़ने वाले कुल लोगों की संख्या लगभग 9 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र और महिलाओं की जो है बहुत बड़ी भागीदारी है। और वर्तमान में अधिकतम पेंशन सीमा 5000 प्रति माह है और पेंशन नियामक वर्तमान में इस सीमा को भविष्य में और बढ़ाने की मांग पर विचार कर रहे हैं। तो यह जो योजना है वो विशेषकर अभी हमने बात की थी कि उन लोगों के लिए है जो है वो ग्रामीण इलाके से है या गरीब है या जिनकी आर्थिक स्थिति है वो कमजोर है और छोटा मोटा कोई कार्य है वो करते हैं, उनके लिए है जो अपनी दैनिक बचत से है वो अपनी वृद्धावस्था में है वो पेंशन की शुरुआत करवा सकते हैं।
और अगर हम बात करते हैं कि अगर प्रीमियम देने में देरी या बंद हो जाए, तो यदि आपके बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण किसी महीने का प्रीमियम नहीं कट पाता है, तो है वो खाता तुरंत बंद नहीं होता है। देरी पर आपको है वो पेनल्टी, यानी कि हर जो 100 रुपए के मासिक योगदान पर केवल 1 प्रति माह का जुर्माना, यानी कि 1 रुपए है वो का प्रति माह का जुर्माना है वो लेट फीस आपसे ली जाती है। और खाता निष्क्रिय होना, यानी लगातार 6 महीने तक कोई भी योगदान नहीं दिया जाता है, तो खाता फ्रीज या सीज हो जाता है। 12 महीने बाद खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो 24 महीने तक पैसा ना देने पर खाता पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और आप बकाया राशि और मामूली जो जुर्माना देकर अपने खाते को कभी भी दोबारा एक्टिव करवा सकते हैं। तो इसकी जो प्रक्रिया है वो भी साधारण सी है, यानी कि आम जन इस प्रक्रिया से है वो साधारणतः जुड़ सकता है, कि उसको बैंकों में जाकर है वो बार बार नहीं जाना है, या कोई भी ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं करनी है बहुत ज़्यादा जिससे कि वो परेशान हो जाए। आप अपने ही जैसे बचत, जहाँ पे आपका बचत खाता है, या कोई भी पोस्ट ऑफिस में आपका भी कोई भी खाता है, बैंक में है, वहाँ जाकर एक साधारण से आवेदन से आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो यह जो योजना है, यह भारत सरकार की एक बेहतरीन योजनाओं में से एक है, जो कि एक साधारण व्यक्ति को, या जो जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, या जो दिहाड़ी वाले हैं या मजदूर हैं, उन लोगों को अपना जो भविष्य है वो सिक्योर करने का है वो मौका देती है। श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे अवकाश के दिन भी रहे अलग। जी हाँ दोस्तों, यह जो हमारा इशारा है वो बिल्कुल सही और सतर्कता से भरा हुआ है, कि जब हम अभी बात कर रहे थे अटल पेंशन योजना की, बैंक अकाउंट की, या किसी भी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना की, तो अवकाश के दिन भी अलर्ट रहना कई मायने में बेहद जरूरी हो जाता है। यानी कि डिजिटल बैंकिंग और ऑटो डेबिट का नियम, यानी कि संडे या छुट्टी के दिन भी करता है प्रेरणा। कई लोगों को लगता है कि रविवार या बैंक की छुट्टी के दिन है वो खाते से पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन अब डिजिटल बैंकिंग प्रणालियाँ जैसे साल के 365 दिन और 24 घंटे काम करती है। तो यदि आपकी अटल पेंशन योजना की किस्त कटने की तारीख किसी छुट्टी वाले दिन या रविवार को पड़ती है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके खाते से पैसा काट लेगा। इसलिए छुट्टी के दिन भी खाते में पर्याप्त बैलेंस रखना जरूरी है, ताकि ट्रांजेक्शन फेल ना हो और आपको पेनल्टी ना देनी पड़े। और इसके साथ हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर अपराधियों से भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। यानी कि छुट्टी के दिन आप ये ना सोचें कि आज एकदम छुट्टी है, तो छुट्टियों के दिन ज़्यादा एक्टिव होते हैं स्कैमर। साइबर अपराधी अक्सर शनिवार, रविवार या त्यौहार के दिनों को चुनते हैं, क्योंकि तो इन दिनों बैंक की शाखाएं बंद होती है और लोग थोड़े से लापरवाह मूड में भी होते हैं। तो फर्जी पेंशन अलर्ट से बचें, यानी कि आपको छुट्टी के दिन कोई ऐसा मैसेज या कॉल आ सकता है कि आपका अटल पेंशन खाता ब्लॉक हो गया है, इसे चालू करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें या ओटीपी बताएं। याद रखिए कि आपका बैंक कभी भी छुट्टी के दिन आपके फोन पर गोपनीयता जानकारी नहीं मांगता है, तो ऐसे किसी भी संदिग्ध मैसेज को लेकर हमेशा अलर्ट रहे। तो अवकाश के दिन में आपकी अलर्टनेस बहुत ही जरूरी है। और हमने है वो जो हमेशा जागरूक, संकित और सजग रहने की जो अपील है वो भी आज है वो सुनी, यानी कि आज 26 जुलाई 2026 को प्रसारित हुए मन की बात के 136वें एपिसोड में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देशवासियों से हमेशा जागरूक, संगठित और सजग रहने की अपील की है। चाहे देश की सुरक्षा का मामला हो, जैसे कि कारगिल के वीरों की सजगता, या हमारे व्यक्तिगत, वित्तीय और सामाजिक अधिकारों की रक्षा का मामला हो, नागरिक के तौर पर हर दिन अलर्ट रहना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अवकाश के दिन हमारा चाहे दफ्तर का काम बंद हो सकता है, लेकिन हमारी जो वित्तीय सुरक्षा और समझदारी है उसको कभी भी छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए हमें अवकाश के दिन में भी है वो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमने बात की छुट्टी के दिन भी हमारे बैंक अकाउंट से है वो ऑटो डेबिट का जो सिस्टम होता है उसमें है वो पैसा कटता है, पेनल्टी है वो भी लग सकती है। और अभी हमने साइबर फ्रॉड यानी कि स्कैमर्स की भी बात की है, क्योंकि साइबर अपराधी अक्सर जो हॉलीडेज वाले दिन होते हैं, यानी कि शनिवार, रविवार या लंबी छुट्टियां हैं जैसे दिवाली है, ईद है, नेशनल हॉलीडे है, उस दिन ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इन दिनों जो बैंक की शाखा है वो बंद रहती है और पीड़ित व्यक्ति तुरंत मदद के लिए बैंक नहीं भाग पाएगा। तो
जब बैंक बंद होते हैं तब ये लोग ज़्यादा हैक्टिव हो जाते हैं, और आपके जो फर्जी अकाउंट ब्लॉक मैसेज, यानी कि छुट्टियों के दिन अक्सर ऐसे मैसेज आते हैं कि आपका बिजली का बिल अपडेट नहीं है, आज रात आपका कनेक्शन कट जाएगा, आपका पेंशन का खाता ब्लॉक हो गया है, ऐसे कई मैसेज या लिंक आपको आ सकते हैं। लेकिन आपको ये सतर्कता रखनी है, अलर्टनेस रखनी है कि जो छुट्टी वाले दिन है वो हमें ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई OTP शेयर नहीं करना है, ना अपना पिन शेयर करना है, ना पासवर्ड देना है, ना किसी ऐसे अनजाने जो लिंक है उस पर हमें क्लिक करना है। तो ऐसे में जो छोटी छोटी अलर्टनेस है वही हमारे सुरक्षा का मंत्र है। यानी कि याद रखें कि कोई भी सरकारी विभाग, यानी कि एक सुरक्षा मंत्र है कि कोई भी सरकारी विभाग या बैंक छुट्टी के दिन आपसे फोन पर OTP, पिन, पासवर्ड नहीं मांगता है, ऐसे किसी भी झांसे में हमें नहीं आना है। तो ये जो अवकाश का दिन है, ये अवकाश का दिन भी हमारे अलर्टनेस का दिन होना चाहिए, क्योंकि इस दिन है वो जैसे हम कुरियर और पार्सल फ्रॉड भी देखते हैं आजकल, क्योंकि छुट्टियों के दिन अचानक मैसेज या कॉल आता है कि आपका एक जरूरी पार्सल आया है लेकिन एड्रेस गलत होने के कारण रुका हुआ है, इसे रीशेड्यूल करने के लिए 5 या 10 का भुगतान इस लिंक पर करें। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका खाता है वो क्लीन हो जाता है। तो हमें ये भी सतर्कता रखनी है। ट्रैवल और होटल बुकिंग फ्रॉड, क्योंकि जब हम लंबी छुट्टियां है उसके लिए जाते हैं, घूमने का प्लान बनाते हैं, तो फर्जी वेबसाइट होती है कहीं ऐसी, सोशल मीडिया पर बेहद सस्ती टूर और पैकेज भी होते हैं, होटल बुकिंग के नाम पर फ्लाइट टिकट के लुभावने ऑफर है वो आपको मिलते हैं, तो एडवांस पेमेंट लेते ही है वो ऐसे जो लोग हैं जो फर्जी जो वेबसाइट बनी होती है, ऐसे जो फर्जी जो कह सकते हैं फोन कॉल्स होते हैं, वहाँ एडवांस पेमेंट देने के बाद है वो व्यक्ति या वेबसाइट है वो गायब हो जाती है। तो इसीलिए हमें हर जो अवकाश के दिन में, छुट्टियों के दिन में या हॉलीडेज है उसमें हमारी अलर्टनेस ही हमारी है वो सुरक्षा कर सकती है। तो ऐसे कई हम है वो कह सकते हैं कि ऐसे उदाहरण देखते हैं, कई लोगों के साथ फ्रॉड होता है, तो उससे हमें सबक लेते हुए हमारी जो अलर्टनेस है वो रखना हमें बहुत ही जरूरी है।

अब आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युवा ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है। श्रोताओं आइए आपको आज प्रसारित होने वाले शेष वो मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस का।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम आपके लिए लेकर आएंगे आज अब बस कुछ ही देर में 6:15 पर। हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी, राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होंगे 6:30 से शाम 7 बजे तक। 7 बजे समय है ग्राम जगत कार्यक्रम का, जिसमें किसान भाई अपनी चौपाल में चर्चा करेंगे खेजड़ी जो हमारे थार का कल्प वृक्ष है, साथ ही साथ आज जो उत्सव का दिवस है कारगिल विजय दिवस, और साथ ही साथ सुनेंगे कुछ लोकगीतों को।

यात्रा। आठ बजकर 30 मिनट समय रहेगा फिल्म संगीत का। समाचारों के लिए आप ट्यून कीजिए हमारा आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र और साथ ही साथ हमारा केंद्र रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे News@9। फिल्म संगीत के नगमे हम आपके लिए पुनः लेकर आएंगे 9:15 पर। राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम हमारे केंद्र से आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज है रविवार, तो प्रस्तुत होगा रविवारीय संगीत सभा रात्रि 10 बजे। श्रोताओं, ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम।

बड़ी चतुराई से मंथरानी रानी कैकेयी के मन में कौशल्या तथा राम के प्रति ऐसे विष का बीज डाल दिया जिसके प्रभाव में सूर्यकुल के सुख समृद्धि हर्ष और उल्लास सबको एक बारगी सुखा डालने की क्षमता थी। सौत की ईर्ष्या की सैकड़ों उल्टी सीधी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कहती है, हे रानी, अपना मित्र या शत्रु तो पशु भी पहचान लेते हैं, परंतु तुम्हें तो अपने हित अहित की पहचान नहीं है। एक पखवाड़े से राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें इसकी सूचना आज मुझसे मिली है। हे स्वामिनी, अब तुम्हारी स्थिति वही होगी जो दूध में पड़ी मक्खी की होती है। यदि पुत्र सहित राजा की चाकरी करोगी तब तो यहां रह पाओगी, अन्यथा तुम्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। अपने अनिश्चित भविष्य की आशंका से रानी कैकेयी कांप जाती है। अब उन्हें ये भान होता है कि पिछले कई दिनों से उनकी दाहिनी आंख फड़कती रही है और रातों को बुरे बुरे सपने आते रहे हैं। वो मन में ठान लेती हैं कि मायके जाकर शेष जीवन बिता देंगी, किंतु जीते जी सौत की चाकरी नहीं करेंगी।

अभी आप सुन रहे थे गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरित मानस का। श्रोताओं आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

0: इन्हीं गीतों के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह आकाशवाणी के समय का गोल्डन सिटी चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, दिल्ली की द्वितीय और राजस्थान में प्रादेशिक समाचार।
1: मुफ्त बिजली योजना जो

0: करने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान सहित देश भर के प्रतिभागियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान कैच द रेन का जिक्र करते हुए इसमें लोगों की भागीदारी को सराहा। करगिल विजय दिवस पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वीर शहीदों को नमन किया गया और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा टर्मिनल से हरी झंडी दिखाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बहुत विशेष है। इसके माध्यम से हमारे देश के युवाओं को सीमावर्ती गांवों की संस्कृति और वहां की चुनौतियों तथा रहन सहन के बारे में जानने का मौका मिलता है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों में देश प्रेम का विशेष जज्बा देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री से संवाद किया और अपने अनुभव सुनाए। राजस्थान के जालौर से माय भारत वॉलंटियर सुनील कुमार ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
3: तो बड़ो आभार व्यक्त कर रहा है कि आपने हमारे जरा युवा ने सीमावर्ती गांव में जानो देखो नोताली चीजों महसूस करने का अवसर मिला। मैं राजस्थान के सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगी उपरेला गांव में गया था और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि एक विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाए और अपने भारत को गहराई से समझे। दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतिभागियों को भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकास की आकांक्षाओं से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराता है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के रणनीतिक महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर आज वीर सैनिकों का स्मरण किया और कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
4: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ।
2: प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि मॉनसून का समय जल संरक्षण के लिए सर्वोत्तम है। सरकार द्वारा विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कैच द रेन

0: इन अभियान का जिक्र किया और लोगों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के प्रयास को सराहनीय बताया।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। वहीं पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने हस्तकला को प्रोत्साहित कर बुनकरों को सम्मान देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: प्रदेश में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पाली में मन की बात कार्यक्रम सुना। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। राज्य के अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम को उत्साह पूर्वक सुना गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। करगिल विजय दिवस पर आज देश प्रदेश में वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सैनिकों को नमन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इधर राज्यपाल हरिभाव बागड़ी ने कहा कि करगिल विजय दिवस केवल सैन्य विजय का स्मरण नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस को नमन करने का पावन अवसर है। श्री बागड़ी करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर में क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर 16 वीर सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इन वीर जवानों की शहादत और निष्ठा पर हर भारतीय को गर्व है। इधर जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर अमर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में करगिल शौर्य वाटिका में निर्मित स्मारक स्थल पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल से रोडवेज की 144 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलाओं को हेलमेट भी वितरित किए। उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन कल्याण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार किया जा रहा है ताकि आमजन को सुविधा हो सके।
2: राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था लगा

0: लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, और यह अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और सांसद मंजू शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जालौर जिले के सांचौर में आज बस और ट्रक की टक्कर में बस में सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई और 12 यात्री घायल हो गए। घायलों को सांचौर के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भेजा गया। ये बस सांचौर से गुजरात जा रही थी। प्रदेश के कई जिलों में मॉनसून सक्रिय बना हुआ है। भीलवाड़ा में आज सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी रहा। जालौर में भी रुक रुक कर बरसात होती रही। बाड़मेर में आज बारिश का दौर जारी रहा। झुंझुनू जिले में दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। राज्य में कई स्थानों पर हो रही बारिश से जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने 28 जुलाई से एक बार फिर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान सहित देश भर के प्रतिभागियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान कैच द रेन का जिक्र करते हुए इसमें लोगों की भागीदारी को सराहा। करगिल विजय दिवस पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वीर शहीदों को नमन किया गया। और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा टर्मिनल से हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बंशी लाल। आज करगिल दिवस है। इस मौके पर जिले के पतासर गांव के करगिल शहीद भीकाराम मूड की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर करगिल के सभी शहीदों की शहादत को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता की शपथ ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। लगभग 79,000 रुपए की लागत से तैयार यह परियोजना राजस्थान की न केवल पहली रिफाइनरी है बल्कि देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। रिफाइनरी का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की इस धरती से भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस मौके पर श्री मोदी ने रिफाइनरी कंट्रोल रूम के कर्मचारियों से तकनीकी जानकारी ली और रिफाइनरी की महिला कर्मचारियों से बात करके उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। इस रिफाइनरी के उद्घाटन से अब क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास और निवेश के द्वार खुलेंगे। साथ ही रिफाइनरी से जुड़े डाउन स्ट्रीम उद्योग लगने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बीते दिनों जिले में गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना था। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए इस 5 दिवसीय विशेष अभियान में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच कर उन्हें परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को सर्वे के दौरान एनीमिक की 100% स्क्रीनिंग करवाने, HPV टीकाकरण 100% करने और जननी सुरक्षा और लाडो प्रोत्साहन योजना के बकाया मामलों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूलों में HPV टीकाकरण 100% करने को कहा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में एसीबी कार्यालय बालोतरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का स्थापना दिवस मनाया गया। आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर आमजन से अपील की गई कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी वैध कार्य के बदले रिश्वत मांगता है तो उसे रिश्वत नहीं दें और तुरंत इसकी एसीबी से शिकायत करें। शिकायत मिलने पर एसीबी द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को लेकर ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान करते हुए पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जलदाय, विद्युत तथा शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले दिनों राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की ओर से नगर विकास न्यास बालोतरा के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेरा के डिप्टी रजिस्ट्रार पुनीत कपूर ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रियल एस्टेट निवेश को मानकों के अनुरूप बढ़ावा देना, परियोजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना, विवादों का प्रभावी समाधान तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कराना था। जिले में देर से आए मानसून की बारिश ने राहत दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ की फसलों की बुआई की है। ग्रामीण इलाकों में तालाबों और टाकों में पानी की आवक बढ़ने से पेयजल की समस्या का भी समाधान हो रहा है। इसी के साथ बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर पेशे सिंझा भगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान समेत देश भर रा प्रतिभागियों साथ है बतल करी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण सारू चलाया जा रहा अभियान कैच द रेन रो जिक्र करता इन माए लोगों ने भागीदारी ने सराया। करगिल विजय दिवस माथे देश प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम री मार्फत वीर शहीदा ने नमन करीजियो और राजस्थान रोडवेज रा बेड़ा मा 144 नुए बसा भेड़ी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा हीरापुरा टर्मिनल हरी झंडी दिखाई। समाचार साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम घणो खास है। इन री मार्फत देशरा नौजवाना ने सरहदी गांवारी संस्कृति और वठारी चुनौतियां और रहन सहन रा बारा में जानन रो मौको मिले है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस री मार्फत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 रा प्रतिभागियों साथ बतल करता है प्रधानमंत्री कहो सरहदी गांव माए वठारा लोगा माए देश प्रेम रो खास जज्बो देखने मिले है। एक कार्यक्रम री मार्फत देश रा सगला राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशां री नुमाइंदगी कर रिया 432 नौजवाना साथे प्रधानमंत्री बतल करी और हमारा अनुभव सुनिया। राज्य रा जालोर माए भारत वॉलेंटियर सुनील कुमार आपरा अनुभव साझा करता प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दियो।
4: तो बड़ो आभार व्यक्त कर रहा है कि आपने हमारे जरा कई युवान है सीमावर्ती गांव में जान लो देखन लो नोताली चीजें महसूस करने का अवसर मिला। मैं राजस्थान के सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचाल में उपरेला गांव में गया था और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आई डी और फोन पे मैसेज आया कि एक विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहाँ पे जाए और अपने भारत को गहराई से समझे। दोनों जगह पे एक चीज समान थी वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहाँ के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं।
3: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतिभागियों ने भारत रा सरहदी हल्का रा सामाजिक आर्थिक दिखाव सांस्कृतिक विरासत और विकास री आस सीधा पिछाण करावे है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमाई गमारा रणनीतिक महत्व की गहरी समझ ने बढ़ावो देवे है। ध्यान जोग है कि ये कार्यक्रम सारू प्रतिभागियों रो चुनाव देश भर में ऑनलाइन क्विज होल्डरी मार्फत करीजो, जिनमें 3,32,000 नौजवाना हिस्सों लियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक मदद और दोस्त देशों रा मामला में बरोबर नवी ऊंचाइया छू रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहो कि भारत आपरा तकनीकी भूता ने बरोबर बधा रियो है। दुनिया रो भरोसो भारत रा हिफाजती उपकरण और तकनीक माथे बध रियो है। वना कहो कि लाडला दीतवार ने विक्रम वनरा कामयाब प्रक्षेपणों हर भारतीय रो मान बध्यो है। वो भारत रा निजू हल्का रो पहलो रॉकेट है। प्रधानमंत्री करगिल विजय दिवस माथे आज वीर सैनिका ने याद करिया और कहो कि वो दिन देशवासियों ने आपरा बहादुर सैनिका री असाधारण ताकत ने याद दिलावे है।
5: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ।
3: प्रधानमंत्री पानी बचावन रो जिक्रो करता कहो के मानसून रो बगत जल संरक्षण सानू सब ऊंचो को है। सरकार का न्यो खास अभियान ई चलाए जावे है, वरना कैच द रेन अभियान रो जिक्रो करियो और लोगारी इनमाय बढ़ चढ़ने हिस्सों लेवन री कोशिश ने श्रवण जोग बताया।
5: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
3: प्रधानमंत्री कहो के कुछ दिन पहला ग्लासगो में शुरू हुआ राष्ट्रमंडल खेला में भेड़ा खिलाड़ियों रो पूरो देश साहस बधारियो है। श्री मोदी गणेश उत्सव रे दौरान सगड़ाओं पीओपीओ बनी मूर्तियां री ठोड़ माटियों बनी गणेश मूर्ति री पूजा करन री अरज करी। प्रधानमंत्री कहो के देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनायो जायेगा। वो दिन देश रा बुनकरा रा हुनर और रचनात्मकता रा सम्मान रो प्रतीक है। वना हस्तकला ने बधावो दे बुनकरा ने सम्मान देवन री अरज करी। प्रधानमंत्री 15 अगस्त ने मनाया जाने वाला स्वतंत्र दिवस रा बारे में बात करी और कहो कि ओ दिन हर भारतीय सारू मान रो दिन है।
5: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
3: प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम में लेर उमा निजर आयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर सांगानेर में आदिवासी महिलाओं साथ मन की बात रा 136वीं कड़ी ने सुनिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाली माए मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। ई मौके न्यारा न्यारा जन नुमाइंदा और लोग मौजूद रिया। राज्य री दूजी ठोड़ा माथे मन की बात कार्यक्रम ने उमावरे साथे सुनी जिया। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। कारगिल विजय दिवस माथे आज देश प्रदेश शहीदा ने नमन करे। ई मौके 1999 रा करगिल युद्ध में देश री हिफाजत करता ठाव बलिदान देने वाला भारतीय सैनिका ने श्रद्धांजलि अर्पण करी जावे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीर सैनिका ने नमन करता सोशल मीडिया पोस्ट में कहो के सैनिका री अद्भुत ताकत, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बल री ठावी परंपरा री मिसाल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो के करगिल युद्ध भारतीय सेना रा इतिहास रो सोना मंडियो पाठ है। अठीने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो के कारगिल विजय दिवस फगत फौजी जीत री याद नहीं है, बल्कि देश री अस्मिता, अखंडता और संप्रभुता री हिफाजत सारू भारतीय सैनिका कानियों करीजा ठावा बलिदान और अदम्य साहस ने नमन करण रो पावन मौको है। श्री बागड़े कारगिल विजय दिवस रे मौके

0: माए क्रीड़ा भारती कानियो विया कार्यक्रम माए बोल रहा हा। कार्यक्रम माए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई जन नुमाइंदा मौजूद रिया। अठी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वीर सैनिका ने श्रद्धांजलि देवता कहो के आ वीर जवाना री शहादत और निष्ठा माथे हर भारतीय ने मान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज शिक्षा मंत्री रो कामकाज संभालियो। धर्मेंद्र प्रधान रे इस्तीफो देवन रे पछे काले वाने नुआ शिक्षा मंत्री बनाई जहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी नुवी जिम्मेदारी सौंपण सारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार प्रकट करियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुरा हीरापुरा बस टर्मिनल रोडवेज री 144 नुवी बसा ने हरी झंडी दिखा रवाना करिया। ई मौके मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सारू जाग जगाउन रो संदेश देवता सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलावां ने हेलमेटी बांटिया। वणा प्रदेशवासियों यातायात कानून री पालना करण और दुपहिया वाहन चलावती बगत जरूरी हेलमेट पहरण री अर्ज करी। मीडिया साथे बतल करता मुख्यमंत्री कहो के सरकार जन कल्याण जुड़िया हर हल्का माए तेजी काम कर रही है। श्री शर्मा कहो के प्रदेश माए बरोबर सार्वजनिक परिवहन सेवा रो पसारो करो जावे जीणु लोगों ने हिफाजती सरल और सुविधापूर्ण यात्रा मुहैया वह सके।
1: राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। जब से हमारी सरकार बनी है हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: ई कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा सांसद मंजू शर्मा समेत कई जन नुमाइंदा मौजूद रिया। और अब मौसम प्रदेश रा कई जिला में मानसून सक्रिय बनी उड़ो है। भीलवाड़ा में आज सवार हल्की बिरखा रो दौर चालतो रियो। जालोर में रुक रुक ने बिरखा वहती रही। झुनो जिला में दोपहर पछे कई थोड़ा बिरखा होवणो मौसम सुहावणो वह गयो। वठे राज्य में कई थोड़ा वेरी बिरखाओं जलाशय में पानी री आवक बनी उड़ी है। मौसम केंद्र मुजब आज राज्य रात दिखनाद आथुनी हल्का में हड़काऊ मजला और कठे कठे तेज बिरखा होने री आस है। महकमो आवती 28 तारीख को एक कर फेरू बिरखा री गतिविधियां में बढ़वार होवन और उत्तर अगुणी हल्का में कठे कठे भारी बिरखा होने री आस जताई है। 29 जुलाई 2 अगस्त तक राज्य रा घनकरा ठोड़ा हड़काऊं मजला और कटे कटे भारी बिरखारी आस है। जालोर जिला रा सांचोर माए आज बस और ट्रक री टक्कर माए सवार बस माए सवार दो लोगों की मौत वेगी और 12 यात्री घायल वे गया। घायला ने सांचोर रा ट्रॉमा सेंटर माए इलाज सारू भेजी गया है। आ बस सांचोर गुजरात जा रही ही। भारत री अनाहत सिंह विश्व स्क्वास जूनियर चैंपियनशिप जीत ने इतिहास रच दियो है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र री रुकैया सालेम ने हरार वना खिताब जीतियो। इस जीत रे साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वास खिलाड़ी बन गई है। अब आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरों सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 रे तहत राजस्थान समेत देश भर रा प्रतिभागियों साथ बतल करी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण सारू चलाया जा रहा अभियान कैच द रेन रो जिक्र करता इन माए लोगों की भागीदारी ने सराया। करगिल विजय दिवस माथे देश प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम री मार्फत वीर शहीदा ने नमन करी जियो। और राजस्थान रोडवेज रा बेड़ा माए 144 नुई बसा भेड़ी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा हीरापुरा टर्मिनल हरी झंडी दिखाई। मैं साथे ही समाचार और उपलब्धि अटे पूरा हुआ मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माय प्रसारित करियो जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जैसलमेर का गोल्डन सिटी चैनल है, FM 93.8 MHz पर शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

ग्राम जगत कार्यक्रम श्रोण भाइना अरुण भाई लगन गरा राम राम। तो आज रविवार रे दिन पाछा 26 तारीख ना आप किसान भाई से चर्चा करें। हाल जो चर्चा करें तो सबसे पहले तो आप चर्चा करें किसान भाई रा तेरा बिल्कुल थोड़ा घना तो खिले आवश्यक है। खेत खेत तो बरसात बढ़िया हो रही है, खेत खेत बरसात हुई को नहीं तो कुदरत से और भगवान से प्रार्थना करें कि जेत नहीं हुई और बढ़िया बरसात हुए। तो अपनो जो किसान भाई है पूरे साथ साथ अपन जो पशुधन है पानी और चारियों जो समस्या है उसको निजात पहुँचे। तो बिल्कुल जो है इंद्रदेव आप मत प्रसन्न हुए, थोड़ी सी गर्मी से भी आपको राहत मिली और हमको ठंडो मौसम भी हुआ है और एक सुहावने मौसम के साथ साथ में आप ये कार्यक्रम की शुरुआत आज कर रहे हो। फिर शुरुआत आई तो सबसे बात पूरे जैसलमेर में पेड़ पौधों या हुए पेड़ पौधों में अगर बात करो वन भी और वन में सबसे बात करो अगर पेड़ भी तो अपने खेजड़ी जो को पेड़ है वो जैसलमेर जो खेजड़ी जो है पूरे एक वैज्ञानिक जो नाम आपको कह सकते खेजड़ी नाम क्यों है तो पूरे एक वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिप सेनेरिया जिन थार रो कल्प वृक्ष थी। आपको कोई चीज कल्प वृक्ष कह सकते तो आप जो बाड़मेर जैसलमेर जो है पूरे थार हो एक तरीके से कल्प वृक्ष है और इन्हें राजस्थान ने राज्य हुई वृक्ष कही थी क्योंकि रेगिस्तान है प्रतिकूल मतलब जेड़ो रेगिस्तान में जो मौसम है वो मौसम मत जो है वो वहाँ से लोगों ना पशुओं ना जीवन और पोषण प्रदान करे कहीं ना कहीं खेजड़ी भी जो छाव है अगर आप मोतो ढाल हुए सूता हो तो नींद आ जाए खेजड़ी की पत्तियों से चारे की जो समस्या है वो वहाँ पर पशुधन वास्ते खत्म हो जाए। तो विशेषकर जो है प्रमुख विशेषताओं में उपनाम भी जुड़ो है राज्य सरकार जो है राजस्थान सरकार 1983 महीना वृक्ष जो है राज्य वृक्ष घोषित कर दी फिर अन्य भी कई तरीके का नाम है वैसे थार में कल्प वृक्ष नाम तो है मरुस्थल में जो गौरव जी को कही थी राजस्थान में कल्पत्रु कल्पत्रु नाम तो हुई चाटी जो दिल्ली हरियाणा जो क्षेत्र है वो इस तरीके से कह दी। बात अगर आप ये कल्प वृक्ष की कराओ खेजड़ी की कराओ तो किसान भाइयों एक जीवन रेखा है बहुत उपयोगी चीज़ है पशुओं में चारे में विशेष करें बहुत कॉमरी है क्योंकि हरी पत्तियों में जो लूम जो कवाएं वो जो ऊँट भेड़ बकरी गाय में बहुत पौष्टिक जो हुई वही में मरे सबसे मेन अगर आप भोजन में खाओं की अगर बात करो तो खेजड़ी में जो है सौंगरी जो सौंगरी जो है वो कहते हैं कहते सौंगरी तेर और सौंगरी नाम तो पर्यटक जो हुई बहुत ज़्यादा आजकल तो सौंगरी 400-500 रुपये घीरे बाबी की तो ये मत लगन वाली कच्ची फलियाँ जो है वो सौंगरी कही थी ये बहुत स्वादिष्ट और सब्जी जो हुई बढ़िया करी अचार भी लोग बड़ा हुई पक अगर इन्हें पुरानी पकाए के रखो आप फलियों ना लेकिन आपको खोखा भी कोई बचपन में आपको इन्हें खाता भी था। विशेषकर यदि मिट्टी की उर्वरकता की बात करो तो ये नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पेड़ जो है वो जमीन में उपजाऊ और शक्ति बढ़ाओ है पूरे साथ साथ में औषधि गुण की अगर बात करो तो विभिन्न हिस्सों में उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में दस्त जो है वो आंखों में संक्रमण जैसी जो समस्याओं है उन्हें भी इलाज कराया करें। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप थाना कहो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक की बात थाना करो तो खेजड़ी के वास्ते कई तरीके का बलिदान भी हुआ। खेजड़ी के वास्ते जोधपुर में खेजड़ी गांव है जिनमें अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में 363 लोगों को है आपने पीड़ों ने बचाने वास्ते आपने प्राण और आहुति दे दी भाइयों बहुत बड़ी बात है। माँ अमृता देवी विष्णु के नेतृत्व में जगह तरीके का आंदोलन हुए और जो आप एक पेड़ वास्ते अगर कोई जान जगह नछावर कर दी तो बहुत बड़ी बात है। तो खेजड़ी जो है वो राज्य वृक्ष है और ये राज्य वृक्ष में कोई काटे भी कौन अगर कई तरीके से भी काटे भी है तुरंत प्रभाव से सरकार ने ये जानकारी भी दो पूछ चुकी है कि भाई अपने जो वृक्ष है वो बहुत चढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आपको खेजड़ी भी लगाओ तो आप खेजड़ी के बारे में चर्चा कर सो राजस्थान एक लोग भी सुन सो चर्चा रख सो जाएगी।

ओ मारे कटे हरी

तो भाई राजस्थानी लोकगीत सुनियो, अपने पीपली रो तले गाना कार आपो बात करे था खेजरी की। बिल्कुल जिके तरीके से आपो खेजरी जब आपो बात करें तो खेजरी रो जुगो एक विशेष आयोजन भी हुई कि खेजरी रे पूजा रो जुगो दिन हुई, विशेषकर विजयादशमी रूप में आपो खेजरी की विशेष पूजा भी करया करें। तो भाइयों आपो रो जुगो खेजरी है एक बहुत ही राज्य वृक्ष है और ये राज्य वृक्ष बिल्कुल अपनो समय समय मत जुगो है वो खेजरी रो एक दशहरे दिन यदि पूजा की जावे। लेकिन आज जो जो दिन है एक बहुत विशेष दिन है, लेकिन आपको कह सको कि भाई आज जो जो दिन है वो कारगिल जो हो तो कारगिल लो जो युद्ध हो तो पूरे विजय दिवस के रूप में आप मतलब मनाया करें। भैया आज जो जो दिन जो 26 जुलाई के रूप में जब आप मनाए तो 1999 में तो लद्दाख के उत्तरी कारगिल जिले में पर्वतीय चोटी में पाकिस्तानी जो सेना थी वे कई कब्जों में भारत तेरे कई ठिकाना मत है जो है वो कब्जों कर लियो पाकिस्तान विजय स्मरण वास्ते आपो पाची जब पूरी कार्रवाई करी तो आपो पाकिस्तान हराए के आपो ये जीत हासिल करी। तो आज जो दिन जो है वो आपो विजय दिवस के रूप में मनावे क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में जो आपोरा जो सैनिक भाई है कई सैनिक भाई ये में शहीद भी हुआ भारत मारे देश वास्ते और इधर कारगिल जो आपको विजय दिवस आज दिन जो मनावे तो विशेषकर जो आपको कारगिल विजय दिवस रूप रे मोए जब कारगिल जो विजय रे मोए विजय दिवस आपको कई तरीके से अपना जो जो भाई है और सैनिक भाई है 26 जुलाई नौ कारगिल युद्ध के उपलक्ष्य में आपको इन्हें मनाया करें और यदि सफलता के रूप रे मोए ऑपरेशन विजय उर नाम दियो देश का प्रधानमंत्री जो था वो ना अटल बिहारी वाजपेयी जी वो टाइम जो है युद्ध की जो जीत चुको हुई में 60 दिनों तक युद्ध चलियो और कई वीर सैनिकों ने इन्हें नमन और आपकी कुर्बानी देनी पड़ी जब जाए कि वीर सैनिकों ने बलिदान देना पड़ो जब ये जीत आप कारगिल में युद्ध जीतिया। और ये युद्ध में कई बहादुर जो है आप कारगिल में सबसे बहादुर आप जो कह सको भारतीय सेना रो बहुत रहो कई परमवीर चक्र भी सम्मानित किया गया जैसे अगर आपने नाम सुनियो कैप्टन विक्रम बत्रा जी के ना मरणोपरांत दिए गए लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। तो कहने का मतलब जो है वो कारगिल जो युद्ध है वो आज विजय दिवस रूप में आप 26 जुलाई बनावे और ये साथ साथ जब बनावे तो आप एक राजस्थानी लोकगीत और संसार चर्चा राजस्थान जाएंगे।

निठी चालन पुरो अरे मुक्ति परायो माल रे जो देखे नहीं तकनो दरमा अरे निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा अरे निमुड़ा निमुड़ा।

तो भाइयों आज आप बहुत अच्छी अच्छी बातों करी। आज सबसे महत्वपूर्ण बात वो आज जो दिन 26 जुलाई विशेषकर कारगिल विजय दिवस के रूप में आप मनायो। कई लोग अपरा युवा जमाज जो अपरा सैनिक था उन्हें ना लड़ाई लड़ी कारगिल भी और आज दिन विजय रूप में वो ये ना विजय भी पाई, क्योंकि पाकिस्तानी जो सेना आती वो एकदम बड़ी चोटियों मत पहले से वो पहुँच चुकी थी। एक अब वो कहने के ग्वालिये ग्वाल जो वही गाय और या कोई गरड़ी जी कहने कही वे एक इनपुट दियो कि भाई ये तरीके की सेना वो पहुँच रही है और तुरंत प्रभाव से देश के प्रधानमंत्री जी भी बहुत अच्छी सोच से आप विजय हासिल की। लेकिन ये जंग रहे वहाँ पर कई सैनिक जो को है भारत मान प्यारा हो गया और जब जो आज दिन वारी याद में वो आप कई तरीके से याद कर सको, क्योंकि और जब वो सैनिक जो है आप देश की जब सीमा मत है जो रक्षा करे जब आप आज रात रहा आराम से सो रात रहा परिवार के साथ आप घूम सको कभी कुछ भी या हुआ जा सको तो कारण है आपरा वीर बहादुर सैनिक। और आज आप बात करी खिजड़ी भी तो खिजड़ी में भी माँ अमृता देवी कई लोगों के साथ रहे मैं जो है वो खिजड़ी ने बचाने वास्ते मतलब माँ न प्राप्त हो गई तो कह रहे थे मतलब कई तरीके का बलिदान जो है खिजड़ी वास्ते किया गया। खिजड़ी हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है और इसके साथ साथ में जो आपको बातचीत मौसमरी करी जाते जाते मौसमरी करा तो विशेषकर बरसात रो मौसम है खेत भी टाबरियाँ रो बूढ़ियों रो ध्यान रखो, ठीक है अभी कोई आगा पाछा नहीं हुआ कोई कुंडे में वगैरह में तो समय भी देख हमें सीमा ना अपना किसान भाई ना करना मस्ते राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्राम जगत, यह आकाशवाणी के समय का गोल्डन सिटी चैनल है। शाम के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत। राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुर्चा एल्बम के सीमा मिश्रा में गाए, सीमा मिश्रा की आवाज में गाए गीत।

0: होता है, लेकिन कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आप स्वस्थ और प्रसन्न हैं तो आप अपना काम आसानी से कर सकते हैं, प्रसन्नचित होकर कर सकते हैं, उत्साह और मेहनत के साथ कर सकते हैं। तो सरकार चाहती है कि देश के विकास में प्रत्येक व्यक्ति का भागीदारी हो, तो उसके लिए वो स्वस्थ और प्रसन्न रहे। और इसमें अगर विशेषकर हम महिलाओं की बात करते हैं, तो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से सरकार ने काफ़ी काम किए हैं, और ये जननी सुरक्षा योजना उसी का एक भाग है। और जननी सुरक्षा योजना में सरकार चाहती है कि महिलाएं जो प्रसव पूर्व और उसके बाद अपने नवजात को लेकर और अपने पूर्व में जो उनका रूटीन चेकअप है या उनका स्वास्थ्य के संबंधी जो भी कोई अगर समस्याएं होती हैं, तो उसके निदान के लिए वो इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। और एक तरह से ये संस्थागत जो है प्रसव को भी बढ़ावा देती है। विकास यात्रा कार्यक्रम में हमने समय समय पर देश के विकास की योजनाओं के लिए कर काफ़ी बातें कही हैं। आज हम सोच रहे थे क्यों ना महिलाओं से जुड़ी हुई योजना की बात करते हैं, तो आज हम बात कर रहे हैं जननी सुरक्षा योजना की, जिसमें महिलाओं को प्रसव पूर्व और उसके बाद मिलने वाली सुविधाओं की हम आपको जानकारी देंगे।
1: और शरद जी, अपने देश के अंदर अगर आंकड़े देखें तो स्थिति बहुत ही ख़राब है, और कहा जाए कि अगर ये सारे जो प्रसव हमारे देश में होते हैं, अगर ये संस्थागत प्रसव शुरू हो जाए तो बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। अब देखिए शरद जी, एक बात आती है, कई लोग सोचते हैं कि गांव के अंदर दाइयां जो कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसव कराती रहती हैं और उनको अनुभव होता है, कई लोग आज भी हॉस्पिटल नहीं ले जाते, भरोसा नहीं करते हैं। और तो उनके लिए मैं बता दूं, देखिए न सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य के लिए और यूँ कहें कि एक सुरक्षित प्रसव के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि देखिए जब कोई महिला हॉस्पिटल में लगातार चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टरों को पता रहता है कि इनका जो टाइम है डिलीवरी का कब होगा और बच्चे का स्वास्थ्य जो है गर्भ के अंदर वो कैसा है। तो समय समय पर बहुत सारे टीकाकरण करने होते हैं, तो जो बच्चे को आने वाले समय में जो बीमारी हो सकती है जन्म के बाद, उनसे बचाव के लिए। और सर जी, मैंने तो आँखों से देखा है कि गांव में बहुत सारे जो बच्चे होते थे जन्म लेने के बाद में 3-4 दिन के अंदर उनकी एक बहुत छोटी सी बीमारी जिसको हम टिटनेस कहते हैं, उसके कारण मृत्यु होते देखा है। बहुत सारी गर्भवती महिलाएँ असावधानी के कारण उनकी मृत्यु होते हुए देखा है, साथ ही प्रसव के दौरान असावधानी के कारण और साफ सफाई अस्वच्छित जो कहते हैं प्रसव के कारण भी डेथ होती है। जबकि गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसको जो टीके लग जाते हैं, खासकर हम बात करें जो जन्म के बाद में, जैसे कि सबसे ज़्यादा 2-3 दिन के अंदर जो बीमारी होने के खतरा वो टिटनेस होती है, तो टीटी के टीके लगते हैं। इसके अलावा जो हम कहें कि वैक्सीन्स लगती हैं बहुत सारी, और जो जैसे कहें कि काली खांसी के पहले बहुत सारे होते थे, डिप्थीरिया वगैरह के बहुत सारे केसेज आते थे, और जन्म के बाद में पोलियो के जो ड्रॉप पिलाई जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें। और एक बात और भी है सर जी, हम महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर कोई बच्चा गर्भ के अंदर कमज़ोर है और उसको ज़रूरत है कि जन्म के बाद कहीं ये कुपोषण का शिकार ना हो, किसी बीमारी का शिकार ना हो, उसका पता भी लगाया जाता है और जन्म के बाद उनको वो बीमारियाँ नहीं होती हैं।
0: बिल्कुल। और देखिए एक और चीज़ है कि एक समय था जब इस तरह के कार्य घर में ही हो जाया करते थे, दाइयाँ इसके लिए बहुत कहते हैं कि एक्सपर्ट मानी जाती थी, लेकिन देखिए वो समय का अलग दौर था, सुविधाएं उस समय भी थी लेकिन थोड़ा दूरियां थी या लोगों में जागरूकता की कमी थी, तो इस वजह से वो उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे। लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार ने पिछले 10 सालों में और उससे भी कहीं अधिक हम कह रहे हैं कि काफ़ी नवाचार करते हुए संस्थाओं को अस्पतालों को जो है काफ़ी सुविधाओं से युक्त किया गया है। आज देश में बड़े बड़े संस्थान हैं जो कि बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए कार्यरत है। तो पहला देखिए कि देश का भविष्य जब सुरक्षित रूप से इस धरती पर जन्म लेगा और उसका जो पोषण है ठीक तरीके से होगा, तो निश्चित रूप से यही पीढ़ी जो है आगे जाके देश को संभालने का काम करती है। तो उसके लिए महिलाओं का स्वास्थ्य जो है महत्वपूर्ण, उसमें उसकी भूमिका रहती है। इसीलिए सरकार ने जननी सुरक्षा योजना शुरू करके एक तरह से मातृत्व को सुरक्षित करने का जो प्रयास किया है, वो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि महिलाओं को काफ़ी सुविधा और आरामदायक देता है। इसमें आप अस्पताल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ से प्रसव के बाद तक अपना सारा ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, डॉक्टरों की पूरी टीम आपकी देखरेख करती है, और इसमें सरकार ने प्रोत्साहन राशि भी दी है। तो दरअसल ये सब चीज़ें जो है देश के ही नहीं, मातृत्व को सुरक्षित रखने के लिए, देश के स्वास्थ्य को सुरक्षित

0: रखने के लिए और देश के विकास के लिए इस योजना को लागू करके एक तरह से उस समय के अनुकूल की परिस्थितियों से बाहर निकलकर अब आधुनिक परिस्थितियों में हमें इन सब योजनाओं का लाभ उठाना है। एक और बात है इसमें कि पहले जो होता था वो एक अलग था, अब हमें ये भी देखना है कि स्वच्छता बहुत जरूरी है। सरकार ने स्वच्छता को लेकर भी दिया है, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है। अब हाइजीन को अगर हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो देखिए बहुत सारी चीजें होती है, घर में साधन सुविधाएं नहीं होती है और प्रसव करने के समय जो आवश्यक प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, कई बार कंडीशंस बिगड़ जाती हैं, कई बार और अन्य परिस्थितियों में कोई और बीमारी का अगर महिला में लक्षण दिखाई देता है तो वो पकड़ में नहीं आता है। तो ऐसी परिस्थितियों में बेहतर ये है कि महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अपना जो है मेडिकल कार्ड बनवाना चाहिए और वहाँ जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए और इस योजना से जुड़ना भी चाहिए।
1: शरद जी, यहाँ पर हम अपने जो श्रोता सुन रहे हैं तो उनके लिए जानकारी आवश्यक दे दें कि देखिए ये इतनी आसान योजना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद में अगर वो समय आता है प्रसव पीड़ा का तो अगर कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस घर पे आती है और वो हॉस्पिटल ले जाएगी और डिलीवरी के बाद वो घर तक छोड़ती भी है। और प्रोत्साहन राशि की बात है तो पहले तो 2,000 रुपये मिलती थी, अभी कितनी है शरद जी?
0: देखिए अभी लगभग वही है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में प्रसव कराने पर 1400 रुपये की नकद आर्थिक सहायता दी जाती है और शहरी क्षेत्र में ये 1000 रुपये है। और इसके अलावा देखिए आशा सहयोगिनी जो कार्यकर्ता है वो प्रसव कराने और अस्पताल तक लाने में मदद करने वाली जो होती है उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाती है। और ये तो एक सरकार का मकसद ये है इस प्रकार की राशि देना ताकि महिलाएं सरकारी योजनाओं से जुड़ें और इस तरफ आकर्षित होकर अपना स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर आके ले सके। और इसमें सबसे बड़ा ये है कि प्रसव पूर्व से लेकर बाद तक हर प्रकार का जो इलाज है वो मुफ्त होता है और योजना के तहत महिलाओं को सरकारी अस्पताल में मुफ्त दवाएं मिलती हैं, जांच होती है, अगर कोई सीजरियन ऑपरेशन की अगर आवश्यकता होती है तो वो भी खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। तो वैसे भी सरकार द्वारा दवा मुफ्त योजना जो चली रही है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारे फायदे हैं ये इस योजना से जुड़े हैं और इस योजना से महिलाओं को जुड़कर इसका लाभ उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल शरद जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अगर आप संस्थागत प्रसव कराते हो यानी हॉस्पिटल तक आप महिला को ले जाते हो तो आप निश्चिंत हो जाते हो कि एक तो सुरक्षित प्रसव होगा और उसके बाद में जो बच्चा होगा उसके अगर कोई कमी है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ये सुनिश्चित करती है कि आने वाले समय में जो टीके लग रहे हैं बीमारियों के वो एक कार्ड बना के देते हैं और जब भी उसका समय भी लिख देते हैं कि आपको कितने महीने बाद कितने दिनों के बाद यहाँ पर आना है, क्योंकि उसका पूरा रिकॉर्ड होता है जो डिलीवरी का, तो डॉक्टरों को इलाज करने में उनके टीके लगाने में बड़ी आसानी होती है। अब घर पर प्रसव कराएंगे तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पहले कितने टीके लगाए, कौन से डॉक्टर पे कभी इलाज हुआ तो कौन सी दवाई दी, कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। तो शुरुआत सारे मतलब शुरुआत से ही करनी पड़ेगी कि सारे टीके देने हैं और कुछ तो गर्भ के अंदर बच्चा होता है तब टीके देने होते हैं तो वो छूट जाते हैं। तो कुल मिला के देखिए आजकल जो आशा सहयोगिनी के माध्यम से उनको जो गर्भवती महिलाओं की जांच है, उनको कुछ खाने पीने की वस्तुएं और यूँ कहें कि बहुत सारी चीज़ें सरकार उपलब्ध करा रही है और आशा सहयोगिनी ही उनको जांच और चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेजती हैं और प्रसव के समय अगर वो साथ जाती है तो उनको भी प्रोत्साहन राशि
0: दी जाती है। अब ये आपने प्रोत्साहन राशि से जो बात की है, हमने जो पहले बताया था कि ये इतनी राशि मिलती है, इसमें एक हम खुलासा यहाँ ये करना चाहेंगे कि इस योजना में मुख्य रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं और अनुसूचित जाति और जनजाति इन परिवारों के लिए है और ये योजनाएं उनसे अगर वो जुड़ती हैं तो उनको आर्थिक लाभ भी मिलता है। एक और इसमें खास बात यह है कि यह आर्थिक सहायता सामान्यतः पहले 2 जीवित बच्चों की जन्म तक ही सीमित है, उसके बाद ये सुविधा आपको उपलब्ध नहीं होती है। तो हमें बहुत सारी चीज़ों में ध्यान रखना पड़ता है और एक इसमें जो सीक्वेंस कह सकते हैं कि क्रमशः या क्रमबद्ध जो इसका इलाज है कि महिला का गर्भावस्था में आना और उसके बाद पंजीकरण कराकर प्रॉपर तरीके से जो ट्रीटमेंट करवाना है वो एक सीक्वेंस में चलता है। अदरवाइज आप इसको अवॉइड करके या अपने स्तर पे ही सब करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं और जैसे श्याम जी आपने बताया कि कई चीज़ें इसमें छूट भी जाती है, तो उससे बेहतर है कि हम

0: अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र आए या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल। और ये देखिए, अब जो आंगनवाड़ी केंद्र है, आशा सहयोगिनी वगैरह, उनका काम यही है कि अपने जो एरिया है वहाँ पर ये पता करें कि किस घर में कोई गर्भवती महिला है, तो उसकी जांच करवाती रहें, अगर उसको कोई ज़्यादा दिक्कत है उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना, उसका इलाज कर, ये सब उनकी ड्यूटी है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, कोई कुपोषण का शिकार तो नहीं हो रहा, तो आंगनवाड़ी केंद्र में उनको खुराक भी दी जाती है, बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिससे कि वो स्वस्थ रहें। गर्भवती महिलाओं को भी वो चीज़ें दी जाती हैं कि गर्भ के समय उनको कमजोरी वगैरह ना हो। अब अगर हम देखिए, कई महिलाएं जो गांव में रहती हैं वो अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे सोचती हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर डॉक्टर होगा, और कई हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर नहीं होती हैं, वो ये सोचती हैं कि डॉक्टर को कैसे दिखाएंगे, शर्म उनको लाज है जो हमारी देश में काफ़ी हद तक है, तो इसके कारण भी नहीं जाती हैं। तो उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर तो डॉक्टर्स जो महिला, जो इस डिलीवरी के समय महिला ही होती हैं, नर्सेज होती हैं, और जो डॉक्टर होते भी हैं तो डिलीवरी के समय जो यूँ कहें कि डॉक्टर का काम सिर्फ ये होता है कि दवाई वगैरह लिख दें और जांच करना होता है, बाकी सारा काम तो महिला ही करती हैं, और नर्सिंग स्टाफ होता ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ पर पुरुष डॉक्टर के समय उस समय वहाँ पर नहीं होते, कई बार क्रिटिकल कंडीशन होती है और महिला एक्सपर्ट नहीं है, तभी जो पुरुष डॉक्टर होते हैं प्रसव के समय उपस्थित रहते हैं, बाकी उनकी सब लोक इलाज का उनका ध्यान रखा जाता है।
0: बिल्कुल, इसमें अभी हमने बात की इस योजना से जुड़ने की और हमने बताया कि घर के नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर योजना से जुड़ सकते हैं। तो एक और इसमें ज़रूरी बात उन सब के लिए हम बताना चाहेंगे कि अगर आप वहाँ जाते हैं पंजीकरण कराना चाहते हैं तो आपको आवश्यक दस्तावेज क्या ले जाना है। एक आधार कार्ड,
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद एक BPL कार्ड या राशन कार्ड जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के लिए होता है, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी होता है एक MCP कार्ड जो कि जननी सुरक्षा योजना से होता है जुड़ा हुआ, बैंक खाते की जो पासबुक है जो कि सीधे खाते में ट्रांसफर होती है उसकी कॉपी ले जानी पड़ेगी, आयु प्रमाण पत्र होगा। और एक बात यहाँ पर बहुत जरूरी है कि इस योजना से जुड़ने के लिए महिला की उम्र 19 वर्ष होना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और कारण ये है कि हमारे देश के अंदर 18 वर्ष तो विवाह की आयु है, और विवाह के बाद अगर पहला बच्चा होता है तो उसकी आयु 19 वर्ष हो ही जाएगी।
0: और इसमें
1: और
0: पासपोर्ट साइज का फोटो ले जाना भी नहीं भूलना है।
1: बिल्कुल, और अगर मान लो कि 19 वर्ष से कम आयु है और वो इस योजना के तहत मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कराती है, तो बहुत सारी चीज़ें खड़ी कानूनी, जैसे कि आपने 18 साल की उम्र में विवाह कैसे कर दिया, तो घर वाले और वो सब, ये उनकी जवाबदारी होती है। और तो कुल मिला के हम बात करें कि सरकार की जो योजना है हमारे देश के जो बच्चे हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए, और महिलाओं को प्रसव पीड़ा में उनकी जान न जाए, सुरक्षित प्रसव हो सके, इसके लिए योजना है। तो बात यही है कि गांव की महिलाओं को जागरूक करना है। मुझे लगता है शहरों के अंदर तो ये लोगों में जागरूकता आई है सुरक्षा के प्रति अपनी महिलाओं के लिए, तो गांव वालों से, लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर भाई को अपनी बहन प्रिय है, पति को अपनी पत्नी प्रिय है, घर वालों को बहू प्रिय है, तो हॉस्पिटल जाएँ, रजिस्ट्रेशन कराएँ, और घर के अंदर प्रसव बिल्कुल ना कराएँ, हॉस्पिटल तक जाएँ, और हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपकी जो पत्नी, बहन, माँ जो भी है वो सुरक्षित प्रसव करके सुरक्षित घर तक अवश्य आएगी। और इसीलिए सरकार चाह रही है कि 100% प्रसव संस्थागत हों, यानी नज़दीकी अस्पताल के अंदर हों।
0: इसमें आपने श्याम जी ग्रामीण महिलाओं की बात की तो हम यहाँ पर उनको ये भी बताना चाहेंगे कि अगर आप ऑफलाइन पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गर्भावस्था का पता चलती है अपने क्षेत्र की आशा सहयोगी और आंगनवाड़ी केंद्र से पहले तो संपर्क करना है,
1: बिल्कुल।
0: वे आपका नाम स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकृत करेगी और आपको एक माता शिशु संरक्षण कार्ड भी देगी जिसको संक्षेप में MCP कार्ड बोलते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसके बाद प्रसव के समय आशा कार्यकर्ता न केवल आपको अस्पताल ले जाने और कागजी कार्रवाई पूरी करने में मदद करेगी बल्कि आपका पूरा इलाज के दौरान आपके साथ रहकर वो जब तक आप घर पर नहीं लौटती तब तक आपकी वो हर प्रकार की सहायता कर सकती है।
1: बिल्कुल। अब शरद जी, अब बात ये यहाँ पर आ रही है कि सरकार ने ये योजना शुरुआत क्यों की और क्या फायदे हो रहे हैं, तो यदि आपके पास आंकड़े हों तो देखिए, पहले संस्थागत प्रसव ना होने के कारण इतनी जाने जाती थी, इतने जो छोटे बच्चे होते थे, कई बार एक बच्चा है दूसरे बच्चे में माँ गुजर गई, तो यूँ कहें कि बहुत सारा नुकसान हो रहा था, बहुत सारी माँओं की डेथ हो जाती, छोटे बच्चों की डेथ हो जाती थी। और जब से ये जननी सुरक्षा योजना के तहत ये संस्थागत प्रसव शुरू हुए, तब से इसकी जो कहें कि मृत्यु दर बच्चों की और जो माताओं की बहुत कमी आई है, और इससे क्या कि अब जो देश को नुकसान होता था उससे मतलब बचा जा रहा है, और आने वाले समय में अगर शत प्रतिशत हम यूँ कहें कि संस्थागत प्रसव होंगे तो जो बच्चों की और जो माताओं की मृत्यु दर है उसमें बहुत कमी आएगी।
0: हाँ, इसमें ये बहुत देखने वाली बात है। देखिए, अब ये तो मानकर चलिए कि अब वो समय नहीं रहा कि आप इस तरह के कार्य घर पर बैठकर करवा सके। वातावरण बदल चुका है, पर्यावरण हमारा बहुत अलग टाइप का हो चुका है, चीजें बहुत बदल चुकी हैं, रहन सहन खान पान सब चीजें बदल चुकी है। तो अब ऐसे में आप ये सोचें कि महिला का प्रसव अगर घर पर कराया जाए तो ये एक तरह से आप सोचने वाली बात ही नहीं है। तो सरकार ने ये इसीलिए इस तरह की योजना शुरू की है। और देखिए, हमने जानकारी दी भी थी अभी कि आशा सहयोगिनी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र, तो इसके अलावा जैसे शहरी क्षेत्र में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहां पर हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल में जाइए और वहां पर आपको जननी सुरक्षा योजना जो डेस्क है या उसके जो प्रभारी है उनसे मिलकर आप अपनी जो भी बातें हैं उनको बता करके आवश्यक दस्तावेज के साथ आप वहां पर उनका पंजीकरण करा सकते हैं। सीधा सा उद्देश्य है इस योजना का कि महिलाओं की जो मृत्यु दर है और शिशुओं की जो जन्म दर है उसको ठीक रखते हुए, क्योंकि देखते हैं कि घर में इस तरह के अगर कार्य होते हैं तो महिला की मृत्यु की कई बार किसी न किसी बीमारी से होने की संभावना भी रहती है, तो सरकार उसको रोकना चाहती है। शिशु स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ जन्म लेगा और उसका सही तरह से देखभाल और उसका पोषण होगा, तो यही जो शिशु है आने वाले समय में हमारे देश के भविष्य के लिए काम करेंगे, देश के भविष्य में आप एक योग्य नागरिक की तरह अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इस जनरेशन को अगली जनरेशन की कह सकते हैं संबल के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें इस तरह के काम करने होंगे कि जिसमें हमारा जनरेशन का जो दर है वो आगे किस रूप में इस देश में आकर अपनी बागडोर संभालेगा, क्योंकि स्वस्थ शिशु ही आगे जाकर एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में काम करता है। और इसलिए सरकार चाहती है कि एक तो शिशु मृत्यु दर कम हो, महिलाओं की इस अवस्था में मृत्यु दर कम हो, और हाइजीन यानी स्वच्छता और वातावरण की साफ सफाई और एक सही तरीके का जो आज उपलब्ध है, अब तो वैज्ञानिक तरीके भी हो गए हैं, कई तरह की ऐसी चीजें हैं, तो क्यों ना हम उस योजना से जुड़कर उसका लाभ उठाएं। और सरकार चाहती है कि ऐसी योजनाएं जो बनाई जा रही है महिलाओं के लिए वो उनसे जुड़े और उसका बेहतर लाभ उठाए।
1: तो शरद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार कितनी भी योजनाएं बना ले, लेकिन जब तक जन सहयोग नहीं मिलेगा, लोग जागरूक नहीं होंगे, उसके फायदे नहीं समझेंगे, तब तक वो सफल नहीं हो सकती। और ये महत्वपूर्ण योजना है तो गांव के व्यक्ति है, खासकर शहरों में समय समय पर सरकार प्रचार प्रसार करवाती रहती है, जागरूक करवाती है। तो अगर जागरूक हो गए आप और अपने जो संस्थागत प्रसव अपना लिया, तो निश्चित तौर पर ये हमारे देश के लिए, आपके परिवार, समाज के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण
0: हाँ,
1: साबित हो
0: और
1: सकता
0: देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है। आजकल गांव-गांव में इस तरह के छोटी-छोटी डिस्पेंसरियां खुल गई हैं। अगर वहां नहीं होता है तो जिले के मुख्यालय पर आकर, मुख्य जो हमारा अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहां आकर अपना ये कार्य करवा सकते हैं। डॉक्टरी परामर्श आपको 24 घंटे उपलब्ध रहता है, यहाँ तक कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त दवा के साथ साथ उनके खान पान की भी व्यवस्था अस्पताल द्वारा की
1: बिल्कुल।
0: जाती है, फल
1: और
0: फ्रूट दिए
1: बिल्कुल
0: जाते
1: आपने
0: हैं।
1: शरद जी बहुत ठीक बात कही, और ये बताना श्रोताओं को बहुत जरूरी है कि जननी सुरक्षा के तहत जो भी लाभ मिल रहे हैं निःशुल्क हैं, और प्रसव के बाद भी खान पीन के लिए जो आर्थिक सहायता मिलती है, तो मतलब ऐसा ना सोचे कि वहाँ हॉस्पिटल जाके खर्चा अधिक हो जाएगा, वहाँ खर्चा नहीं होता बल्कि और पैसे आपको मिलते हैं।
0: देखिए, ये सोचने वाली बात है कि सरकार जब आपके लिए इतना कुछ कर रही है तो क्यों ना हमें उसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि योजनाओं के क्रियान्वयन और उसकी सफलता का जो सारा दारोमदार है वो योजना से जुड़ने वाले लोगों पर करता है। और प्रचार प्रसार के माध्यम से योजनाओं की जानकारी आज बहुत जल्दी से लोगों तक पहुंचती है, तो उनको अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जो पीड़ित व्यक्ति है और जो इस स्थिति से गुजर रहा है उस महिला को सही खान पान मिले, उसको सही दवा मिले, और वो सब चीजें अगर टाइम से होती है तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जननी सुरक्षा योजना सबसे बेहतर विकल्प है। और देश का जो भविष्य है वो स्वस्थ जन्म लेगा तो भविष्य भी स्वस्थ और सुरक्षित रहेगा, सुरक्षित हाथों में भी रहेगा।

0: इसलिए जरूरी है। एक समय था श्याम जी जब हम देखते थे कि जब इस तरह के काम होते थे तो कई बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते थे, उनको पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता था। और पहली बात तो ये कि पता ही नहीं चलता था कि बच्चे के जन्म लेने के बाद उसको कौन से टीके लगाने हैं, क्या कराना है, खान पान में क्या करना है, किस बीमारी के से वो कुपोषण का शिकार हो रहा है, कौन से विटामिन की आवश्यकता है, कब क्या देना है, वो सब चीजें होती थी तो उसमें शिशु मृत्यु दर ज्यादा रहती थी। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं और काम इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि हमारा जो जीवन है वो भी काफी बेहतर हो चुका है। तो अब हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में देखते हैं, बस थोड़ा सा जागरूकता की आवश्यकता रहती कि ऐसी चीजों से हम कैसे फायदा उठाएं, और उसके लिए तौर तरीके हम अपने कार्यक्रम में बता ही चुके हैं। तो महिलाएं इस बारे में खुद से भी पहल करें और ये जानने की कोशिश करें कि उसको उसके स्वास्थ्य के लिए इस अवधि में किस प्रकार की आवश्यकता है, क्योंकि गर्भावस्था में जो महिलाएं रहती हैं वही एक सही तरीके से बता सकती है कि उनकी कंडीशंस क्या है। और वो अगर सीधे इस तरह से योजना से जुड़कर डॉक्टरी परामर्श लेती है तो न केवल उसके स्वास्थ्य के लिए वरन अगली पीढ़ी के स्वस्थ और प्रसन्न जन्म लेने में उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है।
1: और शरद जी देखिए, वहाँ पर जांच में डॉक्टर ये भी सुनिश्चित करते हैं कि सिजेरियन प्रसव ना हो, इसके लिए बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। दवाइयों के अलावा कुछ एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है गर्भवती महिलाओं को, और जैसे कि 3 महीने के बाद में बहुत सावधानी रखी जाती है, और 8 महीने के बाद क्या सावधानी रखी है, अंतिम दिनों में कितनी सावधानियाँ रखनी है, ये सब उनको बताया जाता है। अब जो पूर्व का जो समय था तो उस समय देखिए कामकाजी महिलाएं बहुत ज़्यादा थी। आजकल क्या है कि बहुत सारा मशीनों का युग आ गया है। अब जैसे घर के अंदर अब मसाला पीसा जाता था तो उससे भी एक्सरसाइज हो जाती थी, अभी क्या है मिक्सी आ गई उसमें डालो तो पिस के कपड़े धोने होते तो उससे महिलाओं की एक्सरसाइज आती थी, आटा पीसने से एक्सरसाइज हो जाती थी, बर्तन साफ करने से हो जाती। अब क्या किचन बन गए, खड़े होके बर्तन साफ करने, खड़े होके खाना बनाना है, और मुझे उठने बैठने का और झाड़ू पोछा वा कहते हैं कि
0: हाँ, काफी वो भी जो सारा शारीरिक श्रम है वो कम हो गया है।
1: कम हो गया है, यानी आपको ज्यादा झुकना नहीं है, बार बार उठना बैठना नहीं है, ऐसा काम हो गया। तो कहीं ना कहीं यूँ बात करें कि आधुनिक युग में और खान पान में तो और वातावरण में जो बदलाव है उसके कारण जो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी के कारण बहुत सारे प्रसव सिजेरियन होने लगे। तो डॉक्टर से ये कहते हैं कि अगर महिलाओं को सिजेरियन उस प्रसव से बचना है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कुछ बहुत भारी काम से मना करते हैं, हल्के फुल्के काम अवश्य करना चाहिए, ऐसी मतलब वो बेहतर सलाह।
0: हाँ, इसमें श्याम जी ये बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इस दौरान थोड़ा बहुत शारीरिक श्रम तो होना चाहिए, लेकिन अभी की आधुनिक जो जीवन शैली है उसमें ये सब इस सब से वो वंचित रहती हैं। तो उसके बाद फिर वो एक अलग ये जो विकल्प नया आता है सिजेरियन वाला, तो सर डॉक्टर्स की ये परामर्श रहती है कि वो किस तरह के काम कर सकती है वो करें और करना भी चाहिए। तो हम मानकर चलते हैं कि जो जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से जो महिलाएं जुड़ेंगी या जो जुड़ रही हैं जरूर उनको इस योजना का जो है भरपूर लाभ मिल रहा है, और जिन महिलाओं ने अभी तक इस लाभ को नहीं लिया है और उनको लगता है कि अब उस अवस्था में है जब इस योजना से जुड़ना चाहिए तो वो जरूर अपने आंगनवाड़ी केंद्र या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या फिर जिले के मुख्य चिकित्सालय में जाकर इस जननी सुरक्षा योजना प्रभारी से जरूर मिले और अपना पंजीकरण कराएं और सरकार की योजना की क्रियान्विति में अपना अपनी भूमिका निभाते हुए सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित शिशु और सुरक्षित भविष्य सुरक्षित हाथों में, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना से जुड़ने का प्रयास करें। तो श्याम जी, आज की इस जननी सुरक्षा योजना की हमने जानकारी जो हमारे श्रोताओं को दी, उम्मीद है उनके लिए काफी मददगार रहेगी। आज की विकास यात्रा को यहीं देते हैं विराम और करते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार सुन।
2: आजादी का अमृत महोत्सव।

0: कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
1: अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
0: अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना।
1: अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना,
0: अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।

0: रेलवे में।
1: तो आराम से रिटायर हो सकते हो, है? आगे का क्या प्लान?
0: बस सर, 38 साल तो देश की सेवा में निकल गए, बाकी के बचे हुए बच्चों की सेवा में।
2: प्राण। प्राण। प्राण।

0: इन्हीं देशभक्ति गीतों के साथ आज की कारगिल विजय दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सच सच नमन उन वीर सैनिकों को जिन्होंने हमारे देश की आजादी, देश की सुरक्षा में अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया। दोस्तों अब सब है समाचार संध्या का।
1: दी जाती है, आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में

0: भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत की निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूँ, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
5: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडी

0: खेलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
1: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और बाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे टी20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bagged silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare.
4: And now the news in detail.
3: Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology

0: from the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
1: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।
0: Union Minister Prahlad Joshi today assumed charge as the Education Minister. Mr. Joshi was appointed to the post yesterday following the resignation of Dharmendra Pradhan. Mr. Joshi also continues to hold the portfolios of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and New and Renewable Energy. Later, speaking to media, Union Minister Prahlad Joshi expressed gratitude to Prime Minister Modi for entrusting him with this responsibility.
2: पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है।
3: आई एम रिव्यूइंग ऑल द डिटेल्स एंड द डिसीजंस दैट नीड टू बी टेकन। आई हैव बीन गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री। वी हैड कंटीन्यूअस मीटिंग्स टुडे। दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर मी। आई हैव टेकन चार्ज टुडे एंड हेल्ड डिटेल्ड डिस्कशंस विद द सीनियर ऑफिसर्स। इट इज अ वेरी बिग डिपार्टमेंट, सो आई विल स्पीक टू यू इन डिटेल आफ्टर आई हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली।
2: बहुत बड़े डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: Prime Minister Modi said that the youth of the country have a crucial role in building a Viksit Bharat. He said they are not only the driving force behind a developed India, but also its greatest beneficiaries. Addressing participants of the Viksit Vibrant Village program through video conferencing, Mr. Modi said developed villages are the foundation of a Viksit Bharat and that young people have a vital role in achieving this vision. He highlighted that despite facing challenges, residents of border villages have always maintained an unwavering spirit of patriotism.
4: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के अलग अलग जिलों के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: करगिल विजय दिवस इज बीइंग ऑब्जर्व टुडे। एंटायर नेशन सैल्यूट्स द इंडोमिटेबल करेज एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स ड्यूरिंग द करगिल वॉर ऑफ 1999। The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashwani, Mr. Modi said today, the 26th of July is a date that does not require a calendar to be remembered. He urged citizens to honor Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India.
4: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: The main function of the Kargil Vijay Diwas was held today at the Kargil War Memorial in Dras, Ladakh. Addressing the event, Defense Minister Rajnath Singh reiterated that there will be no talks with Pakistan other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, which he described as an integral part of India.
5: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का
6: इंडिया हैज द कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एवरी मिस एडवेंचर ऑफ पाकिस्तान इन अ मैनर फार मोर सेवियर देन इट्स इमेजिनेशन एंड आई वांट टू गिव दिस क्लियर मैसेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवरी सिंगल मिस एडवेंचर एम्ड एट इंडिया सॉवरेनिटी फ्रेंड्स आवर इंटेंशन इज क्लियर देर विल बी नो टॉक्स विद पाकिस्तान एंड इफ देर आर टॉक्स दे विल ओनली बी अबाउट पीओके which is a part of India that was illegally occupied by Pakistan
5: जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया।
0: The defense minister also highlighted the success of Operation

हिंदी तो विकास फिल्म संगीत का कार्यक्रम ही समाप्त होता है। रात के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं राजस्थानी लोक संगीत।

cielo, con mi carne cielo. Di la coda ya di la,

Pani,

Lulu, got it. Tare bina maro mar salo hai lungo gale.

राम अंदर धरे राजा राजा जी रे नारे पिता मारो।

कोहिनूर लंगा और बंदूक हाथ के स्वर में अभी आप राजस्थानी लोक संगीत को सुन रहे थे। इसी के साथ ही कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। रात्रि के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं रवि वासरीय संगीत सम्मेलन।

0: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा के आज के इस गरिमामय समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
1: नमस्कार। In today's prestigious program of the Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha, we are going to present a santur recital by India's first female santur maestro, Vidushi Dr. Varsha Agrawal, who is the only Indian female artist of the Sufiana Gharana to achieve international acclaim in santur playing.
0: Dr. Varsha ji ne gayan aur tabla ki shiksha matra 6 varsh ki ayu mein prarambh ki thi aur aage chalkar प्रख्यात तबला वादक पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती है।
1: Dr. Varsha ji began her training in vocal music and tabla at the mere age of 6 and later received profound musical guidance from the renowned tabla player Pandit Lalit Mahant ji. She is a Gandaband disciple of the eminent santur maestro Padma Shri Pandit Bhajan Sopori ji. Along with being a top grade artist of All India Radio and Doordarshan, she also holds the proud distinction of being the first female santur player of the country to be invited by the Ministry of External Affairs for santur concerts abroad.
0: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय

0: See, when her fingers dance on the 100 strings of santur, the listeners are left spellbound. Through her relentless dedication, remarkable command over rhythm and melodious performances on prestigious stages, she has left an indelible mark in the field of santur playing.
1: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apne santur vadan ki shuruaat raag jhinjhoti se kar rahi hain. Isme ve aalap, jod aur jhala ki pashchat vinambit gat jo trital mein hai, madhya gat ek taal mein aur drut gat teen taal mein prastut karengi. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित.
0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रेसाइटल विद राग झिंझोटी. इन दिस आफ्टर द आलाप जोड़ एंड झाला शी विल प्रेजेंट अ विलंबित गत इन तीन ताल, अ मध्य गत इन एक ताल एंड अ ध्रुत गत इन तीन ताल. अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज पंडित हितेंद्र दीक्षित.

0: राग झंझोटिया ने अभी आपने सुना विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का संतूर वादन। विदुषी वर्षा अग्रवाल अब प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रिसाइटल इन राग झंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस After the alap, she will present a madhyagat in rupak tal and a drutgat in teen tal.

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही है।
1: That was राग किरवानी presented by विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल is concluding her performance with a melodious धुन based on a मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दैट वॉज अ मेलोडियस धुन बेस्ड ऑन अ मिश्र राग प्रेजेंटेड बाय विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil Bharatiya Ravivasariya Sangeet Sabha concludes.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनिता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक

0: द सीक्रेट अथर अपना रिचुअल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ लॉर्ड बालभद्र एंड देवी सुभद्रा इज बीइंग सोलेमली ऑब्जर्व ऑन देयर रिस्पेक्टिव चैरियट्स एट पुरी इन ओडिशा दिस इवनिंग ड्रॉइंग थाउजेंड्स ऑफ डेविटीज During this unique post-Rath Yatra ceremony, the Holy Trinity is offered a specially prepared sweet beverage in large earthen pitchers. A massive wildfire in southwest France has forced the evacuation of around 55,000 more people overnight, taking the total number of residents displaced in the region to nearly 2,20,000. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Earlier opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी के समय का गोल्डन सिटी चैनल है। रात के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की प्रशांत सभा अब यहीं समाप्त होती है। कल दिन में 11:55 कर कल की सभा के कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।